0: इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
1: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
0: सच में बिल्कुल घर जैसा।
1: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
2: सफर खूबसूरत है मंजिल से भी।
3: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
4: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 इयर्स, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
5: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panchtara is now open at a new location in Allen. Wahi swaad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhathe, roz taazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panchtara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next bestsellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

कैसे हैं आप सभी लोग? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरूर मुझे कॉल करके बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा था. हमारे मेरे पहले जो आरजे थी वो मुझे बता रही थी कि आवाज नहीं जा रही है सबको, पर अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज सुनो सुनो सुनो सुनो तो जरूर मुझे कॉल करके बताओ, क्योंकि नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा. नहीं तो हम इतने मजेदार मजेदार कॉन्वर्सेशंस और चिटचैट एंड गॉसिप जो हम करने वाले, वो कैसे होगा? नहीं तो, एंड उसके अलावा गिव अवे भी तो है यार, गिव अवे भी तो होता है, वो भी तो करना होता है. तो अगर आपको वो सब जीतना है तो मेरे को कॉल करके एक बार, कोई मेरी आवाज अगर सुन रहा है तो एक बार कॉल करके मुझे बता दो कि आपको मेरी आवाज आ रही है. मेरा नंबर है 972-235-5555. आगे बढ़ने से पहले खांसी आ गई यार थोड़ी सी, मैंने अभी थोड़ा सा ना कोक पी लिया था, डाइट कोक, नॉट रेगुलर कोक, डाइट कोक, बिकॉज आई एम ऑन अ कैलोरी डेफिसिट यू गाइज. बट एनीवेज, दैट्स टीएमआई, टू मच इन्फॉर्मेशन, यू ऑल डोंट नीड टू नो अबाउट इट. बट एक, मैं बिफोर वी गो इन टू द नेक्स्ट सॉन्ग, मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी कोट के साथ मैं आपको नेक्स्ट सॉन्ग में भेजना चाहती हूँ, क्योंकि आई फील लाइक एवरीबॉडी नीड्स दैट कोट इन देयर लाइफ, यू नो. वो ये है, ऐसे शुरू करते हैं. शायरी ऐसी है, अच्छे काम करो तो नजर लग जाती है, ठीक है, मतलब बुरे काम करो तो बद्दुआ लग जाती है, तो इसीलिए मैं तो कोई काम ही नहीं करती यार. मैं इतनी वेली हूँ, इतनी वेली हूँ, इसीलिए मैं कोई भी काम नहीं करती. इसी के लिए मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा गाना सुनाऊंगी, और उसके बाद मैं आपको इसी कोर्ट से रिलेटेड एक और गाना सुनाऊंगी. तो आप प्लीज इंजॉय करिए और मुझे कॉल करके बताइए आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं. दुनिया वालों, मैं आ गई हूँ. अरे पर मैं हूं कौन, ये तो मैंने बताया नहीं. जो मैंने कल बताया था, और मैं बड़े पिछले कुछ हफ्तों से बताए जा रही हूँ कि गाइस, दिस इज इपी द हिपी एंड यू आर लिसनिंग टू एन इवनिंग इन डैलस, पिरिडिडू ऑन 104.9 एफएम रेडियो, फन एशिया रेडियो, राइट हियर इन डैलस. एंड वी आर गोना ब्रिंग यू सम रियली हॉट एंड रियली फन एंड रियली एंटरटेनिंग स्टोरीज. वी गोना शेयर लॉट ऑफ स्टोरीज टू, एंड आई एम गोना ब्रिंग यू सम लाइक रियली फनी कोट्स लाइक दिस. जैसे अभी मैंने जो मारा ना, इतना सही जोक था, क्या सही कोट था? आपको नहीं लगता? अगर आपको लगता है कि वो कोट अच्छा था और वो जोक अच्छा था, प्लीज मेरे को कॉल करो और मेरे को बताओ कि आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं. और अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप से तो बातें वैसे ही रोज करती रहती हूँ, आज भी सही.

0: यू गाइस थैंक यू मुझे कॉल करके बताने के लिए कि आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर आ रही है. मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरी आवाज आ रही है. यू नो दैट मेक्स मी सो हैप्पी. बट वाइल दोज टू सॉन्ग्स वर गोइंग ऑन, मुझे एक ना बड़ी सही सी कॉल आई. अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं, जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी रिस्पेक्ट पीपल्स प्राइवेसी यू गाइस. तो अगर आप मेरी आवाज सुन रही थी, जरूर कॉल करिए. आई एम पुट यू ऑन एयर. मैं उन्होंने बड़ी सही एक चीज बोली, ठीक है. मैंने इसके पहले ये बोला था कि भाई मैंने क्या कोट बोला था, क्या आपने मेरा कोट सुना, कि देखो अच्छे काम करो तो नजर लग जाती है, बुरे काम करो तो बद्दुआ लग जाती है. इसलिए भाई मैं कोई काम ही नहीं करती. एनीवेज मैं तो वैसे टेक्निकली कुछ ज्यादा ही काम करती हूँ. मैं उतनी वेली हूँ नहीं, पर वो मुझे गाने के लिए थोड़ा सा डायलॉग शायलॉग मारना पड़ा. और जिन्होंने मुझे कॉल किया अभी थोड़ी देर पहले, शी सेड शी रियली इंजॉयड माई न्यू वाइब. एंड आई वॉज लाइक, यू एब्सोल्युटली, दैट इज सो अमेजिंग. क्योंकि भाई मेरा काम ही है ऐसे कि ऐसे वाइब्स क्रिएट करना विच इज़ रिलेटेबल. बिकॉज देखो भाई, इतनी मतलब हम मैं उतनी शरीफ टाइप की लड़की हूँ नहीं. मैं आ गई उठ के डालस में, दिल्ली से फ्लाई करके 16 घंटे की फ्लाइट में बैठकर. लेकिन शरीफ टाइप के जो लोग मुझे जानते हैं ना, मैं हूँ नहीं. आई एम थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, एंड दैट इज़ वाई माई नेम इज़ इपी द हिपी. बट एनी वेज, बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अच्छा, आई थिंक आंटी जी थोड़ा टाइम ले रही है कॉल करने में, पर उन्होंने मुझे ये बोला कि उतने वेल्ले हम मैं हूं नहीं, है ना. मैं वैसे बोल रही हूँ मैं वेल्ली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आई थिंक आई हैव एन ओवर वर्किंग प्रॉब्लम. आई थिंक आई एम अ वर्कोहॉलिक लाइक दैट. तो उनको तो वो मेरे को अंदर से आता है कि मैं कितना भी काम कर लूँ, कितना भी काम कर लूँ, कितना भी काम कर लूँ, बाई गॉड की कसम, इट फील्स लाइक आई हैवन डन इनफ. डू यू गाइज एवर फील दैट कि आई विश थोड़ा सा और कर लिया होता, आई विश थोड़ा सा और कर लिया होता, आई विश ये ऐसा कर लिया होता. मेरे को तो भाई वैसी वही प्रॉब्लम है कि मतलब आई विश मैंने ये कर लिया होता, काश, दैट यू नो दैट परफेक्शनिस्ट नेचर. तो इसीलिए कई बार मुझे लगता है आई हैव अंडर परफॉर्म्ड, जबकि सब कहते हैं कि नहीं बेटा, यू हैव नॉट अंडर परफॉर्म्ड, यू हैव डन अमेजिंगली वेल. एनी वेज, तो उन्होंने मुझे बोला, देखा बेटा इतने आप वेल्ले नहीं हो, क्योंकि आपका दिल चलता है हर टाइम पे. एंड द दिल अपेरेंटली पम्प्स 1.5 लीटर ब्लड. और वो मैं भूल गई कि पर मिनट डज इट पम्प और पर आवर, वो मैं भूल गई उन्होंने क्या बोला था. बट एनी वेज, डजेंट मैटर, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर. वो मैं थोड़ा फैक्ट्स गूगल करके फिर मैं आपको बताती हूँ आफ्टर वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक विच वी आर गोइंग टू गो इन अबाउट. अरे आ गया आंटी का कॉल, आई एम पुट हर ऑन लाइन. हेलो,
1: कौन आंटी?
0: नहीं
1: आप
0: आंटी, सॉरी
1: आंटी
0: सॉरी, मैं आ सॉरी, आई विल टेक दैट बैक. वी आर फॉर एवर यंग, एब्सोल्युटली,
1: आंटी
0: बिल्कुल.
1: घंटी कोई भी नहीं,
0: नहीं नहीं नहीं कोई नहीं,
1: सदाबहार है हम, जिप्सी सोल है,
0: एग्जैक्टली,
1: बैकपैकर है, निकल पड़ते हैं, आवारा भी नहीं है, बैकपैक लेते हैं, निकल पड़ते हैं, जिप्सी सोल घूमते फिरते हैं
0: वाओ,
1: दुनिया भर में.
0: एब्सोल्युटली, दुनिया में ऐसे ही करना चाहिए. वैसे एक बैकपैकिंग से याद आया, आपने कभी बैकपैकिंग करी है लाइफ, मतलब यूरोप वगैरह
1: बिल्कुल
0: में? अरे वाह, प्लीज
1: बिल्कुल.
0: टेल मी आपने कहाँ कहाँ करी है. मुझे बड़ी अच्छी लगती है बैकपैकिंग की स्टोरीज,
1: ओ
0: बिकॉज मैंने
1: माय
0: थोड़ी
1: गॉड,
0: बहुत करी
1: नहीं
0: है.
1: वो बहुत लंबी, वो स्टोरियां बहुत लंबी हैं, लेकिन
0: अच्छा,
1: मैंने कहा कि दुनिया बहुत मजे की बदल रही है, प्यार की डेफिनेशन, मोहब्बत की, ये शादियों की, डायमंड्स आर वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड, इससे बड़ी बकवास कोई नहीं है. मेरे मेरे माइंड में जो डायमंड है वो है मेरे बेस्ट फ्रेंड, लेकिन डायमंड्स आर वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड, और आप कमल के फूल की तरह बन जाओ, है ना, वो
0: बिल्कुल,
1: जो होता है ना,
0: आई हंड्रेड
1: वो
0: परसेंट अग्री.
1: स्वाम्प. अच्छा, और कहते हैं स्वाम्प में उगता है लेकिन गंदा नहीं होता. अरे भाई वो कमल का फूल होता है, मैं इंसान हूं, अगर स्वाम्प में खड़ी रही तो गंद से भर जाऊंगी. तो
0: एग्जैक्टली,
1: सारे जो जितने कोर्स है ना, सबको चैलेंज करो, हर
0: है ना.
1: चीज को जो आपको सिखाई गई है ना, जो डेटा आप, हम डेटा है ना,
0: हाँ जी,
1: जितना डेटा है ना उसको तू पूरा से रिवाइज करें और डिलीट करें और नया डेटा डाउनलोड करें और सुपर इंटेलिजेंट हो जाए.
0: एब्सोल्युटली, आई 100% अग्री. ऐसे ही हमें करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो थॉट्स होती है ना, पिछले आई डोंट नो 100 साल 150 सालों से वही थॉट्स हम रिसाइकल कर करके नए नए पैकेजेस में उसको पैक करें, लेकिन उसका फ्लेवर नहीं बदल रहा है, वही चीज चल रही है और हमें उसको
1: मेरा
0: चेंज
1: फेवरेट
0: करना
1: गाना
0: चाहिए.
1: कौन सा है पता है?
0: कौन सा है?
1: याहू, चाहता है मुझे जंगली कहो.
0: बिल्कुल,
1: और चलते हैं हम.
0: आई एम विथ यू, आई एम विथ यू,
1: थैंक
0: बिल्कुल,
1: यू.
0: एब्सोल्युटली, आपकी जो स्पिरिट है ना, मेरी भी वैसी है. याहू, बड़बिम, चाहे कोई मुझे
1: थैंक यू.
0: जंगली कहे. एग्जैक्टली. और मैंने ना अभी आपके साथ बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन करी, विच इज कि बॉलीवुड में जो जितनी मूवीज आती है ना, ये सब प्यार मोहब्बत धोखा इसी में घूमती रहती है. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट स्टार वॉर्स, एंड आई फील लाइक स्टार वॉर्स इज वन ऑफ दोज मूवीज कि कभी ओल्ड होती नहीं है. दैट रिमाइंड मी, मुझे तो स्टार वॉर्स देखनी पड़ेगी बैठ के, क्योंकि मैंने बाकी सारी सीरीज देख ली. मैंने इंडियाना जोन्स देख ली, मैंने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देख ली, मैंने नेशनल ट्रेजर देख ली, मैंने हैरी पॉटर देख ली, पता नहीं कितनी बारी. स्टार वॉर्स अभी तक नहीं देखी मैंने, अभी वो देखनी पड़ेगी बैठ के, है ना. अरे उन्होंने रख दिया, कोई बात नहीं, आपको तो आ रही है ना मेरी आवाज. आई हैव टू सिट एंड आई हैव टू वॉच स्टार वॉर्स, एंड अंटिल देन वी विल गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर शो. बट बिफोर दैट आई शुड मेक दिस अनाउंसमेंट. Your dream home may be closer than you think with the Dream Home Mortgage. Since 1998, Dream Home Mortgage has helped families across the country turn home ownership into reality with personalized mortgage solutions and a smooth, stress-free process. Licensed in all 50 states, their experienced team is committed to finding the right home loan options tailored for your needs. Whether you're buying your first home, upgrading, or refinancing, start your home ownership journey with confidence today. Call 972-245-5626 or visit dreamhomemortgage.com for more details. That's right, guys. मेरे पास तो अभी इतने पैसे हैं नहीं कि मैं घर शर खरीद सकूं, लेकिन अगर आपके पास हैं पैसे एंड यू आर थिंकिंग अबाउट इट, प्लीज डू कॉल द ड्रीम होम गाइज. उनके नाम में लिखा है योर ड्रीम होम. मेरे ना विजन बोर्ड पे बनी हुई है एक बड़ी सी अच्छी सी ड्रीम होम विद लार्ज विंडोज ओवर लुकिंग द गार्डन. वाह वाह, मेरे सपने तो बड़े वैसे से हैं, मतलब आई एम अ फॉरवर्ड थिंकर एंड बिग थिंकर, बिग ड्रीमर लाइक दैट. But I don't know how much of reality is going to happen in my case. But here, we can always try, can't we? But until then, please enjoy the song. And then we're going to go into a break, okay?

0: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
1: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
2: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
3: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
3: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
2: ये क्या होता?
3: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
0: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: ना सब और प्राइस
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो।
11: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
12: Excuse me. It's called being loyal.
11: It's called being predictable.
12: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
11: And what's so special at Neon Cactus?
12: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
11: Not bad.
12: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
11: Okay, this I didn't expect from you.
12: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
13: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
14: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes, and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi, and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana, supported by major Indian non-profit organization in DAW.
1: For booth and sponsorship contact, admin@ambuj.us.
15: Hello, hello, and we are back. You are listening to Fun Asia Radio because we are super fun, 104.9 FM here in DFW and some other areas around DFW too. And main hu aapki bestie, you guys, your BFF. My name is Ippy. आप प्यार से मुझे इपी द हिपी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी वैसी टाइप की हूँ, यू नो। एनीवेज, दैट बीइंग सेड, हम इसके पहले वाले सेगमेंट में, सेगमेंट क्या, वही सेगमेंट हमारा चल रहा है, वी वर टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स एंड थिंग्स टू डू एंड ट्रेडिशनल बाउंड्रीज और ट्रेडिशनल डेफिनेशन को हम तोड़ छोड़ के हम अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके उसी से रिलेटेड ना। अभी मेरे पास बड़ी अच्छी सी कॉल्स आ रही हैं एंड देन यू नो पीपल आर चैलेंजिंग बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग। यार अमेरिका में आए हैं तो कई बार कुछ चीज़ें आप रखो इंडिया से जो बहुत अच्छी होती है, कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ती है, बिकॉज आई मीन इट हैज़ लिटरली नो प्लेस in this amazing universe where the world is changing all the time. That being said, प्यार मोहब्बत relationships वैसी एक चीज है. मुझे तो लगता है कि I feel like the definition of what a relationship was has changed so much, especially in the modern dating app culture and all that. मतलब I feel like relationships are not the same what they used to be, because now you have these new words, situationship, nanoship, you know, friends with benefits type situations, you know, there are all of these terms. I feel like life has really, really changed. And I feel like if you do fall in love, na to aapko usse matlab satisfaction milega aur usse dukh bhi milega. Matlab koi uska matlab ya to puri tarah se dukh bhi nahi milega ki aap move on kar sako. You know, there are these really complicated situationships that my girlfriends have constantly talked to me about. Actually, girlfriends kya, my guy friends have also talked to me about it, which is ki bhai, we are kind of, you know, in a situation where we're like almost dating someone, but we're not really dating someone. We're almost in a relationship, but we just don't want to call it a relationship. But you do everything like a relationship, but there's no plans for future. I feel like it's such a chaotic situation. It's not the same, you guys. Agar aap इस जमाने में अगर आप सिंगल हैं तो ऑल द बेस्ट टू यू. थोड़ा मुश्किल ही है भाई लोग मिलना. और अगर आपको मिल चुका है कोई एंड यू आर इन अ वेरी हैप्पी मैरिज, वेरी हैप्पी रिलेशनशिप विथ किड्स एंड अ फैमिली एंड ऑल, वेल आई ऑल आई वांट टू से इज यू आर वेरी वेरी लकी बिकॉज यू हैव अचीव्ड व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल कीप ड्रीमिंग ऑफ. बट यू नो अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो डोंट कीप ड्रीमिंग ऑफ दैट. सम पीपल ऑल्सो आर लाइक नहीं भाई, this life is not for me. I just want to travel. I want to backpack. Just like we had the caller earlier, whose dream it was to like backpack all over the world, and she was constantly challenging these like norms and everything. I feel that's super cool. I mean, if you have the guts to do something like that, then absolutely do it. But if you don't, that's okay too. You know, everybody's different and we all can find our own ways. That being said, aapko main gana sunati hoon, isi se related. And aapko kya lagta hai? I mean, are you... You know, this is the time where you can call me and tell me, and maybe we can talk about it a little bit. Like, are you a single person who is trying to date in this market? And if yes, have you tried dating apps? Tinder, Bumble, Hinge, The League, Coffee Meets Bagel, and apparently there's another one called Plenty of Fish that I just found out about yesterday, which was like the oldest one before Tinder and all that. But yaar, I mean, what has your experience been from all of this? Please call me and tell me. I know ghosting, there are new words that have come out thanks to this dating culture. But anyways, call me and tell me. But until then, enjoy this gana.

गाइज माई कंट्रोल रूम इज फ्लडिंग विद कॉल्स. थैंक यू सो मच कि आपको मेरा लिटल बिट्स एंड बाइट्स ऑफ लाइक यू नो ऑल दिस कॉमेडी एंड जोक्स एंड लाइक दीज बोल्ड स्टेटमेंट्स आपको पसंद आ रहे हैं, क्योंकि भाई लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी सेफ. यू हैव टू टेक रिस्क इन लाइफ. अगर रिस्क नहीं लिया होता मैंने इंडिया छोड़ के अमेरिका आने के लिए, तो मैं शायद आरजे नहीं होती, और अगर मैं आरजे नहीं होती तो आपको इतने अच्छे अच्छे गाने नहीं सुनाती मैं. तो एनी वेज दिस वन इज फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई शो. यू गाइज आर ऑसम. आई वॉन्ट पुट मोर कॉल्स ऑन एयर, बट यू नो वी रिस्पेक्ट पीपल्स प्राइवेसी, वी टोटली डू, बट आई एम गोना स्टॉप टॉकिंग. एंजॉय द सॉन्ग.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
3: Calculating route. Rerouting.
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
3: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
2: क्यों?
3: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
2: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
3: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
5: सब कुछ साफ रख सकते हो
6: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती. कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
7: क्योंकि ये कौन बोला?
6: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
4: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 9728772500.
8: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
9: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
8: कैसे?
9: पेज 3 ईटरी?
8: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
9: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
8: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
10: पेज 3 ईटरी. ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
11: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
12: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
11: K2 ड्राइव मतलब?
12: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
11: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
12: 100%
13: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
14: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
15: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
16: All right, guys, we are back. And thank you for these amazing calls. My control room is getting flooded. But koi to meri awaaz Arkansas mein bhi sun raha hai all the way. Thank you so much, meri awaaz sunne ke liye. Aage badhte hain. Aaj, you know, I spend a lot of time on the internet. Because kai baar kya hota na, when you have... I don't spend a lot of time on the internet. You know, guys, that says a lot about me though. But a significant amount of time. Let's just say that. I think we all do. Wo doom scrolling wale jab aap zone mein nahi jaate. You're like, okay, 5 minute ka time hai. Kya kare? Chalo, scroll karte hain. Achha, chalo, 5 minute ka time hai between lessons. Kya karenge? Chalo, scroll karenge. Achha, neend nahi aa rahi hai. Kya karenge? Chalo, scroll karenge. तो इस तरह से ना हो ही जाता है. मतलब 5 मिनट इधर, 5 मिनट उधर करते करते यू नेवर नो, मे बी द होल डे यू स्पेंड लाइक 4 hours ऑन योर फोन स्क्रोलिंग थ्रू एप्स एंड रील्स एंड मीम्स एंड स्टफ लाइक दैट. बट एनीवेज, उसमें कई बार ना बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड फॉलोइंग दिस रियली नाइस पेज कॉल्ड स्टोरीज बाय आराधना. एंड समहाउ माई Instagram, my gram is like actually showing me some good stuff too, not just really bad comedy of some person sitting in some village dancing to, like, I don't know, some song or whatever. It's not just dance videos or it's not just bad singing videos, you guys. There are some really good stuff also on the internet. I have actually learned so much that at some point of time, you know, when I had started my fitness and health and my fitness journey, I literally learned a lot of workouts that I use in the gym from the internet. Like, I was like, oh, this machine ko to aise use karte hain. Achha, isko bolte hain hack squat and all that. So anyways, I think sometimes internet can be a very good thing. Sometimes internet can be just a waste of time. But that being said, well, the reason I was saying that is because I came across this page called Stories by Aradhana, where she actually picks up these people who are maybe on the streets or like very, very poor. I feel like sometimes all of us, we take our privilege for granted because, you know, we think that हमारे पास मेरे पास यू नो मेरे पड़ोस जितनी अच्छी गाड़ी नहीं है, मेरे पड़ोसी जैसी इतनी अच्छी गाड़ी नहीं है, या फिर हाय मेरे दोस्त एट द एज ऑफ 35 ही इज मेकिंग लाइक 100K बट आई ओनली मेक लाइक 60K और यू नो सम काइंड ऑफ स्टोरीज लाइक दैट और यू नो देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक दैट दैट वी कंपेयर एंड वी फील बैड एंड काइंड ऑफ ब्रिंग्स अस डाउन बट आई फील लाइक देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर हु डोंट इवन हैव दैट मच. The fact that you have a phone and you can listen to the radio and all of that, it's a really big privilege, you guys. Kuch logon ke paas khane ke bhi paise nahi hote, matlab pani bhi nahi hota, saaf pani, kapde bhi nahi hote, aur wo kitne saalon se puri apni zindagi guzar dete hain usi ke chakkar mein ki do waqt ki roti mil jaye, kahin rehne ko aaj raat ko shelter mil jaye. So, because I am a musician, people who have tuned into my show before, you'll know. But those who don't know, yes, my name is Ippy the Hippie. Thank you for tuning in. We are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. For those who don't know, I have this amazing Bollywood band here called Dallas Bollywood Project. And we do a lot of concerts, mostly private events, because we are marketing ourselves as a wedding band and a, you know, private company or a private event artist. But we also do some public shows once in a while. Like last year we did for the Frisco Arts and Music Festival, and that was pretty cool. Uske alawa bhi we've done some events, like we played at the Nirvana Lounge at the Toyota Music Factory last year as well. And this year we're basically focusing on private events. But anyways, if you guys want to hire a really, really, really good band that is going to entertain you and play some really good music, like jazz and like oldie tunes, disco tunes, some like modern tunes as well, some party thumpers, and you want to have a really good time, well, you should call my band, okay? It's called the Dallas Bollywood Project. Anyways, why was I saying this? For those of you who don't know, I am a full-time musician, and then this RJ stuff is like something that I do on the side because it's so fun. I love to talk. I love to share stories. So this is, you know, this is fun for me. But that being said, when I saw this reel on Stories by Aradhana, usme Aradhana ne, she covered this musician, okay, who is so poor. He is so poor and he sits on the railway platform in Kolkata, like metro rail jo nahi hai, Kolkata mein metro rail bahut purani hai, uske platform pe baith ke wo violin baja rahe hain, aur violin mein utne sahi sahi gaane baja rahe hain na, puri melody unhone itne sur mein bajayi hai sari melodies. Aur ab aap mujh bol rahe hoge ki bhai railway platform pe bahut log bajate hain, aisa kya hai, what's so unique about it? Well, I'll tell you what's so unique about it is unke violin, first of all, violin seekhne ke liye you have to come from a little bit of a privileged background, because violin in India is not that popular instrument. आपको कहीं थोड़े से privilege से आपको आना पड़ेगा कि आपको कोई violin पकड़ाएगा और उसके ऊपर आप बजाओगे सुर, वो भी कान से सुन के या जैसे भी. और उनके violin में he only had one string on his violin. Violin में होते normally चार string, ठीक है, और वो एक string में पूरी वो मेलेडी बजा दी उन लोगों ने. उन्होंने क्या बोलते हैं, मेरे नैना सावन वादो, और इतना, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, इतना सुरीला वायलिन तो मतलब बहुत कम सुनने को मिलता है. एंड आई वेंट टू म्यूजिक स्कूल. म्यूजिक स्कूल के स्टूडेंट्स भी इतना सुर में नहीं बजाते जितना सुर में इन्होंने बजाया. एंड ही वॉज क्वाइट सीनियर. आई मीन ही मस्ट बी लाइक 50s, 60s, यू नो आई डोंट नो वट एज, बट ही मस्ट बी लाइक दैट. एंड एवरी नाइट एंड एवरी डे बेसिकली ही जस्ट सैट ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म एक स्ट्रिंग के साथ और उन वो वायलिन बजा रहे थे. एंड उनके साथ उनकी वाइफ थी. ठीक है, दे वो बोथ वेरी पुअर, दे बोथ बेयरली मेड एनी मनी. एक तो कोलकाता में लोग वैसे भी मतलब यू नो दे पीपल डोंट रियली, देर आर लॉट ऑफ होमलेस पीपल इन कोलकाता. और मतलब बाकी सिटीज से कोलकाता की हालत बहुत ही खराब है यू गाइज. अभी तो खैर पोलिटिकल पार्टी चेंज होगी, बट एनी वेज वी आर नॉट गेटिंग इन टू पॉलिटिक्स. बट शी वॉज बाय हिज साइड द होल टाइम. एंड दे आस्क्ड हर कि अच्छा सो वेयर डिड यू मीट योर हस्बैंड हु इज दिस लाइक इनक्रेडिबल म्यूजिशियन. एंड यू कैन क्लियरली टेल ही प्लेज विथ सो मच सोल. इतने दर्द के साथ वो बजा रहे हैं. तो उन्होंने बोला कि मैं एक्चुअली गुजरात से हूँ और ये मेरे गांव में आए थे बहुत साल पहले बजाने. ठीक है, टू डू अ शो बिकॉज बैक देन मे बी ही वॉज वेरी सक्सेसफुल, मे बी ही वॉज वेरी फेमस, यू नो नॉट मे बी नॉट वेरी फेमस बट ही वॉज टूरिंग लाइक यू नो लाइक what we call indie musicians these days. And he was traveling and he went to her village and unke village mein jaake unhone he did a violin concert and she absolutely fell in love with this man. And unhone tab and she said ki main tab sirf 17 saal ki thi. Matlab aaj ki date mein agar 17 saal ki umar mein aap प्यार वगैरह में पढ़े हो तो पेरेंट्स वैसे ही दो चपेट लगाएंगे, बोलेंगे नहीं तुम स्कूल जाओ बेटा, पहले कॉलेज वॉलेज जाओ, पढ़ाई वढ़ाई करो फिर देखना. लेकिन ये हम बहुत सालों पहले की बात बता रहे हैं. और तो उन्होंने बोला अपनी फैमिली को, देखो मम्मी पापा आई एम इन लव विद दिस म्यूजिशियन, मैं जा रही हूँ, आई एम लीविंग माई हाउस एंड आई एम गोइंग टू फॉलो हिम वेर एवर ही गोज ऑन अ टूर और वट एवर, आई एम गोइंग टू बी बाय हिज साइड. ओके, and she basically eloped with him. They both fell madly in love, so romantic. And even now she is by his side. He doesn't have any money, he is playing violin with one string, you guys. Aur mujhe na wo dekhkar itna rona aa gaya because for me that story in particular was so personal because I am a full time musician, I have a band, I can teach, I can make a pretty decent living, you know, living in Dallas, I'm living in America. And I was like, man, this is privilege. Logo ko ye nahi milta. There's so much talent out there and people spend their whole lives pursuing their passion and their dream and their music. Lekin sometimes luck is not by their side. Aur wo dekhna mere aankhon mein itne mote mote aansu aaye. I was literally bawling my eyes out, you guys. I was like, my god, this is so sad. And I really wanted to help him out, but they had not set up like you know, like a whatever GoFundMe or anything like that for this man. But you know, I put a comment there, I said somebody give him some violin students because clearly he can play. I mean, I wish he is able to make a living as a instructor, because a lot of the musicians, what we do is, you know, when the performance doesn't happen, we get into teaching and we can still pay our bills like that. So somebody help him out like that. And it was so, so, so emotional. Anyways, not to bring everyone's mood down, this is a request. Naam unhone apna nahi bataya hai, but unhone bahut bari mujhe call kiya abhi. And she really enjoyed my stories and my bit. This song goes out to you because जिंदगी एक पहेली जैसी है. जैसे इनकी जो सिंगल स्ट्रिंग वायलिन, लेट्स कॉल हिम, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम, वो सिंगल स्ट्रिंग वायलिन जो है, उनकी जिंदगी भी ऐसी पहेली है. एंड मे बी नाउ मे बी सोशल मीडिया कैन रियली डू समथिंग फॉर हिम. मे बी द पीपल एंड द पावर ऑफ सोशल मीडिया कैन रियली कॉन्ट्रीब्यूट एंड मेक समथिंग बेटर इन हिज लाइफ, यू नो. सो एंजॉय द सॉन्ग.

0: जिंदगानी. I know, right? जिंदगानी, जिंदगी is such a पहेली. And I feel like yesterday I was talking to my friend सुशांत, जिसकी स्टोरी मैंने आपको कल सुनाई भी थी, वो मतलब वो गुलाबों वाली, और उसने वो उसकी जो बंदी थी उसने बिल्कुल उसके गुलाब ऐसे क्रश कर दिए जैसे पता नहीं क्या. तो कल सुशांत से मैं ऐसे ही बात करी, कहते वी आर रियली एंजॉइंग, एंड सुशांत इज इन दिल्ली राइट नाउ, तो ही वॉज लिसनिंग टू माई शो. यार मतलब ये होती है असली फ्रेंडशिप, आपके दोस्त सुबह 5:30 बजे दिल्ली में, तब 5:30 बज रहे थे, उठ के आपका रेडियो शो सुन रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रू फ्रेंडशिप. ये वाली फ्रेंडशिप ना मिलती नहीं है. मतलब आई एम सो ग्रेटफुल कि आई हैव सच इनक्रेडिबल फ्रेंड्स ऑल अक्रॉस अमेरिका एंड इन इंडिया, एक्चुअली अक्रॉस द वर्ल्ड, जो डेडिकेटेडली मेरा शो सुनते हैं, मेरे गाने सुनते हैं. एवरी 6 मंथ्स आई रिलीज अ न्यू सॉन्ग ऑल्सो ऑन स्पॉटिफाई एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दे एक्चुअली लिसन टू इट. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल माई ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. अगर आप नहीं होते तो मैं शायद ये नहीं होती. एंड तो सुशांत ने, द रीजन वाई वो सेंग इज, सुशांत ने बड़ी एक सही चीज़ बोली, विच इज़ दिस, दैट लाइफ इज लाइक ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बटरफ्लाई इफेक्ट्स. यू नो whatever decision you take one, and you know, you take one decision, the next part of your life is beautifully created depending on that decision. It could be anything. It could be a good decision, it could be a bad decision. I mean, you never know until you actually see what happens after. And honestly, I would have never come to America if I'm not going to tell you why, you know, because we are not that close yet. There are some things in life which must be, gate kept. Is gate kept a word, by the way? I think it is. We should gate keep. I think that's how people use it. We should gate keep certain things in life because y'all don't need to know everything about me, hai na? Itni sab main sab bata dungi to fir mystery kahan se reh jayegi? It's not gonna be like mysterious and fun. But anyways, if something hadn't happened in my life, which was absolutely tormenting so much that I had gone through like severe depression and this and that and blah blah blah, let's not talk about it, I would have never had the fire lit inside me ki bhaiya America jana hai, kuch zindagi banani hai, matlab I have to do this. Aur agar main America nahi aayi hoti padhai karne to main yahan pe nahi reh rahi hoti, aur agar main yahan nahi reh rahi hoti तो फिर मैं रेडियो में कैसे आती, और अगर मैं रेडियो में नहीं आती तो आपको मेरी बातें कैसे सुनने को मिलता, है ना? तो इसीलिए लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई इफेक्ट्स कि आपको नहीं पता कहाँ से क्या चलेगा. एनीवेज, दिस सॉन्ग, द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अनदर रिक्वेस्ट, पर ये थोड़ा ओरिजिनल से थोड़ा सा हटके है, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ नाइस वर्जन. This is Babu Ji Dheere Chalna, but this version is brought to you by Sharma and the Besharams, because I think they are very Besharam yaar, but no, I don't think they are, it's just a very catchy name, I agree. Mere band ka naam ek point pe tha, Mississippi and the Madhouse or something like that, but I don't go by that anymore, but maybe I should bring that back, what do you say?
1: बड़े धोखे हैं इस राह में,

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8682364611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
2: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली ऑन रिसर्च में वेरी।
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
5: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
6: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth at mytimeequity.com for professional advice.
7: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click by thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Pan Asia.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: हे डैलस, स्टिल परफॉर्मिंग ओनली फॉर योर बाथरूम मिरर और द फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
11: Hello, we are back and you are listening to me, myself and I. And my name is Ippy the Hippie. अगर आपने मेरा शो सुना है पहले तो आपको पता है कि मैं कौन हूँ, और अगर आपको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ तो मैं दोबारा बोल देती हूँ, I'm the newest birdie at Fun Asia Radio 104.9 FM. Before we go on to the next part of our tune, वैसे वो वाला जो गाना चल रहा था ना इसके पहले, ले जा रे, मुझे वो बहुत पसंद है. और वो एक्चुअली इट जस्ट केम अप ऑन माई रेडार रियली सून, मतलब नॉट रियली सून, मतलब इट जस्ट केम अप ऑन माई रेडार ऑन इंस्टाग्राम कुछ टाइम पहले. पता है क्यों? You know why it came up? You are not going to believe it. It is the most ridiculous reason. So, if you see the video, the model in that video, she's got like this really tiny waist. ओके शी इज सो स्लिम, शी इज सो थिन, ऐसी फूक मारोगे फू करके वो उड़ती हुई जाएगी. शी इज सो थिन, यू नो. एंड आई रियली रिस्पेक्ट वुमेन हु हैव लाइक, आई एम टोटली बॉडी पॉजिटिव, आई एम नॉट अ स्किनी गर्ल यू गाइस, बट आई रिस्पेक्ट इट. आई मीन इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ फिजीक, एंड व्हेन यू आर इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी इज that you have to maintain a certain kind of physique. But then, you know why that reel became popular? Because she actually explained it. The reason she her waist is so tiny and so skinny is because she was only 16 years old. She was a child, you guys, you know. So, matlab, once you grow up, women's bodies change. So, she was basically a kid when she had shot that video. And now you see her, she's like, bhai, meri kamar utni to hai nahi. I'm in my 30s or 40s or something like that. But I'm trying hard to get back to that. But she knows that she will never get back to that body. And I feel like the world and the industry and the film industry and the music industry sets such ridiculous standards on all of us human beings by showing, you know, like, teenage bodies and appearances and, you know, physical features and stuff, which it's really hard to maintain once you become of a certain age, because, you know, age changes your face, age changes your body, and that's totally normal. And I feel like the world, you know, all this like entertainment industry puts like these really, really, really, really ridiculous standards on people. And I feel like usko hum kafi log idolize kar lete hain, jo kafi young bacche hote hain, unko nahi pata hota. And, you know, they get into all these like physical health issues like bulimia and anorexia and food disorders and things like that. I know for a fact that I have gone through several of these like issues at some point of time. And now I have changed myself. I have adapted myself. I know what works for my body. I know what I should eat and be healthy with. And sometimes it is okay to be just a little bit curvy, you know, and it's totally normal. It's totally fine. All body positive over here, okay? Anyways, before we go on to the next song, जो वही गाना है, एक्चुअली मुझे वो पूरा गाना सुनना है. मुझे वो गाना तो बड़ा पसंद है, वो क्योंकि गाना जो है वो है उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़ में विद श्रेया घोषाल. इफ यू नो हु उस्ताद सुल्तान खान इज, ही वाज क्वाइट ए लाइक रियली पॉपुलर एंड रियली रिवर्ड सिंगर फ्रॉम लाइक द अर्ली 2000s. ऑफ कोर्स ही इज अ क्लासिकल सिंगर एंड ऑल. आई मीन ही डिड अ लॉट ऑफ ख्याल गायकी, बट देन ही हैड अ लिटिल ट्विस्ट विद लाइक कंटेम्पररी म्यूजिक इज वेल. एंड यू नो ही डिड अ लॉट ऑफ अदर ट्यून्स लाइक पिया बसंती रे, वो गाना तो सबका फेवरेट है, एंड बंच ऑफ अदर ट्यून्स लाइक दैट. So he had this whole album called Ustad and the Divas, where he collaborated with a lot of our beautiful Bollywood singers. So anyways, enjoy the rest of the song. And then when you come back, then we'll make some announcements.

यारो दोस्तों, इट इज टाइम वेरी सून टू गो इन टू आर नेक्स्ट ब्रेक. लेकिन राइट नाउ इट इज द टाइम फॉर माई गिव अवे. दैट इज करेक्ट. तभी मुझे सबको पता चल जाएगा कि कौन मेरा शो सुन रहा है और कौन नहीं. तो अगर इफ यू आर क्रेविंग समथिंग चीजी विथ लाइक सम इंडियन फ्लेवर्स पैक्ड, ओके, फन पिज्जा किचन इज एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू गो. इट्स वेयर फ्लेवर मीट्स फायर. यम यम यम इन माई टम टम टम नम नम नम. फॉर ऑल माई वेजी लवर्स, यू गाइज हैव टू ट्राई द अचारी पनीर पिज्जा. उफ, पैक्ड विद दैट टैंगी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर. ओए होए, मेल्टिंग इन स्पाइसी मैजिक. वाह, क्या बात है. एंड फॉर द मीट लवर्स, यू हैव टू ट्राई द तंदूरी चिकन पिज्जा. एंड इट्स प्योरली स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर ऑन योर टेस्ट बड्स. वाह यार, तंदूरी चिकन तो मतलब इज काइंड ऑफ लाइक माई फेवरेट. आई लाइक ड्राई फूड मोर देन वेट फूड, सो दिस इज इट्स लाइक अ थिंग. ओके, बट सो वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, देर इज ए स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट द फन पिज्जा किचन. फॉर डिटेल्स विजिट funpizzakitchen.com. एंड प्लीज लिसन अप गाइज, here is a chance to win a $10 gift card by answering a very very simple question. I am going to play a song, ठीक है. इसके बाद तो आपको ये बताना है, ये two part question है, ठीक है. ये question ये बहुत आसान question है, मतलब किसी ना किसी को कब मिलेगा, मतलब किसी के बहुत सारे लोगों को भी मिल सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक ही गिफ्ट कार्ड है देने के लिए. सो आई एम श्योर आई विल गेट, आई विल बी फ्लडेड विद लॉट्स ऑफ कॉल्स, बट जो पहले कॉल करेगा उसी को मिलेगा. तो मैं गाना बजाऊंगी, आपको गाना सुन के पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी मूवी से है, विच इज़ वेरी ईजी. देन सेकेंड, इसमें दो मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स है, देर आर टू एक्ट्रेसेस इन दिस फिल्म, और आपको उनका मूवी में जो नाम है वो बताना है, नॉट देयर रियल नेम्स. कि आपको ये नहीं बताना कि ये माधुरी दीक्षित है, वैसे माधुरी दीक्षित है नहीं इस पिक्चर में, जस्ट सो यू नो. आपको ये बताना है कि उस उनके कैरेक्टर के नेम्स क्या हैं, ठीक है. मैंने तो ये मूवी बहुत ही बार देखी है, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी, इट्स सच एन आइकॉनिक वन. बट आप मुझे कॉल करिए. सो टू पार्ट क्वेश्चन, वन, टेल मी द नेम ऑफ द फिल्म, एंड टू, टेल मी द नेम्स ऑफ द टू फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन द मूवी, द कैरेक्टर नेम्स. ओके, सो हियर वी गो, लिसन टू द सॉन्ग.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
5: अरे सारे तो सेम है।
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
5: ओह हाँ, ये तो अलग है।
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
8: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
9: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
6: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: बैठ जाऊँ? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
12: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
11: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
13: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
14: इन प्लेनो।
13: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
15: गुडनेस इज अ ब्यूटीफुल थिंग, एंड गुड बिगेट्स गुड। One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.
16: All right, ladies and gents, we are back. We are back, and you are listening to AB the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. Yes, we are bringing the fun back, and you're listening to my show. An evening in Dallas. Ding-a-ding-a, ding-a-ding-a. Anyways, bhai, आज मैं ना बड़ी एक सही कोट और देखी, क्योंकि मैंने एक पहले वो पहनने वाला कोट नहीं यार, बोलने वाला कोट, एक फ्रेज, एक शेर शायरी टाइप फ्रेज, यू नो. तो मैं इरशाद करती हूँ, ठीक है. इरशाद इरशाद कोई है नहीं मेरे को बोलने वाला, पर मैं खुद ही बोलती हूँ अपने लिए, ठीक है. सुनिए इसको. डी से होता है दुख, ठीक है. डी से होता है दर्द. डी से होता है धोखा. ये सब तो ऑलरेडी सब मिल गया, सारे डी से क्यों होते हैं वैसे ये वर्ड्स, ठीक है. एनीवेज, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द शेर. दोबारा शुरू करते हैं. डी से होता है दुख दर्द धोखा, सब मिल गया, बट डी से यार दौलत भी तो होती है, वो नहीं मिला. पता नहीं किस्मत में क्यों नहीं मिलती है दौलत. तो इसके इसीलिए आपको मैं डेडिकेट करती हूँ ये वाला गाना. और उसके बाद गाना सुनने के बाद जब हम आएंगे, देन आई विल अनाउंस द विनर ऑफ द गिव अवे ऑफ द फन पिज्जा किचन.

लिसनिंग टू माई शो. आई थिंक यार मुझे वो गाना बहुत पसंद है. आई मीन इट्स सो रियल है ना. इट्स लाइक हाय रे दुनिया नोच नोच कर सितम कलेजे खाए. ऐसा कई बार ऐसा नहीं लगता कि हाय मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ दुनिया में और लग ही नहीं रहा यार लॉटरी, मतलब जो भी है. लेकिन लॉटरी से याद आया, वो गिव अवे तो जीत चुका है कोई. थैंक यू फॉर ऑल द वंडरफुल वंडरफुल कॉल्स. आवर विनर ऑफ द फन पिज़्ज़ा किचन गिव अवे इज श्वेता गुप्ता, हूज बाय द वे कॉलिंग ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन. श्वेता भाई आपको डैलस आना पड़ेगा. इनफैक्ट डैलस क्या, फ्रिस्को आना पड़ेगा. एंड यू हैव टू गो टू फन पिज़्ज़ा किचन इन फ्रिस्को एंड देन कलेक्ट योर गिफ्ट कार्ड. वी विल सेंड योर नेम एंड ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन टू देम. आप जाइए ऑल द वे ह्यूस्टन से, आइए पहले तो वहाँ जाइए फन पिज्जा किचन फ्रिस्को में और अपना पिज्जा खाइए, एकदम तंदूरी चिकन पिज्जा. और मुझे भी बुला लेना, मैं भी एक स्लाइस खाने आ जाऊंगी. ठीक है, ये तो सुन के मेरे मुंह में वैसे ही पानी आ रहा है. बट एनीवेज, गोइंग अहेड, एंजॉय दिस नेक्स्ट सॉन्ग. बाय द वे गाइस, द आर्टिस्ट फॉर दिस नेक्स्ट सॉन्ग, आपको पता है ये पिछले साल डैलस आए थे और मतलब यहाँ पे मुझे डैलस में मूव होने से पहले मुझे पता नहीं था. आई एम बंगाली वैसे तो, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली. आई एम अ दिल्ली गर्ल वैसे तो, बट आई एम अ बंगाली बाय माय एथनिसिटी. माय पेरेंट्स आर बंगाली, लेकिन वो ना कैलकटा से बहुत साल पहले दिल्ली आके शिफ्ट हो गए, अराउंड इन द 70s और समथिंग लाइक दैट. सो ऑनेस्टली आई काइंड ऑफ आइडेंटिफाई माई सेल्फ more as a Delhi girl and less of a Bengali, although Bengali culture भी मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है क्योंकि दुर्गा पूजा में हम सब ने गाना गाया है, डांस शांस सब किया है. और फिश तो आई लव भाई, मतलब बंगाली हो तो फिश से प्यार नहीं है तो क्या ही किया फिर आपने. ठीक है, एनीवेज, तो मैं जो इसीलिए बोल रही थी क्योंकि डैलस में मूव होने से पहले मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी बड़ी बंगाली कम्युनिटी है. अगर आपको पता है बंगाली लोग जो है ना दुर्गा पूजा मनाते हैं, जब हर पूरे इंडिया में नवरात्र का सीजन चल रहा होता है तब बंगाली लोग दुर्गा पूजा करते हैं. इट हैपन्स अराउंड द सेम टाइम. और मुझे पता नहीं था, पता है यहाँ पे पूरे DFW में कम से कम 10 बहुत बड़े बड़े दुर्गा पूजा होते हैं. एंड आई हैड नो आइडिया. इट यूजली हैपन्स ऑल ओवर DFW. डैलस में होता है, साउथ लेक में होता है, प्लेनो में होता है, फ्रिस्को में होता है, इतने सारे. एंड ईच ऑफ दीज दुर्गा पूजाज आर ऑर्गेनाइज बाई डिफरेंट लाइक नॉन प्रॉफिट कम्युनिटीज, अलग अलग नाम से हैं. तो वन ऑफ दीज कम्युनिटीज, बेसिकली वन ऑफ दीज एसोसिएशंस, बंगाली एसोसिएशंस, दे हैड ब्रॉट इन दिस बैंड यूफोरिया, विच आई एब्सोल्युटली लव. बट सम हाउ एवरी वन काइंड ऑफ क्रिटिसाइज दैट कॉन्सर्ट कि भाई इट वॉजेंट एज फन. जो उनके गाने तो भाई हमें बहुत पसंद है, जो उन्होंने एक टाइम पे खूब से रिलीज किए थे, बट अभी तो आई डोंट नो हाउ दे आर लाइव. बट मैं जब कॉलेज में थी, आई वॉज लाइक 18 ईयर्स ओल्ड एंड आई वॉज स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तब मैंने यूफोरिया को लाइव देखा था. मेरे कॉलेज में आए थे बजाने एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, टोटल फैन गर्ल. तब तो मुझे ज़्यादा स्टेज एक्सपीरियंस भी नहीं था, मैंने जाके फोटो वगैरह खिंचाई. इट वॉज लाइक सच अ मोमेंट, यू नो, इट वॉज सच अ फैन गर्ल मोमेंट. बट एनी वेज, इन्जॉय दिस नेक्स्ट सॉन्ग. And it is not a giveaway though, but do you know who the girl in the video is? Euphoria always had this thing, they would cast like these incredible ladies in their videos and then all of these ladies went on to become incredible actresses or like super famous, like supermodels or something like that. Ek to Neha Dhupia thi, which was from this song called Shana Na Na Na. This one, Why don't you tell me? उनका मैंने एक गाना पहले ही बजाया which features this actress and she is very successful now. So tell me, who do you think is the actress in this video before she became like who she is?

Guys, I mean, I don't know how many of you have actually seen Euphoria ke music videos on YouTube or on TV whenever they aired. But, you know, what I really like about all of that is there's actually storytelling. There's actually a proper story. It's not just एक बंदा वहां पे खड़े होके नाच रहा है, उसके साथ चार हॉट सी लुकिंग सी मॉडल्स पीछे से डांस कर रही है और ये ऐसे. आई मीन देयर इज एक्चुअली ए स्टोरी लाइन. इट्स लाइक अ मिनी मूवी, यू नो, इन अ 5 मिनट वीडियो और व्हाटएवर इट इज. एंड आई फाइंड दैट लाइक सुपर इंटरेस्टिंग. मतलब देयर इज डायलॉग, देयर इज, आई मीन ऑफकोर्स मैं अभी डायलॉग तो नहीं बजाऊंगी ना यहाँ पे, मतलब रेडियो पे, वो आप अपने आप से देख लेना. बट मुझे वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है. इट कैचेस द आई, यू नो, आई थिंक इट्स प्रीटी कूल. People don't do that kind of storytelling these days. So I think that's very nice. Anyways, enjoy this next song. Season 14.

are back. You are listening to Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. आप लोग हैं भाई वहाँ पे गाने वाने रिक्वेस्ट करिए. आई नो मेरा मिक्स बड़ा सही है. मैं बहुत एक्चुअली टाइम लगाती हूँ अपना मिक्स बनाने में रेडियो पे. जो ये जो मिक्स आप सुन रहे हैं ना, ये जो गाने, मैं एक्चुअली प्रॉपरली रिसर्च करती हूँ. ऐसे नहीं कि ऑटो प्ले में, पूरे लिख के लाती हूँ कि आज तो ये वाले गाने बजेंगे, ये हमारा थीम होगा. तो अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करना है गाना टू समवन स्पेशल, डेडिकेट अ सॉन्ग टू समवन, अ लव्ड वन और समथिंग लाइक दैट, गिव मी अ कॉल एंड आई विल प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू गाइस. बट अंटिल देन आप ये वाला गाना एंजॉय करिए, बिकॉज दिस गाना इज सो कूल. ये गाना तो यू नो इन द अर्ली 2000s देयर वाज दिस बिग वेव ऑफ लाइक दीज ब्रिटिश पंजाबी आर्टिस्ट्स. And I think Jay Sean was one of those artists. Jay Sean along with Juggy D. And there were so many of those. I think Subir was also one of those. And like they had like these incredible songs which were groovy, feet thumping. And they were modern and stuff like that. And uske baad Indian music bhi thoda sa badal gaya. You know, whatever stuff was being released in Bollywood, that also kind of changed. Because aapko yaad hai ki nahi, mujhe pata nahi. But ek movie aayi thi, Hum Tum. And they featured Jay Sean's song, Main Toh Tere Naal Nachna. Ye gaana nahi tha, koi aur gaana tha. But it was basically the same artist they had featured. And it was so cool. Like, I think इंडी म्यूजिक जो है ना, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो अपने गाने खुद बनाते हैं एंड दे डू देयर ओन लिटिल स्पिन, दैट वंस इट पिक्स अप, आई थिंक इट चेंजेस द होल इंडस्ट्री सो मच. एंड आई फील लाइक पीपल काइंड ऑफ मूव, पीपल लाइक द न्यूनेस, पीपल लाइक द न्यू साउंड. एंड यू नो, एंड समटाइम्स पीपल इवन डू दैट टू ओल्ड सॉन्ग, यू नो, पुट न्यू स्पिन ऑन इट, रीमिक्स बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया. बट इट हैज़ टू बी डन टेस्टफुली, है ना. ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल दिया, मतलब थोड़ा मूड भी सही होना चाहिए. मूड से याद आया, आज आपका मूड क्या कह रहा है, आप मुझे कॉल करिए, बताइए, एक्सप्लेन योर मूड टू मी इन वन फ्रेज. ओके, नॉट वन वर्ड, वन फ्रेज, वन लाइन. व्हाट इज योर मूड टेलिंग यू? टेल मी, कम ऑन, कॉल मी, आई एम गोना पुट यू ऑन एयर एंड देन यू नो लेट्स हैव सम फन. यू कैन कॉल मी ऑन 972-235-5555 एंड एंजॉय दिस सॉन्ग इन द मीन टाइम.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
2: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
0: ना सब और प्राइस
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
4: मैं हीरो।
5: सब कुछ साफ रख सकते हो,
6: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
7: क्योंकि ये कौन बोला?
6: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
8: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
9: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
10: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
11: Chicken banana.
12: Bro, banana nahi, banana. Matlab, make the chicken right.
13: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
14: Is shehar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhuan dhuan. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
15: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
16: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.
17: All right, guys, we are back. We're in the last 30 minutes of my set, or my show rather. And you're listening to Ippy the Hippie on 104.9 FM Fun Asia Radio. And my show, the show is called An Evening in Dallas. Main har Monday se Thursday tak yahan pe rahungi. आपके लिए बहुत अमेजिंग अमेजिंग से गाने प्ले करूंगी और बहुत सारे बकवास बकवास से जोक्स भी मारूंगी, क्योंकि यार जोक्स में मजा तो आता है। हरी हमेशा लाइफ सीरियस रहेगी तो कैसे मजा आएगा? यू नीड टू क्रैक सम जोक्स, यू नीड टू हैव सम फन इन लाइफ। एनीवेज, आई एम नॉट गोना टॉक टू मच नाउ बिकॉज वी आर इन द लास्ट 30 मिनट्स, बट I have to do some important stuff, which is make this announcement. Ravi Imports Warehouse, all right, Dallas store owners, this one's for you. Ravi summer kickoff sale is back. Your calendars on June 3rd and June 4th should be blocked because you have to be there at Ravi's import house from 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's massive. It's huge. It's bigger than it has ever been. And the entire warehouse turns into a tropical experience. Oi, oi, oi, oi. Expect crazy deals, new product launches and free gifts all day long. Listen, I want some free gifts too. Meet vendors, discover bestsellers and stock up like never before. Ravi's Import Warehouse, where is it located? 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. But also, you can kind of just Google it. It's a really big place, you know. If you put it on Google Maps, it'll show up. Anyways, enjoy this next tune, kyunki I know, I mean, this is so great. I feel like this artist, not I feel like, I actually know, but unfortunately main us time pe radio pe nahi aayi thi, nahi to main announce zarur karti, but this artist was actually just recently performing in Texas. I kind of forgot where he was performing. I think he was performing in Houston earlier this month, and I mean, I think he defined like a lot of the music and the styles from like the early 2000s and like the late 90s. So many songs, aur unke sare gaane hit the, sare ke sare gaane hit the, but this was I think his first breakthrough song, so enjoy this.

And Himalayan Med Spa services. You know, I'm interested in that Himalayan Med Spa service. All under one roof. Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. You can walk in anytime. No appointment needed. और आज मेरा जी करता है टू गो टू द हिमालयन मेड स्पा एंड गेट अ मसाज, यू नो, लाइक अ लिम्फैटिक ड्रेनेज मसाज. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? नो, इट्स ओके. आई विल गूगल इट, सो रिसर्च इट.

दैट वाज सो ग्रेट. दैट सॉन्ग इज कम बैक. वैसे अगर आपको नहीं पता, वो धुरंधर की वजह से वो वापस आ गया, लेकिन दिस इज द ओरिजिनल सॉन्ग यू गाइस फ्रॉम मॉनसून वेडिंग विच आई एब्सोल्युटली लव. उसमें एक और बहुत सही सा गाना था, वसुंधरा, वसुंधरा क्या नाम है उसका, भूल गई मैं, कोई बात नहीं. उसका एक और बड़ा सही सा गाना था, वो आप देखो. वो मॉनसून वेडिंग की स्टोरी बड़ी अच्छी थी. इट्स अ मूवी बाय मीरा नायर, एंड मीरा नायर इन द अर्ली 2000s मेड अ लॉट ऑफ दीज मूवीज विच वर एक्चुअली ऑफ बीट, थोड़ा हटके टाइप. बट एनीवेज, हटके से याद आया एक चीज़, आई जस्ट केम अक्रॉस ऑन द ग्राम, आई शैल से इट. ओके, दिस पर्सन ही इज एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स. तो ये है, दिस इज हाउ इट गोज. My friend made 1 crore last month. She's only 26. No IIT, no IIM. You guys, she's not a tech person. She's an engineering dropout. Guess what? Her first salary was 24,000. I mean, 24,000. Last month, she made 1 crore. What changed? I wonder what changed. You know what she did? What she did was this. She stopped looking for jobs to make more money and she started selling her dad's land. I mean, that's easy money right there, isn't it? Easy solution to everything. Start selling your daddy's land. That's what you should do. Anyways, I thought that was kind of funny. But enjoy the song. We are in the last 10 minutes of my show. We'll play the song and then I will come back and crack another lame joke and then we'll go. That's it. Tata, goodbye for the night. But enjoy this next song.

सॉन्ग, उसका तो नया वर्जन भी निकल गया है. लेकिन जाने से पहले मैं गाना एक और बजाऊंगी, और वो गाना बजाने के पहले मैं एक मेरी फिलॉसफी है वो मैं सुनाऊंगी आपको, और वो मैं खुद भी मानती हूँ और आप भी मान सकते हो, क्योंकि जिंदगी बहुत ही छोटी है यार. याद है मैंने कल क्या बोला था? जिंदगी इज टू शॉर्ट. सो व्हाट वाज इट? हैंग ऑन, मैं याद करती हूँ. रुको रुको रुको, कहाँ गया? जिंदगी जिंदगी लाइफ इज टू शॉर्ट, सो डोंट बी सैड, शाइन लाइक अ हीरा, ओके, शेक योर हिप्स लाइक शकीरा, एंड डांस लाइक गरम तेल में जीरा, एंड सिजल विद लाइफ बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट. बट ऑल्सो सुनती मैं सबकी हूँ. यहाँ पे लोग बहुत फ्री में एडवाइस देने वाले भाई बहुत होते हैं, यू नो, माइक पे एक आके 3 घंटे तक नॉन स्टॉप बोलना भाई आसान बात नहीं है, ठीक है. लेकिन एडवाइस देने सब आ जाते हैं कि बेटा आपको ये करना चाहिए, बेटा आपको वो करना चाहिए, बेटा आपको ऐसा रहना चाहिए, आपको वैसे रहना चाहिए. मेरी पूरी जिंदगी में लोगों ने एडवाइस ही दी है, कभी इस कान से घुसता है तो दूसरे कान से निकलता है. तो मेरी ये फिलॉसफी है, सुनती मैं सबकी हूँ, जो पर मैं करती पता क्या हूँ, जो सामने वाले का खून जलाता है. क्योंकि वो देखने में बड़ा मजा आता है, यू नो, व्हेन यू आर लाइक, अरे मैं तो अपनी करने वाली हूँ. एनीवेज, दैट बीइंग सेड, हैव ए वंडरफुल नाइट यू गाइस. दिस इज मी साइनिंग ऑफ, हिप्पी द हिप्पी, एंड यू आर लिसनिंग टू फनीजिया 104.9 FM. लेट्स बी रियल, लेट्स बी बैडीज, बिकॉज व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग सेफ, यू नो, डोंट बी सेफ, टेक सम रिस्क, हैव फन, इंजॉय लाइफ, लिव इट टू द बेस्ट एंड इंजॉय दिस सॉन्ग, क्योंकि आज की रात कुछ होने को है.

होने को है वो आप डिसाइड करिए, और अगर कुछ नहीं होगा आज की रात तो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तरसों तरसों

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। Desi Mandi, powered by Desis, loved by Dallas.
4: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
5: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
2: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi। Exclusive media partner, Fun Asia।
6: Ladies and gentlemen, you're not ready for this। फ्रिस्को में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा इज नाउ ओपन एट अ न्यू लोकेशन इन एलन। वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस। फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू। एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे। कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल। पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन। मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन your first visit।
7: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai, profits hai but no cash liquidity, har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety, diagnosis clear hai, aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy। AG FinTax, founded by Forbes council member Anil Granthi, from taxes to CFO advisory, business owners ke har challenge ka ek hi solution। Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG FinTax's advisory services.
6: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes, and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi, and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DAW.
8: For booth and sponsorship contact admin at ambuj.us.

0: वहां से थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Fun Asia
2: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है, स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया।
2: बेटा कम है।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

जहे नसीब, इतनी रात गए आप हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ तो बात होगी इस चैनल में। रात भर आपके साथ फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है। सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 6 8 2 3 4 6 4 6 1 1 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
1: Astrology readings for guidance only and results may vary.
2: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे। इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

bringing the community together. Fun Issue Radio, 104.9 FM.

0: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up. AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So, is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
1: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल वन मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल टू मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट. लेवल थ्री अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस.
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: माय गॉड।
1: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ। पर क्यों? क्योंकि ये देखो #you #ouch #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
0: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।
1: क्या

0: The Magic 24/7, only on 104.9 FM.
1: हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है।
2: कुछ कॉमन होना जरूरी है क्या?

0: IT is the spice of our station.
1: Yeah, 104.9 FM.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

बस आशिकों पे रहे कर्फ्यू।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनेश।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: It is 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhuaan dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
9: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
10: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
11: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
10: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
11: वेट, व्हाट?
9: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
12: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
9: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
13: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
14: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
13: K2 ड्राइव मतलब
14: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
13: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
14: 100%
15: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। केटो ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
16: सब कुछ साफ रख सकते हो पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
17: क्योंकि ये कौन बोला?
16: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
18: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
19: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
9: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
9: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah,
0: It's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
20: Let's get started with this hour of the program with the best wishes going out for Eid al-Adha today. Eid Mubarak to all of you who are celebrating Eid today.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
5: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
4: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
5: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
3: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटिन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181, मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
6: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
7: एक्सक्यूज मी, It's called being loyal.
6: It's called being predictable.
7: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
6: And what's so special at Neon Cactus?
7: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
6: Not bad.
7: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
6: Okay, this I didn't expect from you.
7: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: Eid Mubarak.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
4: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
5: हाँ।
4: घर रिलोकेट करनी है?
5: हाँ।
4: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
5: हाँ भाई हाँ।
4: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
3: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
6: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodiyal on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
7: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2-3-4-6-4-6-1-1 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
8: Astrology readings have our guidance on the answers may vary.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं। Ura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
11: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
12: ये क्या होता
13: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
15: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
16: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
15: के टू ड्राइव मतलब?
16: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
15: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
16: 100%
17: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट k2drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner. Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana.
6: Telangana. Supported by major Indian non-profit organization, NDAW.
0: For booth and sponsorship contact, admin@ambuj.us.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: It's rain and isolated thunderstorm that is going to linger across North Texas, and we will keep you posted on that. It is the rain tapering off in DFW, flash flood warning, which is until 12:30 p.m. We'll talk all about that in just a bit. Actually, in the next segment. Pehle dua salam to kar le aap logon ke saath. Hello, namaskar, and thank you so much for tuning into Funasia Radio 104.9 FM. Ye hai Gapshap Gali with me too. लेकिन ये शो शुरू नहीं कर सकती जब तक मैं शबनम जी को एक बड़ा वाला थैंक यू नहीं दे दूं। इट इज़ द मॉर्निंग ड्राइव टाइम शो दैट यू एंजॉय विथ हर 7 to 10 मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM. नाउ दैट बीइंग सेड, शुरू करते गपशप गली विथ मी टू।

बारिश का ये असर जो है ये तो ऑन एयर चलता रहेगा, यानी कि कुछ ऐसे ही गाने हम प्ले करते रहेंगे आपके लिए, लेकिन ऑन रोज इसका असर बिल्कुल अलग होता है. वेट रोज ड्रास्टिकली इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स बाय रिड्यूसिंग द टाई अट्रैक्शन, फिर डबलिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हो जाता है उसके कारण, और इसके कारण जो वो चांसेस होते हैं ना हाइड्रोप्लेनिंग के, उसका भी चांसेस एलिवेटेड हो जाता है. सो दीज आर द रीजंस दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन वेट रोड्स. नाउ दैट बीइंग सेड, इसके बावजूद भी, टेक केयर करने के बावजूद भी, इट इज़ नॉट ऑलवेज यू हु गेट्स इन टू दीज एक्सीडेंट्स, इट्स अबाउट द अदर पर्सन हु इज़ नॉट ड्राइविंग दैट सेफली, जिसके कारण एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. और ऐसे में कॉम्पनसेशन इज समथिंग दैट यू डिजर्व एब्सोल्युटली, चाहे वो एक्सीडेंट का मामला हो, स्लिप एंड फॉल हो, या वर्क प्लेस इंजरी हो. अटर्नी ओमर ख्वाजा को जरूर याद करें और उन्हें कॉल करें, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर गोइंग टू मेक दिस एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग द कॉम्पनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इज रियली रियली कंफर्टेबल एंड ईजी फॉर ऑल ऑफ यू. सो डू रिमेंबर लेडीज एंड जेंटलमैन टू गेट इन टच विद देम राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द केस. 4693005046, फिर से बताने वाली हूँ, 4693005046, एंड यू डोंट हैव टू पे अंटिल यू विन. दैट्स द बिग प्रॉमिस दैट दे कम विथ. attorneyomer.com इज द वेबसाइट दैट यू नीड टू रिमेंबर, एंड ऑल्सो द नंबर इन द स्टूडियो, इट इज 9722355555. ये है कपशप गली विथ मी टू.

जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, देखिए मेरे दिमाग से ही बिल्कुल निकल गया, पता नहीं कैसे निकल गया, लेकिन आदिल साहब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द बेस्ट विशेस दैट यू हैव सेंड टू मी एंड माय एंटायर टीम. थैंक यू वेरी मच. ईद मुबारक आपको, आपके अपनों को. दुआ है कि इस मुबारक मौके पे आपकी जिंदगी खुशियों और बरकत से भर जाए. ईद मुबारक टू एवरीबॉडी सेलिब्रेटिंग.

0: Eid celebration will continue on the airwaves of Fun Asia Radio 104.9 FM. हम सब की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद की ढेर सारी दुआएं आपके अपनों को और आपको. थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन.
1: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल Fun Asia 104.9 FM.
2: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर. उमर ख्वाजा.
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
4: सब कुछ साफ रख सकते हो
5: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
6: क्योंकि ये कौन बोला?
5: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
7: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 9728772500.
8: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
9: Mamu, देखो क्या हो गया.
10: ओ, क्या हो गया?
9: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
10: ओए, जर्मन का कमाल है.
9: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
10: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 9726906623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
11: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
12: बिग अचीवमेंट्स डिजर्व अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशंस. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
13: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
14: Bollywood ka ultimate heartthrob, Arjun Rampal is coming to Dallas with a special DJ performance. Get ready for the Rampage Tour on May 31st at Club Vivo Dallas. Doors open at 9 PM, strictly for 21+. For tickets and table reservations, contact Isha at 469-560-5560.
15: Tracks that put you on the right track.

दिस इज गपशप गली विथ मी टू. और हमारी गपशप यहाँ पे इट इज अबाउट, एक्चुअली गपशप नहीं कहना चाहिए, इट इज समथिंग दैट यू ऑल नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट, एंड इट्स द वेदर दैट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट. हमें भरपूर बारिश मिली है ओवर नाइट, यू प्रॉबेबली वर स्लीपिंग थ्रू इट, लेकिन मोस्ट ऑफ DFW पिक्ड अप 1 to 3 inches ऑफ रेन ओवर नाइट. और ये जो शावर्स हैं ये लिंगर कर रहे हैं मॉर्निंग आवर्स में भी और आफ्टरनून आवर्स में भी हमें ये मिलने वाला है. देर इज अ थ्रेट ऑफ isolated thunderstorm especially east of I-35 throughout the afternoon. और ऑब्वियसली ये तो बाहर एक झलक लेकर ही आपको समझ में आ जाता होगा कि भाई आज बारिश के लिए पूरे दिन प्रिपेयर्ड रहें आप. और आपके लिए ये भी है कि भाई स्कैटर्ड स्टॉर्म्स जो हैं वो फोकस में हमारे कल भी रहेगा. और फ्राइडे एंड सैटरडे इट विल बी ट्रेंडिंग अ लिटिल ड्रायर, नॉनदलेस स्कैटर्ड स्टॉर्म्स विल रिटर्न टू द फोरकास्ट ऑन संडे एंड टेम्परेचर विल हीट अप इनटू द लोअर 90s. टेम्परेचर्स अभी भी हमें कुछ मिड 90s जैसा फील होगा because of the humidity factor, and humidity and some light rain chances continue into early week as well. Aaj ka high kuch 82 ke aas paas hone wala hai. Aaj ka low, let me quickly check on that for all of you. It is going to be around 69, close to 70 that we are going to have. Tomorrow's high will be in mid-80s and low will be close to 70 again, ladies and gentlemen. So that's the weather update for all of you and we'll keep you posted on exactly that. You are tuned into Fun Asia Radio 104.9 FM. This is Gapshap Gali with me too. Yahan par Kareem sahab ki ye jo request hai of a retro song, I'm going to play one of Kishore's.

पता है मैं अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारी में हूँ. जी हाँ, डब्बा लेकर आती हूँ मैं अपना और मज़े से गाने सुनते सुनते, आप लोगों से बातचीत करते करते मैं खाना खाती हूँ अपना. तो इसीलिए मुझे लगा कि फॉर दोज हु आर यू नो आउट एंड थिंकिंग अबाउट लंच, क्योंकि थोड़ी ही देर में लंच की तैयारियाँ हमारी शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे में इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ अ गुड प्लेस, मी आई सजेस्ट Page 3 Eatery. और Page 3 Eatery Hub 121 पे है, और ये वो जगह है कि जहाँ पे एक ना मॉडर्न फ्लेयर लेकर आता है खाने में. आपके वो इंडियन स्ट्रीट साइड फूड जो होते हैं ना, वो वैसे वाला खाना आपके लिए बिल्कुल अलग ही एक तड़के के साथ ये सर्व करते हैं. द वे दे सर्व इट, आई रिमेम्बर ईटिंग दिस रैप एक्चुअली, और वो भी न्यूज़पेपर में सर्व किया था. वो इतना कमाल का मुझे उनका वो सर्विंग स्टाइल लगा, एंड द एवरीथिंग दैट दे सर्व इट ब्यूटिफुली एंड इट इज़ अमेजिंग रियली. खाना बहुत बढ़िया है, एम्बियंस बहुत बढ़िया है, एंड जैसे कि मैंने कहा, सर्व जिस तरह से करते हैं वो आंखों से भी हम फीस्ट करते हैं, राइट? तो वो सब चीज़ें आपके चेक मार्क्स लगेंगे. तो चाहे आप ब्रंच, लंच, डिनर, डेट नाइट, फूडी मीटअप, ऐवे जाना चाहते हो, कोई भी रीज़न हो, इट इज़ ए गुड इनफ रीज़न टू गो टू Page 3 Eatery एंड हैव दैट परफेक्ट परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर एंड एनर्जी एंड ब्यूटिफुल वाइब्स दैट यू गोइंग टू गेट देयर. Page 3 Eatery, इट इज़ एट Hub 121 एंड Page 3 Eatery.com पे जाकर डू चेक आउट देयर मेन्यू. हमारे मेन्यू पे इस वक्त एक और रेट्रो गाना है, क्योंकि कुछ गाने आपकी ज़िंदगी से यूं ही जुड़ जाते हैं, उनकी धुन में लिपटे होते हैं कुछ छोटे बड़े किस्से, कुछ ढेर सारी यादें. दिस इज़ गपशप गली विथ मी टू.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओह हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Chicken banana. Chicken banana?
4: Bro, banana nahi, banana. Matlab, make the chicken right.
5: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
6: Mera retirement plan ready hai.
7: Plan ya hope?
6: Matlab?
7: Matlab hai, plan matlab strategy. होप मतलब देखते हैं क्या होता है।
6: ओके, तो मेरा वाला होप है।
7: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं।
6: क्यों?
7: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है।
2: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com।
8: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
12: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
11: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
13: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
14: गुडनेस इज अ ब्यूटीफुल थिंग एंड गुड बिगेट्स गुड। वन एक्ट ऑफ कंपैशन बिकम्स अ सर्कल ऑफ वर्चू दैट कीप्स टर्निंग। एट SIUT, दैट ट्रांसलेट्स इनटू फ्री ट्रीटमेंट विद डिग्निटी, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स आर गिवन होप व्हेन दे नीड इट मोस्ट। एवरी लाइफ टच्ड क्रिएट्स अनदर रिपल ऑफ गुड। दिस ईद, स्टेप इनटू दैट साइकिल। Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
15: Tracks that put you on the right track.

In this last segment of the hour that I bring for you is the FIFA update for all of you. तो FIFA fans जो हैं सारे US men's national team जो आप root करने वाले हो, मैं बताने वाली हूँ कि जो उनके coach हैं, उनके team के coach हैं, Mauricio Pochettino officially named his 26 player roster for the 2026 World Cup. इस बार team को headline करने वाले हैं हमारे mainstays Christian Pulisic, Tyler Adams and Weston McKennie. Overall, there are 13 powerhouse players who were part of the historic squad that successfully reached the round of 16 back at the 2022 World Cup. Aur baki 13 incredible players apne life mein pehla World Cup khelne wale hain. और ये बहुत एक्साइटिंग भी होगा और नर्व रैकिंग, और जितना उनके लिए उतना उनके फैंस के लिए भी. एंड इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ देम टू मेक द फाइनल कट. और प्लेयर्स जो हैं, 26 प्लेयर्स जो रोस्टर पे हैं, इनका एवरेज एज 26 इयर्स एंड 332 डेज है. एंड देयरफॉर ये टीम यूएस की वर्ल्ड कप हिस्ट्री का फिफ्थ यंगेस्ट स्क्वाड बन चुका है. द रोस्टर विल नॉट बिकम ऑफिशियल यूनिट until it is officially submitted to FIFA before the upcoming deadline, which is June 1st, Monday, June 1st. Once the US list is officially submitted, injured players can be replaced on the roster until 24 hours before kickoff. Aur US ka pehla big game Paraguay ke saath hone wala hai, June 12th ko at Inglewood, California. After facing Paraguay, the US will fly up to take on a tough Australia squad in Seattle on June 19th. Aur iske baad group stage ka aakhri dham माकेदार मैच जून 25th को सोफी स्टेडियम में होने वाला है विथ टर्की. एंड दिस इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्युटली मैसिव समर फॉर सॉकर राइट हियर ऑन अमेरिकन सॉइल एंड ऑल्सो ऑन आर सॉइल हियर इन डैलस फोर्ट वर्थ एरिया, जहाँ पे जून 14 से सारे ग्रुप मैचेस शुरू होने वाले हैं. हाउ एक्साइटेड वी आर. एंड विद दैट, विशिंग ऑल आर प्लेयर्स, यूएस मेन्स नेशनल टीम, द एंटायर टीम, द वेरी बेस्ट. लुकिंग फॉरवर्ड टू enjoying all the matches. Pankaj ki request pe, let's get you this next track, which I absolutely love, from the film Ijazat. Music zara sunein. Back to back RD Barman music right here for all of you.

There is also this one FIFA announcement that I want to make before we hit the break. क्या गाना पंकज आपने सजेस्ट किया, मजा आ गया सुन के. फिल्म इजाजत का ये गाना सुन रहे थे आप. अब FIFA की बात कर रहे थे ना, तो करंट चैंपियन आप जानते हो अर्जेंटीना है. दे हैव हैड 3 टाइटल्स सो फार, और उरुग्वे और फ्रांस के 2 टाइटल्स उन्होंने वर्ल्ड कप में, FIFA वर्ल्ड कप में जीता है उन्होंने. वाइल इंग्लैंड एंड स्पेन हैव 1 ईच. चेकोस्लोवाकिया, हंगेरी, स्वीडन एंड द नेदरलैंड्स एंड क्रोएशिया हैव प्लेड इन द फाइनल विदाउट विनिंग. और अर्जेंटीना ने डिफीट किया था फ्रांस को पेनल्टीज के. लास्ट फाइनल मैच जो था विच वॉज स्टेज एट कतार, यू रिमेंबर दैट वन, इन 2022. क्या नेल बाइटिंग मैच था. बस यही मजा होता है गेम्स का कि वो लास्ट मिनट तक कुछ भी हो सकता है. Alright, DFW, we are just weeks away from the 2026 World Cup, right? Which is going to take over Texas. But the injury bug is threatening to sideline some of the biggest superstars on the planet. Or obviously, fans or teams काफी anxious है as the global June 11 kickoff gets closer. Injured players के लिस्ट में अब लियोनेल मेसी का भी नाम आ चुका है. एंड मेसी हैड टू लीव हिज इंटर मायामी गेम ऑन संडे क्लचिंग हिज लेफ्ट हैमस्ट्रिंग. एंड दिस इज बैड न्यूज फॉर लोकल फैंस बिकॉज अर्जेंटीना इज सपोज टू प्ले ए वार्म अप गेम अगेंस्ट होंडुरस एट टेक्सास A&M's काइल फील्ड ऑन जून 6. उसके बाद उनके मेन टूर्नामेंट मैचेस यानी आर्लिंगटन के AT&T जो स्टेडियम में होने वाले हैं वो होने वाले हैं. सो इट इजंट जस्ट मेसी फीलिंग द फिजिकल स्ट्रेन राइट नाउ. स्पेन्स यंग सुपरस्टार जिनका नाम है लमीन यमाल जो है ये भी अपना मिस कर रहे हैं गेम एंड ऑफ क्लब सीजन विद अ लेग इंजरी दैट ही हैज़ हैड. दो ही इज एक्सपेक्टेड टू हील इन टाइम. लेकिन प्लेयर्स और कोचेस ने लगातार बढ़ती इंजरीज का रीजन अपने ओवर पैक स्केड्यूल्स को बताया है. सो दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ देम आर वेरी अबाउट. अर्जेंटीना, इंग्लैंड, नेदरलैंड्स की कुछ प्लेयर्स भी इंजर्ड हुए हैं जिसके कारण दे हैव बीन रूल्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप फॉर द ACL इंजरी एंड द लिगमेंट इंजरी दैट देयर हैज बीन. सो इट इज इम्पैक्टिंग, द हैवी स्केड्यूल इज इम्पैक्टिंग पीपल. एंड होपफुली वी आर एबल टू यू नो सी ऑल आर फेवरेट प्लेयर्स एंड होपफुली दीज प्लेयर्स आर एबल टू प्ले, क्योंकि इसी के लिए तो ये वेट करते रहते हैं. तो होपफुली ये सारे रिकवर हो. विशिंग देम ऑल ए स्पीडी रिकवरी, इंक्लूडिंग मेसी एंड यमाल.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: छब्बीस में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स, एलिस। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
8: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
9: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
10: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
11: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एंबियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
12: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
13: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
14: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
15: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
16: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
17: ट्रैक्स दैट पुट यू ऑन द राइट ट्रैक।

प्रीतम्स म्यूजिक, अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स और अरिजीत सिंह की आवाज, ये तीनों फिर एक बार इस गाने के लिए जो आए हैं, जो कि कॉकटेल 2 के लिए है, विच रिलीज्ड जस्ट कपल ऑफ डेज बैक. और प्रीतम इसके साथ लेकर आए हैं तुझको चैलेंज. तुझको इज द टाइटल ऑफ द ट्रैक. और जितने भी अच्छे गाने वाले मुझे अभी सुन रहे हैं ना, ये चैलेंज जो है, ये इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है. ईजी स्टेप्स दैट यू हैव टू डू एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ द तुझको चैलेंज एंड पॉसिबली पार्ट ऑफ देयर एल्बम. और इसीलिए सुनते रहें फन एजर रेडियो 104.9 FM. इस गाने के बाद बताती हूँ कि तुझको चैलेंज क्या है. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

प्रीतम के म्यूजिक में इस गाने को सुन लिया ना अरिजीत सिंह की आवाज में, अब आपकी आवाज की जरूरत है। आई नो सो मेनी ऑफ माय लिसनर्स सिंग सो ब्यूटीफुल कि इस तुझको चैलेंज में आपको हिस्सा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड डोंट हेजिटेट एट ऑल, क्योंकि ये चैलेंज प्रीतम ने आपके सामने रखा है, इट इज कॉल्ड तुझको चैलेंज। और इसमें प्रीतम ने ये कहा है कि आप इस गाने को गाएं, फिर पोस्ट करें, टैग करें प्रीतम को विद दैट हैशटैग विच इज तुझको चैलेंज। हैशटैग तुझको चैलेंज के साथ प्रीतम को टैग करके अपना गाना अपलोड करें एंड यू माइट जस्ट बी द विनर। और अगर आपका बेस्ट कवर होता है, यानी कि प्रीतम एंड हिज टीम इफ दे सिलेक्ट योर कवर, यू विल गेट अ फीचर ऑन द कॉकटेल टू एल्बम। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ अमेजिंग इज दैट। तो जरूर अपना गाना जल्द से जल्द पोस्ट करें। एंड कॉकटेल टू, you know that the movie is hitting the theaters on June 19th. It is a Homi Adjania film. He's the director, Shahid Kapoor, Preeti Sanon and Rashmika Mandanna ka ye gana jo ki do din pehle release hua hai. To ye challenge, it is up and available for all of you. Be part of it. Aisa hi ek challenge bahut din pehle ek aur gaane ke saath hua tha, and it was Vicky Donor, that Ayushman Khurana film jisme Rochak Kohli ka music tha. Aur ye challenge tha पानी दा रंग चैलेंज, जहां पर बेस्ट कवर को मौका मिला टू सिंग अलोंग विथ आयुष्मान खुराना हिमसेल्फ, और वो चांस मिला था अभिरुचि सिंह को। एंड यू कैन गेट दिस वर्जन ऑफ पानी दा रंग ऑन यूट्यूब। हियर इट इज फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट हु इंटेंड टू पार्टिसिपेट। आई से गो फॉर इट।

All right, that was Pani da Rang, ladies and gentlemen. That challenge ka hissa that this song was for all of you to know, kyunki hame pata hai ki ye gana actually originally ye gana आयुष्मान खुराना की सिर्फ आवाज में था एंड दिस वॉज द अटेम्प्ट ऑफ इंक्लूडिंग द फैंस ऑफ दिस सॉन्ग फॉर दिस वन. ऑलराइट, मेरे पास आपके लिए कुछ स्पेशल है प्ले करने के लिए एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल वे दैट आई कैन डू इट फॉर यू. एंड ओके, आई थिंक आई एम ऑल सेट ऑन दिस वन. सो लेट्स टॉक अबाउट ड्रेक, हु हैज ब्रोकन द रेकॉर्ड प्रीवियसली हेल्ड बाय माइकल जैक्सन फॉर मोस्ट नंबर वंस ऑन द बिलबोर्ड हॉट 100 बाय ए सोल मेल आर्टिस्ट एज द सॉन्ग जैनिस bows atop the chart following the release of his trio of albums. और ये trio of albums जो है ये इसमें कौन से included है मैं आपको बताती हूँ. I think able to tell you that it is Iceman, Maid of Honor and Habibti that he released on May 15th and it's going crazy on the Billboard chart. With that kind of accomplishment, Drake now ties Rihanna and Taylor Swift for most number ones across all acts with 14 chart toppers. The only other artists ahead of them are Mariah Carey and that is with 19 songs and Beatles with 20. Or he's really riding a high off the success of his trio of albums. And also, I do want to mention here, across the top 10, Drake occupies 9 of the slots. Now, how amazing is that, ladies and gentlemen? Jisme se ek hi gana hai at number 5 spot, jahan par एक ये जो गाना है विच इज टाइटल चूजिंग टेक्सिस विच आई वुड लव टू प्ले फॉर ऑल ऑफ यू. मैंने कहा कि यार टेक्सिस का नाम भी है एंड द ओनली सिंगर एंड सॉन्ग राइटर एला लैंगली हु इज ऑन दिस चार्ट उन्हें सेलिब्रेट किया जाए. हाउ अबाउट दैट.

Well, Drake, the singer, the rapper, he has 9 spots on the Billboard Top 10, Billboard Hot 100. The first 10 slots mein se jo 9 spots Drake ko gaye hain, except for this Ella Langley's Choosing Texas, which hangs on at number 5. And this song narrates where the narrator realizes that no matter how hard she tries to make him fall in love with her in Tennessee, his heart belongs to the Lone Star State, and that's Texas. Proud to be a Texan, ladies and gentlemen, and proud to be part of this team, which is Funisha Radio 104.9 FM. This is Gapshap Gali with me too. आप लोगों के लिए सवाल आ रहा है अगले सेगमेंट में, उस सवाल के लिए तैयार हो जाएं. बहुत ही ज़रूरी वाला सवाल है. बहुत सारी आप लोगों से सजेशंस चाहिए. देखना है मुझे कि क्या क्या एडवाइसेस मिलती हैं. सो 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो. जुड़े रहें हमारे साथ, बने रहें, चिपक के सुनते रहें फनीशर रेडियो.

0: This part of my show is brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax firm in the US. हम चाहते हैं कि मिस्टर अनिल ग्रांदी के साथ आप जरूर कनेक्ट करें, क्योंकि कनेक्ट करने से ना बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होती हैं. आपको पता चलता है कि यू नो इफ इट इज मेंट फॉर यू, आपको पता चलता है कि इफ दे कैन हेल्प यू विद फाइनेंशियल फ्रीडम दैट यू आर सीकिंग. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक टू देम, फाइंड out and use their decades of strategic tax planning and bookkeeping experience to enable small business owners like you yourself, and you will succeed and build wealth by, you know, saving hundreds of thousands of dollars, and that isn't bad at all. Tell me about that, right? 469-942-9888 is the number. Once again, 469-942-9888. AGFintax.com is the website. Financial and tax services for dynamic business owners that they offer. Thank you once again for tuning in. Break pe jane wale, gaana lagane wali thi, lekin main dekh rahi hu ki na wo gaane ko justify kar paungi, na kisi aur baat ko justify kar paungi. Yani ki agar koi baat shuru ki to wo bhi puri tarah se khatam nahi ho payega. To kya karein? Hum aapko chaliye batate hain ki agle segment mein kya hai aapke liye. Agle segment mein hamara jo ye ek conversation channel hum ओपन करते हैं आपके लिए, कि आप हमें कॉल करते हैं और आप हमें अपने ओपिनियंस बताते हैं. आप हमारे साथ जिस भी टॉपिक पे बात होगी उस पे आप कंट्रीब्यूट करते हैं. सो 972-235-5555. आई एम श्योर मेनी विल पे अटेंशन इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल रियलिटी चेक दैट वी मस्ट ऑल हैव. तो इसी के बारे में कुछ बातचीत होगी अगले सेगमेंट में. आपके ओपिनियंस, आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा. कीप लिसनिंग टू फनी रेडियो 104.9 FM. दिस इज गपशप गली विथ मी टू. कीप लिसनिंग. हाँ,
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
3: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
2: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
4: वेट, व्हाट?
5: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
6: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
5: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
7: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
8: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
9: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
8: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
9: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
5: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट. नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम. कॉल 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
10: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. Desi Mandi, powered by Desis, loved by Dallas.
11: कंप्यूटर जी का सवाल ये है बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
12: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
11: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
8: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं। रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
13: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA Loan Experts. फैसला क्लैरिटी के साथ।
14: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
15: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming. Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन टू फनीशर रेडियो 104.9 एफएम. अब आए हैं आप ऑन बोर्ड, तो ऐसे कैसे होगा कि हम आपको आपके लिए जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो लेकर ना आए, स्पेशली व्हेन वी हैव इट सो क्लियर इन फ्रंट ऑफ अस. इट इज टू डू विद टेक्सास प्राइमरी केयर, जिन्होंने 13 ईयर्स से आपकी बड़ी अच्छे से केयर की है फॉर द इंटायर कम्युनिटी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ ग्रोइंग विद ए ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन, दे आर इंट्रोड्यूसिंग ल्यूनॉक्सी मेडिकल. नाउ ल्यूनॉक्सी मेडिकल प्रोवाइड्स क्विक कंपैशनेट केयर विथ मिनिमल वेट टाइम्स. तो आप इनका जो गोल है उसमें आप जरूर हिस्सा बन सकते हैं, एंड द गोल इज टू टेक केयर ऑफ यू एंड टू एंड. और इसीलिए बहुत सारे जो इनके सर्विसेज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा. फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, ल्यूनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज. जैसे कि मैंने कहा ना, एक ही जगह पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएं तो हेडेक ओवर, राइट? वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे जाना सच में बहुत प्रॉब्लम लगता है, और ऐसे में एक ही जगह पे अगर सब कुछ मिल जाए तो क्या ही बात है. देयर अर्जेंट केयर सेंटर्स आर डिजाइन टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्राइमरी केयर एंड द इमरजेंसी रूम, ऑफरिंग सेम डे केयर विथ ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस एंड कंपैशनेट यू नो क्लिनिशियंस दैट दे हैव देयर. सो यस, गेट इन टच विद देम. ये आपके लिए ओपन है 8 AM टू 8 PM. आई वांट टू मेक श्योर दैट आई एम यू नो शेयरिंग द राइट टाइमिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू. सो वंस अगेन 8 AM टू 8 PM ऑल 7 days दैट दे आर ओपन फॉर यू, एंड देर इज नो वेट टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड. वॉक इन एनी टाइम एंड यू विल बी हेल्प थ्रू एंड थ्रू. वंस अगेन इट इज टेक्सास प्राइमरी केयर एंड देयर न्यू लोकेशन ऑफ ल्यूनॉक्सी मेडिकल ऑफ इन फ्रिस्को. थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन. ये है गपशप गली विथ मी टू. कुछ बातचीत हमारी शुरू होने वाली है, वही एक मुद्दा है और वो है फाइनेंसेस संभालने का. उसी के बारे में कुछ आप लोगों से राय लेना चाहती हूँ और हमारे बाकी लिसनर्स तक भी पहुँचाना चाहती हूँ. तो मुद्दा एक ही रहेगा और आपकी सजेशंस शायद अलग अलग होंगे. जैसे कि इस सेगमेंट में सारे गानों के जो टाइटल है ना वो एक ही है, लेकिन गानों की फील, म्यूजिक, रिदम सब कुछ अलग है. सो दिस इज साथ ही आई एम गोइंग टू प्ले फॉर ऑल ऑफ यू.

That's the invitation that I'm sending you all as well. आइए और on air बात कीजिए. कुछ suggestions मैं चाहती हूँ. And let's try and keep our call under a minute's time so that we give chance to many, many people and get more and more suggestions. तो suggestion किस बारे में? तो गपशप गली with Me Too में मैं financial वो गली पकड़ना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि inflation ने ना हमारी वाट लगा के रखी हुई है और हमारे budget पर इसका कितना गहरा असर पड़ा है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट 2026 डेटा फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज क्लाइम्ड अप टू 3.8% अक्रॉस द कंट्री. ऑल्दो टेक्सास का इट इज एट 3.0 दैट आई डू वांट टू मेंशन हियर. यहाँ पे हमारे बहुत सारी चीजों में यू नो प्राइसेस का इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन यूटिलिटीज के मामले में टेक्सास इज प्रॉबेबली अहेड ऑफ एनी अदर प्लेस. नाउ डैलस मेट्रोप्लेक्स में भी लोकल कंज्यूमर्स के लिए जो प्राइसेस जो बढ़ गई हैं, उसका मतलब बहुत ही मुश्किल है उसको संभालना. सो विथ प्राइसेस राइजिंग एट सुपरमार्केट्स एंड गैस स्टेशंस अलाइक, मैनेजिंग आर डेली बजट हैज बिकम एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी. लेकिन इस महंगाई के बीच हम सब एक बहुत ही डेंजरस हैबिट के शिकार हैं, और वो है इनविजिबल स्पेंडिंग. यू नो फिनटेक स्टडीज शो करता है कि भाई 83% हम ज़्यादा स्पेंड करते हैं when we use those digital wallets like Apple Pay instead of physical cash. You know, इस चीज़ ने ना जितना तो लाइफ आसान किया है, उतना ही एक्चुअली हमें ज़्यादा स्पेंड्रिफ्ट भी बना दिया है. क्योंकि आप अपनी आंखों के सामने जब कैश जब देते हो ना, तब आपको पता चलता है कि यार ये शायद ज़रूरी नहीं है, या ये ज़रूरी है केवल इतना ही लेते हैं. उस तरह के हम ना माइंड में कैलकुलेशन करने लगते हैं. लेकिन जब हम वो डिजिटल पेमेंट्स करते हैं ना, या क्रेडिट कार्ड भी फॉर दैट मैटर जब यूज़ करते हैं ना, तो ये पिंच नहीं होता है. वो हाथ से गिन के पैसे जब आप देते हो, वो वाला पिंच नहीं होता है. तो मुझे याद है कि हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने ना ये शुरू किया था, एक वीकली बजट बनाना शुरू किया था, और उतना ही वो कैश लेके अपने वॉलेट में घूमते थे. एंड ही यूज्ड टू मेक श्योर दैट ही वुडंट यूज एनी यू नो एप्पल पे, ऑल दोज डिजिटल पेज, और फॉर दैट मैटर क्रेडिट कार्ड. तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हो, मुझे बताइए. डू यू प्लान इट इन अ वे कि भाई पूरे हफ्ते की ग्रोसरी जो है एक ही दिन करने वाले हैं? किस तरह का आप मैनेज करते हैं फाइनेंसेस अपने? लेट्स हियर इट फ्रॉम यू गाइस. या थोड़ी सी हम दूसरों को भी थोड़े से एक टिप्स एंड एडवाइसेस के तौर पे देखते हैं, किसकी हमें राय बहुत अच्छी लगती है. क्योंकि जिनकी राय हमें अच्छी लगेगी, उनको हम कुछ फ्री देने वाले हैं, और फ्री होगा देसी मंडी का ग्रोसरी हैम्पर. जी हाँ, आपके फाइनेंसेस में थोड़ी सी हम भी कंट्रीब्यूशन, एक्चुअली देसी मंडी कंट्रीब्यूट करना चाहती है. क्योंकि देसी मंडी जो है एक ऐसी जगह जो कि आपके ग्रोसरी नीड्स को पूरा करती है. इट्स द बिगेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन लुइसविल, वी नो दैट. और आपके लिए ये ग्रोसरी हैम्पर एब्सोल्युटली फ्री, दिस ग्रैंड ग्रोसरी हैम्पर, अगर आपका जवाब और आपकी राय हमें पसंद आ गई. ठीक है, आई एम ऑलरेडी गेटिंग कॉल्स ऑन दिस वन. लेट्स होल्ड ऑन टू इट. एक गाना सुन लेते हैं, वापस आके बात करते हैं. ठीक है. मधम मधम तेरी गीली हंसी

0: ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर ट्राइंग टू गेट आंसर्स फ्रॉम यू. और सवाल सिंपल सा है कि आप अपनी इस बढ़ती महंगाई में आप कैसे बचत करते हो. कुछ अगर टिप्स एंड एडवाइसेज हैं तो जरूर दीजिएगा. जैसे मैंने बताया ना, मेरी एक फ्रेंड है जो कैश लेकर चलते हैं, ही डजंट यूज हिज क्रेडिट कार्ड और डिजिटल पेमेंट्स का वो नहीं करते हैं. सो दैट जब हाथ से कैश देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा रिकैलकुलेट करने लगते हो अपने दिमाग में कि ये जो फलाना चीज आप खरीदने जा रहे हो वो वाकई में जरूरी है कि नहीं. ऑल राइट, आई एम गोइंग टू टेक दिस कॉलर लाइव ऑन द एयरवेव्स ऑफ फनेशिया रेडियो. यू आर लाइव ऑन एयर. आप अपना नाम बताएं और सजेशन भी दें हमें.
1: हाय, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. नाम है सुष्मिता और मैं ये बोलने चाह रही थी कि यू नो दिस फाइनेंशियल प्लानिंग आई वुड से नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम यू नो चाइल्ड एज अ चाइल्ड. दैट्स हाउ माय डैड इंकल्केटेड दैट with us, you know, where it feels like old school, but you know, when they start maintaining their own little book and start writing down, so you know, jo bhi unko milta hai na, during festivals or for the chores that they do, I make them write, you know, as a credit, and then when they spend it for themselves, they go ahead and, you know, maintain those transactions themselves and kind of inculcate the thought that, hey, this is my money and I need to use it wisely.
0: Yeah, this is my money and this is the budget I have for the month and therefore I need to spend it more mindfully. How amazing that advice is. Thank you so much for that tip, Sushmita. Yes. Thank you. Going to... all right. If you want to go on air and give us some suggestion, tips or advices that you have in your mind, please bataiye ki kya karte hain, hafte ke bhi budget aap kaise banate ho. You are live on air.
2: Ji, good morning, kaise ho?
0: Bilkul badhiya hoon ji. Aap को मैंने होल्ड पे रखा एंड देन द कॉल ड्रॉप्ड. आई एम ग्लैड यू आर बैक.
2: कोई बात नहीं. पहले तो वो ईद ईद ईद है ना सबकी, तो सबको मुबारक.
0: थैंक यू.
2: रियली

0: कैसे हो?
1: बिल्कुल बढ़िया हूँ जी. आप को मैंने होल्ड पे रखा है एंड देन द कॉल ड्रॉप्ड. आई एम ग्लैड यू आर बैक.
0: या कोई बात नहीं.
1: सो
0: पहले तो वो ईद ईद ईद है ना सबकी, तो सबको
1: ओह
0: मुबारक
1: थैंक
0: सभी. यू आर
1: यू,
0: रियली वेटिंग.
1: थैंक यू
0: ये
1: सो
0: मैं
1: मच
0: बजट
1: टू
0: का,
1: यू एज वेल एंड टू योर फैमिली एज वेल.
0: ओके थैंक यू. वो बजट का है ना, मैं अपने होम टाउन में आई वाज वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफिस एंड आई वाज डीलिंग दैट अकाउंट सेक्शन फॉर मोर देन 27 इयर्स.
1: हाँ जी.
0: तो मुझे बजटिंग, आपको बजट स्टेटमेंट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस किस तरह करते, ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है. और
1: जी
0: लेकिन मेरे हस्बैंड समझते कि घर की मुर्गी दाल बराबर.
1: ऐसे ही होता है एक्चुअली. लेकिन इफ यू कुड टेल अस वेरी क्विकली बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव चांस टू एज मैनी एज पॉसिबल, तो जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर बताएं कि
0: तो
1: कैसे.
0: उससे आपको बहुत अच्छे से मैनेज मैनेज करने आता कि बजट कैसे करते हैं. आपके पास जितने पैसे होते हैं, हमको बोला जाता था कि आप इतने पैसों में ही खरीदना.
1: हाँ
0: अगर आपको कोई चीज खरीदना हो तो आपको यू हैव टू वेट फॉर 1 मंथ नेक्स्ट पॉकेट मनी मिलने तक.
1: जी बिल्कुल.
0: हाँ, उसके बाद में है ना, तो फिर मेरा सब्जेक्ट भी वही था ऑफिस में. अभी मैं यहाँ मैं बहुत सोच समझ के चीजें खरीदती हूँ. अगर आपको कोई, आपका ड्रेस खरीदना है, कोई सिलेक्शन है, तो आप पहले अपने क्लॉजेट में देखना कि आपके पास किस रंग का नहीं है. तो पहले से अगर माइंड सेट करे तो आपको जल्दी सिलेक्शन करने में इजी होता. और मैं कभी भी रिटर्न पॉलिसी क्यों नहीं अप्लाई करती मैं, क्योंकि वो एक बिजनेस का एक टैकल होता है. अगर आप रिटर्न करने जाएंगे तो आप है ना दो चार चीजें कुछ
1: और
0: और
1: खरीद के
0: खरीदेंगे, तो
1: लाएंगे. बिल्कुल सही बात एक्चुअली.
0: आप, हाँ, तो उसमें क्या होता है, आपको एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है और आपका गैस होता है, वो भी वेस्ट होता है. और आप
1: जी.
0: जो दो चार चीजें और खरीद के लेके आते हैं. और मैं कभी भी क्रेडिट कार्ड्स को मैं ज्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि
1: जी
0: आपको उसमें इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है. आपको, अब आप इतनी मेहनत से कमाते हैं तो
1: जी
0: फिर आप क्या इंटरेस्ट में पैसे दे देंगे आप?
1: या बिल्कुल सही. बहुत सारे बहुत अच्छे टिप्स दिए. थैंक यू सुरैया जी फॉर योर कॉल. आई एम गोइंग टू टेक दिस नेक्स्ट कॉलर ऑन द एयर एंड देन वी गोइंग टू स्लिप इनटू अ नाइस सॉन्ग. ऑलराइट, क्या नाम है आपका? हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
0: हेलो,
1: व्हाट्स योर नेम?
0: हेलो, मेरा नाम अनुज वर्मा है.
1: अनुज, बताएं व्हाट्स योर एडवाइस और सजेशन फॉर आवर लिसनर्स?
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बंदे को ये पता होना चाहिए व्हाट आर हिज नीड्स एंड व्हाट आर हिज वांट्स. तो
1: करेक्ट.
0: उसको मेन फोकस उसको अपनी नीड्स पे करना चाहिए रादर देन अपने वांट्स पे. बिकॉज
1: बिल्कुल
0: वांट्स की कोई लिमिट नहीं है,
1: जी
0: नीड्स लिमिटेड है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए.
1: जी
0: बट इफ यू
1: बिल्कुल
0: वॉन्ट, यू वॉन्ट द होल वर्ल्ड. सो बेसिकली आपको ये फोकस करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, कि आपकी नीड्स क्या है रादर देन वॉट आर यू वॉन्ट्स.
1: एब्सोल्युटली. थैंक यू सर. आई वुड वॉन्ट फॉर यू टू होल्ड द लाइन फॉर मी, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि आपके इस टॉपिक पर, आपने जो बात नीड्स एंड वॉन्ट्स पे की है ना, इस पे आपको देसी मंडी का गिव अवे दिया जाए. सो प्लीज होल्ड द लाइन फॉर मी एंड आई टेक ऑल योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि तगड़ा सा ग्रोसरी हैम्पर जो मिलता है, आपकी नीड्स विल बी डेफिनेटली केटर्ड देयर. थैंक यू सो मच. प्लीज होल्ड द लाइन.
0: Absolutely. Thank you.
1: ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, जो इन जनाब ने कहा, अनुज साहब ने कहा, बिल्कुल सही. एक रूल है, आपको पता है, 50-30-20 रूल. इन्फ्लेशन फील्स ओवरवेलमिंग, राइट? तो रिटर्न टू दिस बेस लाइन. कई लोगों ने जो फाइनेंसिस के महारथी हैं, उन लोगों ने सजेस्ट किया है कि 50% नीड्स पे दो, जैसे हाउसिंग, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, मिनिमम डेट पेमेंट्स, इन पे दो. 30% अपने वॉन्ट्स पे भी दो, क्योंकि जिंदगी यार वॉन्ट्स के बिना क्या ही पूरी हो सकती है, क्या ही रंगीन अगर नहीं होगी, अगर अगर वॉन्ट्स पे भी आप अगर ध्यान ना दो. तो एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट, नॉन एसेंशियल शॉपिंग पे अपना 30% रखो, ठीक है, वॉन्ट्स पे. एंड 20% ऑन सेविंग्स, यानी कि आपके रिटायरमेंट, एमरजेंसी फंड, एक्स्ट्रा डेट, कुछ भी अगर आपका चल रहा हो उसको पे ऑफ करने का, ये सारी चीजें डिवाइडेड बिटवीन नीड्स, वॉन्ट्स एंड सेविंग्स एंड यू विल बी सॉर्टेड. ऑल राइट, अनुज इज सॉर्टेड फॉर हिज ग्रोसरी थिंग फॉर श्योर. दिस वीक हम उनको देकर आते हैं एक अच्छा सा गिव अवे. आप ये गाना सुनो और एंजॉय करो. फनेशर रेडियो 104.9 FM.

पता है, जाते जाते आप लोगों से कहना चाहती हूँ बिफोर आई यू नो वाइंड अप दिस सेगमेंट एंड एंटर इनटू माय नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज गोइंग टू बी अबाउट फिल्म्स दैट रिलीज ऑन दिस डे. तो मैं ये कहना चाहती हूँ, एक पावरफुल थॉट के साथ आपको छोड़े जाना चाहती हूँ इस सेगमेंट के लिए. हमने अभी जो बात की ना, फिजिकल कैश को हाथ से देने में थोड़ा सा दर्द होता है और हम खर्च करने से पहले दो बार सोचते हैं. इट इज़ बिकॉज होल्डिंग एक्चुअल करेंसी फोर्सेज अस टू पॉज, लुक एट वॉट वी हैव एंड वॉट वी नीड, वॉट वी वॉन्ट एंड ऑल ऑफ दैट, एंड अबाउट सेविंग्स ऑल्सो वी वैल्यू इट मोर देन, है ना. लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो आजकल हम सिर्फ पैसे ही इतनी केयरलेसली स्पेंड नहीं करते हैं. We do the exact same thing with our time, our energy and the words we say to the people we love. क्योंकि ये चीज़ें invisible होती हैं, यानी कि इसका direct impact आपको तब immediately समझ में नहीं आता है. हम बिना सोचे समझे इन्हें फिजूल की चिंताओं और यूँ कह सकते हैं कि यू नो बेवजह के arguments में बर्बाद कर देते हैं. We swipe away our precious hours on digital screen just like you know tapping a credit card, forgetting that our time on earth is also limited. अगर हमारे पास हमारी एनर्जी और हमारे वर्ड्स का एक फिजिकल कैश बजट होता तो शायद हम इन्हें बहुत संभाल कर खर्च करते. जस्ट समथिंग टू रियली थिंक अबाउट. इन द मीन टाइम एक और गाना विद दैट सेम टाइटल साथिया दैट आई एम गोइंग टू प्ले, द मोस्ट पॉपुलर वन आउट ऑफ द लॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ व्यूज एंड लव्स लाइक्स दैट इट हैज गॉटन. और ये गाना लेकर जाने वाला है इस फाइनेंशियल सेगमेंट के एंड तक, और अगले सेगमेंट में बहुत बढ़िया से गाने, आई कैन अश्योर यू दैट. दिस इज गपशप गली विद मी टू.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
7: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
6: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
8: Yaar, business chalana din ba din mehenga hota ja raha hai. Har taraf bas expenses hi expenses.
9: Bilkul. Lekin tujhe pata hai. Ab wohi expenses tujhe income bhi de sakte hain.
8: Sach mein? Expenses se income? Kaise?
9: Connecting America ke through. Unke paas ek यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
8: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
9: एग्जैक्टली। अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
8: नंबर बोल जल्दी।
9: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
10: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
11: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
12: Arre yaar, Dallas mein Punjab?
13: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
14: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
15: Main shadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो।
16: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
17: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
18: वेट, इतना सब और प्राइस?
17: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
19: मैं।
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
1: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
6: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर। लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-24
19: 4458 or visit lawsontravel.com.
20: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
21: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
22: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
23: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
22: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
24: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम, ओके, नेम ऑफ द लॉयर, उमर ख्वाजा।
25: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
26: Hi, I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio।

0: थैंक यू जी. दिस इज गपशप गली विथ मी टू. आप लोगों के साथ इस आखिरी सेगमेंट में बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारा म्यूजिक है. Everything that you will enjoy and be rich in information as far as your credit score goes. Yes, this is one thing jo hum sab ke dimag mein hota hai ki to be very careful about that. And today we are tackling this topic directly that impacts our financial freedom, our peace of mind and our big American dream, right? Hum sab jante hain ki US mein ek acha credit score hona hamari life ke liye kitna zyada zaruri hai. Whether you are trying to buy a beautiful new home, let's say in Prosper or Princeton, anywhere else, for that matter, ya finance karna chahte hain apna car aur kuch apne lower karna chahte hain monthly interest rates, credit score is the ultimate key to it, right? लेकिन बहुत बार छोटी छोटी गलतियों या गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारा क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं. दैट इज़ वाई वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट इन द स्टूडियो फ्रॉम जीनू क्रेडिट रिपेयर. इट इज़ मिस्टर दीप हु विल गाइड अस थ्रू द एंटायर प्रोसेस. लेट्स वेलकम हिम ऑन द एयरवेव्स ऑफ फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. गुड आफ्टरनून सर. मैं बस टाइम देख रही थी कि मॉर्निंग पे ही है कि आफ्टरनून आ चुका है. सो definitely good afternoon to you, Mr. Deep. How are you doing?
1: I'm good, me too. How are you doing today?
0: Doing wonderful. और आपसे जितनी भी tips and advices मिलती हैं, हमें पता है कि सबकी afternoon थोड़ी और बेहतर होने वाली है when they come to know that there is always a way out. Credit score अगर आपका खराब भी हो जाए, एक चीज़ है, एक जिसे कहते हैं professional help from Zeno Credit Repair कि वो आपकी पूरी तरह से मदद कर सकते हैं. So let's begin with asking you exactly that कि मान लीजिए North Texas में कोई move होता है, ठीक है, and उसके बाद उन्हें कुछ ऐसी इस तरह की गलतियां हो जाती हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे और क्रेडिट स्कोर उनका ख़राब हो गया. अब उनको नहीं पता कि कैसे क्या करना है. तो क्या है ये प्रोसेस, क्या होता है व्हेन दे लेट्स से कॉल यू?
1: राइट. दी मीटू द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन, वो सबसे बड़ी बात क्या है. अभी यूजुअली लोग क्या सोचते हैं, अभी क्रेडिट मींस अगर आपका क्रेडिट बैड है दैट योर फ्यूचर इज लिमिटेड, राइट? वो सोचते हैं एक बार क्रेडिट बैड हो गया तो so we will not be having any other option, right? So but ye bas ek misconception hai, but the truth is with the little bit of the guidance, discipline and a clear plan, financial recovery is possible.
0: ji absolutely.
1: So hum picture mein kab aate hain, Zeno credit kab picture mein aata hai, jab in log वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब वो अप्लाई करते हैं किसी तरीके का लोन, राइट? चाहे वो घर लेना है, गाड़ी लेनी है. हर एक बंदा सोचता है अभी हम अपार्टमेंट का बिल दे, अपार्टमेंट रेंटल पे रह रहे हैं तो एटलीस्ट एक मॉर्गेज की तरफ जाएं और वी कैन एटलीस्ट 20-25 साल में अगर वो घर हमारा हो जाए दैट विल बी अ बेटर डील फॉर देम, राइट? इंस्टेड ऑफ पेइंग एवरी मंथ. तो ये चीजें जब वो सोचते, तो जब वो अप्लाई करते हैं तो उनके रुकावट क्या आता है, क्रेडिट स्कोर. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इतनी जो जिंदगी इतनी तेज निकल रही है, लोग इसके बारे में सोचते नहीं है. कब तक नहीं सोचते? जब तक उनको जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज की, राइट? तो जब जरूरत पड़ती है उसको अच्छे क्रेडिट की तो तब तक इतना लेट हो जाता है. अभी उन्होंने कभी, आई बिलीव वी 40% ऑफ द क्लाइंट्स वो क्रेडिट रिपोर्ट चेक ही नहीं करते कभी भी,
0: जब तक
1: उनको कभी वो डिनाई. हाँ, राइट. जब उनको कोई चीज डिनाई होता है फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द लैंडर, फिर उनको पता लगता है यार, अच्छा मेरा क्रेडिट स्कोर इतना बुरा है, मेरे क्रेडिट में इतनी लेट पेमेंट्स हैं, अनसर्टन, किसी की आइडेंटिटी मिसमैच है, आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकता है, मेरे अकाउंट क्रेडिट रिपोर्ट में कलेक्शन अकाउंट्स हैं. फिर वो एक तरह को एक सरप्राइज हो जाते हैं व्हेन दे कम अबाउट ऑल दीस फैक्ट्स. तो अगर किसी को जरूरत है, कोई घर लेना चाहता है और उसको दिक्कत परेशानी आ रही है, अभी उसके क्रेडिट स्कोर बूस्ट नहीं हो रहे हैं, उसका क्रेडिट रेशियो बहुत खराब है, तो दे डोंट नीड टू, इट्स नेवर एंड ऑफ द वर्ल्ड. वी आर हियर, वी आर जस्ट वन कॉल अवे. सो वी, आवर टोल फ्री नंबर इज 800-400-9468. बस आप डायल करो, एक फ्री कंसल्टेशन बुक करो हमारे क्रेडिट स्पेशलिस्ट के साथ, तो आई कैन टेक गारंटी ओवर द फोन दैट यू विल बी बैक ऑन ट्रैक वेरी सून.
0: That's a big promise that Xeno Credit Repair comes with. Once again, ज़रूर कॉल कीजिएगा एंड फाइंड आउट योर options और किस तरह से वो आपकी मदद कर सकते हैं. सबसे पहले तो यही जान लेते हैं. और एक्चुअली आपने जो अभी बात कही ना कि कभी कभी होता है कि लास्ट मिनट पे चेक करें, जब कुछ ज़रूरत आन पड़ती है या कुछ रेड फ्लैग होता है तभी चेक कर रहे हैं, अदरवाइज लोग चेक ही नहीं कर रहे हैं अपना क्रेडिट स्कोर, यू नो. और ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ कि जब किसी ऐसे डेड एंड पे पहुँचते हैं तो एक रियलिस्टिकली स्पीकिंग कितना वक्त लगता है एक क्रेडिट स्कोर को बेटर करने में?
1: जी, ये बिल्कुल आपकी क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड होता है.
0: जी जी
1: क्रेडिट रिपोर्ट और मी टू माई क्रेडिट रिपोर्ट इज टोटली डिफरेंट, राइट? तो ये डेफिनेटली क्लाइंट की क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है. उसकी क्रेडिट रिपोर्ट कितनी अच्छी है, क्रेडिट जो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी पुरानी है, कितने क्रेडिट कार्ड है उनके पास, तो ये काफी चीजें हैं जो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है. अभी वो रिपोर्ट कितनी जल्दी साफ हो सकती है. पर अगर एक टाइम फ्रेम की बात लेके चले, इट विल बी अराउंड 45 to 60 days भी कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो उनका ये जो क्रेडिट स्कोर बूस्ट होना शुरू हो जाता है, क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन होनी शुरू हो जाती है.
0: एक्सलेंट एक्सलेंट इन्फॉर्मेशन देयर. जो भी जिनका भी क्रेडिट स्कोर खराब है इस वक्त, यू नो व्हाट टू डू, गेट इन टच विद ज़ीनो क्रेडिट रिपेयर. मैं यहाँ पे नंबर फिर से बताना चाहती हूँ, 800-400-ZENO, विच इज 800-400-9468. ज़रूर याद रखें, info@zenocreditrepair.com पे यू कैन राइट एंड गेट इन टच विथ मिस्टर दीप एंड हिज टीम. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इनसाइट दैट यू ऑलवेज शेयर विथ अस राइट हियर.
1: थैंक यू मीरू, थैंक यू टू द लिसनर्स.
0: एंड वंस अगेन द वेबसाइट टू गो इज zenocreditrepair.com. दिस इज गपशप गली विथ मी टू. फिल्म्स जो आज के दिन रिलीज हुई हैं जिसमें एक नाम आता है फोबिया, स्टारिंग राधिका आप्टे, इनक्रेडिबल एक्टिंग इन दिस थ्रिलर.

दिस साइकोलॉजिकल थ्रिलर दैट वॉज डायरेक्टेड बाय पवन कृपलानी, जिन्होंने रागिनी, MMS जैसी फिल्म्स भी बनाई हैं, अलॉन्ग विद फोबिया, जिसका आपने अभी अभी गाना सुना. एंड फोबिया विच स्टार्ड राधिका आप्टे, यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई ये फिल्म खतरनाक अच्छी होगी. उनकी एक्टिंग हमेशा इतनी तारीफ की जाती है. एंड शी हैड दिस मेंटल कंडीशन जिसे एगोराफोबिया कहा जाता है, जहाँ पे इंसान जो है ना ओपन स्पेसेस और स्ट्रेंजर्स से उन्हें डर लगता है. तो इट वॉज अबाउट दैट एंड द वे द कैमरा एंगल्स एंड एवरीथिंग वॉज डन. इट वॉज अ मास्टर पीस ऑफ अ मूवी, अ कल्ट क्लासिक फॉर अ श्योर, फॉर श्योर. दिस इज फोबिया, जो रिलीज हुई थी आज ही के दिन इन द ईयर 2015, जिस दिन एक और फिल्म रिलीज हुई थी. और इस फिल्म का नाम है वेटिंग, जिसका मुझे अभी अभी स्ट्राइक कर रहा है कि मैं तो गाना ही लाइन अप नहीं किया है, तो पहले तो गाना लाइन अप कर लेते हैं यार, बिकॉज फ्यू ब्यूटिफुल सॉन्ग्स इन दिस फिल्म दैट आई रिमेम्बर लिसनिंग टू. एंड देखिए ना, बात करते करते ये चीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. लेट्स गेट दिस नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन. फिल्म का नाम है वेटिंग, विच ऑल्सो स्टार्ट Kalki Kekla. और Kalki Kekla एंड यू कैन इमेजिन टू डिफरेंट काइंड डिफरेंट जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट हु केम टुगेदर फॉर दिस 2015 स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा. और दोनों की एक्टिंग बहुत कमाल की थी. द स्टोरी ब्रिंग्स टुगेदर टू एब्सोल्यूटली डाइवर्स, वेरी डिवर्स इंडिविजुअल्स हु अनएक्सपेक्टेडली मीट इन द वेटिंग रूम ऑफ ए हॉस्पिटल इन कोची. और यहाँ पे उनके अपने एक नसरुद्दीन शाह की वाइफ जो कि कोमा में है, और Kalki Kekla के हस्बैंड हु हैज़ मेट विद अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट एंड ही इज़ अनकॉन्शियस एज वेल, फाइटिंग फॉर लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट. उसमें इन दोनों की जो एक फ्रेंडशिप डेवलप होती है, नसरुद्दीन शाह और Kalki Kekla की, द स्टोरी इज इन दैट वेटिंग रूम. द नेम ऑफ द फिल्म इज वेटिंग. तो चलिए इस फिल्म का एक अच्छा सा गाना मैं आपके लिए लगाती हूँ. Mikey McLeary एट द हेल्म ऑफ दिस म्यूजिक एल्बम.

सिंगर्स का नाम मैं बता देती हूँ, इफ यू एंजॉय दिस गाना, इट इज कविता सेठ एंड विशाल दादलानी. माइकी मैक्लेरी का म्यूजिक था. फिल्म का नाम वेटिंग, जहाँ दो अनजान लोग मिलते हैं और एक बहुत खूबसूरत सी एक फ्रेंडशिप इनमें बनती है. ऐसी एक फिल्म थी जिसका नाम है कुछ लव जैसा, जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी 2011 में. एक बड़ी क्वर्की, एक मीठी सी कहानी, दैट्स व्हाट द क्रिटिक्स से, बिकॉज मैंने तो ये फिल्म देखी नहीं है, लेकिन देखने की बनती है. जस्ट फॉर द फैक्ट दैट इट स्टार्स शेफाली शाह एंड राहुल बोस, दो मजे हुए एक्टर्स वंस अगेन इन दिस स्टोरी. और ये कहानी एक डेडिकेटेड हाउसवाइफ की, जो कि शेफाली शाह यू नो पोर्ट्रे करती हैं, एंड उनकी फैमिली के लिए वो बिल्कुल इनविजिबल हैं और उनका बर्थडे इनकी फैमिली भूल जाती है. सो शी डिसाइड्स कि वो अपना बर्थडे अपने स्टाइल में पूरे दिन अपने साथ बिताएंगी. और ऐसे में उन्हें एक मिस्टीरियस हैंडसम मैन मिलता है, जिसका नाम जिन एक्टर का नाम है राहुल बोस एक्चुअली, और उनकी भी एक अच्छी सी एक फ्रेंडशिप बनती है इसमें. एंड द लीडिंग लेडी शी थिंक्स दैट कि ये एक शायर हैं, लेकिन ये एक शायर नहीं होते हैं. राहुल बोस इज ए क्रिमिनल इन दिस वन, भागे हुए क्रिमिनल हैं. और वो क्या बनता होगा कहानी, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन दैट्स द स्टोरी फॉर कुछ लव जैसा, जो रिलीज हुई थी आज ही के दिन. आपको गेस करना है इस गाने के सिंगर, बहुत बेहतरीन आवाज है यार. सो लिसन टू इट एंड लेट मी नो इफ यू कैन नेम द सिंगर, क्योंकि पंचतारा से आलू कुलचा या फिर छोले भटूरे बिल्कुल आपका होगा. इफ यू गिव मी इफ यू द फर्स्ट वन टू गिव मी द राइट आंसर.

0: हमें हमने सुन भी लिया और हमने जवाब भी दे दिया. पंचतारा गिव अवे वेंट टू हितेश साहब फॉर गिविंग मी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन दैट आई हैड फॉर यू. और सवाल था कि ये गाना किन्होंने गाया है और ये आवाज़ कौन मिस कर सकता है यार. मोहित चौहान की आवाज़ थी ये और फिल्म का नाम कुछ लव जैसा. और कुछ नहीं, बहुत सारा लव मिला इस अगली फिल्म को जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी और इसीलिए आप ये अगला गाना सुनने वाले हो. एंड इट इज़ आदित्य चोपड़ा फिल्म. आदित्य चोपड़ा जिन्होंने मतलब काफ़ी सारे उस दौरान ना 2002 में बहुत सारे उन्होंने बहुत सारे कहने का मतलब दो बड़े मुझसे दोस्ती करोगे और मेरे यार की शादी है, ये दो बिग बजट फिल्म्स और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट के बावजूद भी ये दो फिल्म्स उनकी फेलियर रही एट द बॉक्स ऑफिस. सो एज अ प्रोड्यूसर एंड राइटर ही अटेम्प्टेड टू मूव अवे फ्रॉम हिज सिग्नेचर ग्रैंड रोमांसेस बट द एक्सपेरिमेंट्स यू नो दैट ही वॉन्टेड टू डू लार्जली फेल्ड. और इसीलिए 2002 की ये जो फिल्म फ्लॉप हुई उसके बाद इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा शक होने लगा कि यार ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. एंड देन केम हम तुम इन 2004 जो इनके लिए टर्निंग पॉइंट था. लेकिन उस टर्निंग पॉइंट के बाद भी लोगों को था कि यार ये वन मूवी मैजिक वाली बात तो नहीं होगी. तो उसके बाद आई ये फिल्म जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी. आई एम गोइंग टू प्ले द टाइटल ट्रैक विच विल आंसर द क्वेश्चन एज टू विच फिल्म आई एम टॉकिंग अबाउट विच स्टार्ड बाय द वे रानी मुखर्जी एंड अभिषेक बच्चन.
1: टोनी साहब के लिए चिल भी है. चल चल चल चल चल चल झपटाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बटे. पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए

0: बंटी और बबली जो रिलीज हुई थी आज ही के दिन इन द ईयर 2005 के इस गाने के साथ 27th of March 2026 का ये प्रोग्राम आज के दिन का गपशप गली यहीं पे खत्म करना चाहती हूँ. होपफुली यू ऑल एंजॉयड ऑल द म्यूजिक दैट आई ब्रॉट फॉर यू, ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई शेयर्ड विद यू. तो कल के लिए तैयार रहें. I'll be back at 10 a.m. Up next is Simran for all of you. Enjoy her show as well. This is Me Too signing off.
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40. Frisco.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route. Rerouting.
3: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
4: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
3: क्यों?
4: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
3: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
5: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
6: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
7: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
8: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली.
9: हाँ बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
8: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
9: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
10: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
11: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
12: Excuse me. It's called being loyal.
11: It's called being predictable.
12: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
11: And what's so special at Neon Cactus?
12: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
11: Not bad.
12: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
11: Okay, this I didn't expect from you.
12: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
13: Is shehar ko hua kya? Kahin pe अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
14: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
15: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
11: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
16: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.

हाँ जी, छम छम छम, बिल्कुल ऐसे ही बारिश हो रही है बाहर और मुझे भी ऐसे ही नाचने का मन कर रहा है, एकदम छम छम छम। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय देसी पीपल, और आप सबको ईद मुबारक है, स्पेशली टू दोज हु आर सेलिब्रेटिंग इट। मैं हूँ आरजे सिमी और लेके आई हूँ एक बहुत अमेजिंग सा शो विच इज नोन एज आफ्टरनून अड्डा। आज का शो डेडिकेटेड है हम सब के मिड वीक मूड स्विंग्स के लिए, और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं, और जो टॉपिक है आज का बेसिकली वो है मिड वीक मूड मीटर। जी हाँ, अच्छा ये बताइए कि आपका आज का मूड क्या कह रहा है, मतलब आप खुश हैं, थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दिन प्रोडक्टिव जा रहा है, या फिर बस कुछ नहीं चल रहा है जी, जैसे चल रही है जिंदगी। अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं कहूंगी कि मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरे दिमाग में गाना चल रहा है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। आपके दिमाग में कौन सा गाना चल रहा है, आप मुझे कॉल करके बताइए कि अगर आज का मूड एक सॉन्ग होता तो वो कौन सा होता, आपको बताना है मुझे कॉल करके एट 972-235-5555 पे। मैं इंतजार कर रही हूँ और बने रहिए मेरे साथ एंड फन एशिया के साथ 104.9 FM।

हेलो हेलो, मूड चेक मूड चेक मूड चेक। जी हाँ, आज हम माइक चेक नहीं, मूड चेक कर रहे हैं। मिड वीक मैडनेस मूड मीटर सेलिब्रेट कर रहे हैं हम।

हेलो हेलो, मूड चेक मूड चेक मूड चेक। जी हाँ, आज हम माइक चेक नहीं, मूड चेक कर रहे हैं। मिड वीक मैडनेस मूड मीटर सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। और अभी अभी कॉल आया था स्वाति जी का, जिन्होंने बताया कि मूड जो है ना, बारिश को देख के काफ़ी रोमांटिक सा हो रहा है। अरिजीत सिंह के गाने याद आ रहे हैं और एक बहुत ही एप्ट सा गाना बताया उन्होंने, कभी जो बादल बरसे, जो अभी अभी प्ले किया हमने आपके लिए। वैसे मूड जो है ना, काफ़ी प्रकार के होते हैं। मतलब कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं कि फुल्ली चार्ज मूड है, ये वो लोग हैं जो काफी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं क्योंकि जैसा जैसा इन्होंने प्लान किया था सब एग्जीक्यूट हो गया। फिर आते हैं बैटरी लो वाले मूड, जिन पे कॉफी का भी कोई असर नहीं हो रहा है। थर्ड कैटेगरी है ओवरथिंकिंग वाले लोग, जो काम कम और सिनेरियो बिल्डअप ज्यादा कर रहे हैं। वैसे आप कौन सी कैटेगरी से हैं और आपको कौन से सॉन्ग की याद आ रही है जो आपका मूड डिफाइन कर सकता है, बताइए हमें कॉल करके 972-235-5555 पे।

ये रिक्वेस्ट आई थी खान साहब जी से. आई मीन वो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी बेगम और अपने किड्स के साथ, और उनका मूड जो है ना काफी, मतलब बारिश को देख के काफी ज्यादा ही खुश है. और उन्होंने ये नेहा कक्कड़ का सॉन्ग रिक्वेस्ट किया था, तो दिस वन वॉज फॉर यू. और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम बात कर रहे हैं मिड वीक मूड मीटर के बारे में. हमने डिस्कस किया हैप्पी मूड, सैड मूड, टायर्ड मूड, वेल्लापन मूड, और जो मेरी फेवरेट कैटेगरी है ना वो है ओवर थिंकिंग मूड. ये वो लोग हैं जो बॉस के कैन वी टॉक मैसेज पे फायरिंग इमेजिन कर लेते हैं, वाइफ या गर्लफ्रेंड के कैन वी टॉक मैसेज पे डिवोर्स या ब्रेकअप इमेजिन कर लेते हैं, और अगर उनके दोस्त या किसी कलीग ने कैन वी टॉक मैसेज लिख दिया, मतलब तो फिर वो स्ट्रेस में ही आ जाते हैं भाई कि ये पक्का बंदा कुछ कंड करके आया है और अब इसको मेरी हेल्प लगेगी. अगर आज का मूड अगर आपका थोड़ा ऑफ भी है तो कोई बात नहीं, अभी तो वीक खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारी एनर्जी बाकी है, बहुत सारा टाइम बाकी है. खुद को थोड़ा रीसेट कर लो, एंजॉय करो अच्छा अच्छा म्यूजिक और प्लान करो, सब हो जाएगा.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
6: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
7: Documents या parcel भेजनी है?
8: हाँ।
7: घर relocate करनी है?
8: हाँ।
7: गाड़ी भी transport करना है?
8: हाँ भाई हाँ।
7: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर।
9: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide. Our move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: आर यू अ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है, प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी। हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
13: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
14: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
15: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st,
8: 3 PM to 9 PM. Join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes, and touch the truck from 4 to 5 PM. Plus, a Pan India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi, and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana, supported by major Indian non-profit organization, NDAW.
15: For booth and sponsorship contact, admin at ambuj.us.

काफी बरस रहे हैं मेघा। जी हाँ, आप सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिम्मी, एके आरजे देसी गर्ल। और स्टूडियो में अभी वक्त हो गया है 1:10 और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक अमेजिंग सा गिव अवे। तो तैयार हो जाइए, गिव अवे है फ्रॉम सैल्स नैशविल हॉट चिकन एंड ये सिर्फ रिचर्डसन लोकेशन के लिए है मैं बता दूं। और कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं कि आपको ये गिव अवे जो है दूसरे फनेशिया के किसी भी शो पे लास्ट 1 मंथ में अगर आपने नहीं जीता है तो ही पार्टिसिपेट करें प्लीज़, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर किसी को मौका मिले यहाँ का अमेजिंग फ्री 3 जंबो टेंडर्स खाने का। तो तैयार है, पूछूं मैं सवाल? वैसे अगर आप मेरा शो काफी ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही इजी होने वाला है। मौसम चल रहा है बारिशों का और हमने जो गिव अवे का क्वेश्चन रखा है वो भी बारिश के अराउंड ही रखा है। जी हाँ, आपको बताना है 5 ऐसे सॉन्ग्स जिनमें बारिशों का मेंशन हो, जो बारिश के थीम पे बेस्ड हो। और अगर आपको जवाब पता है तो कॉल कीजिए 972-235-5555 पे और बताइए कि कौन से है वो 5 सॉन्ग।

थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग. काफी कॉल्स आए मुझे और काफी लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया. हमने आपसे गिव अवे राउंड चल रहा था और हमने आपसे पूछा था कि you know, आपको 5 ऐसे सॉन्ग्स बताने हैं जो कि बारिश के थीम पे हो, और काफी लोगों ने सही बताए. और जो सबसे पहले जिनका सही जवाब आया है एकदम खटाखट, एकदम 5 सॉन्ग्स, वो है सबा जी. कॉन्ग्रेचुलेशन सबा जी, आपको मिलता है साल्स नैशविल की तरफ से फ्री 3 जंबो टेंडर्स. तो सभा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 5 जून तक जाके फटाफट इसको रिडीम कर लीजिए, और जो बाकी के हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं ना वो भी दुखी ना हो, क्योंकि चैलेंजेस का दौर चलता रहेगा. क्योंकि यही जो है सेल्स नैशविल रिचर्डसन लोकेशन जो है, उन्होंने एक अमेजिंग सा इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज रखा है. और डील ये है कि आपको 10 मिनट मिलेंगे, आपको 3 जम्बो जो है एक्स्ट्रा हॉट टेंडर्स, ये 1 कप मिल्क के साथ फटाफट कंप्लीट करना है, फटाफट खाना है, और कोई डिपिंग नहीं कर सकते. हाँ, आप कोई चीटिंग भी नहीं कर सकते. प्राइजेस जो है वो टोटली वर्थ द पेन एंड दी स्पाइसेस, इट्स टोटली वर्थ इट. अगर आप 1 जंबो टेंडर खत्म करते हैं तो आपको मिलता है फ्री सैंडविच फॉर 7 straight 7 days गाइज. और अगर आपने 2 जंबो टेंडर्स खा लिए तो आपको मिलते हैं 15 दिन के लिए फ्री सैंडविचेस. और अगर आपने ये कॉन्कर कर लिया ये चैलेंज कि 3 इन्फर्नो जंबो टेंडर्स अगर आपने खा लिए, तो आपको मिलेगा ग्रैंड प्राइज फ्री सैंडविच एवरी डे फॉर 30 days, लाइक फॉर अ मंथ. ओ माई गॉड, ये हो रहा है सेल्स नैशविल हॉट चिकन. और डेट है सैटरडे June 6th at 4 PM. तो बिल्कुल वहां जाए और देखते हैं किसमें कितना है दम.

आ गई आप लोग कब से मुझे बुला रहे थे, तो मुझे तो आना ही था। और आने के साथ मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक एक्साइटिंग न्यूज। यूजुअली ग्रोसरी शॉपिंग काफी बोरिंग होती है ना, और हमें कितने सारे ग्रोसरी स्टोर्स जाने पड़ते हैं, एक सामान के लिए यहाँ, दूसरे सामान के लिए वहाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देसी मंडी लेके आए हैं एवरीथिंग अंडर वन रूफ। जी हाँ, फ्रॉम फ्रेश वेजिटेबल्स से लेके ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज टू हलाल मीट, स्पाइसेस, स्वीट्स, स्नैक्स और डिलीशियस हॉट फूड। मतलब अगर आप शॉपिंग करके थक जाओ ना, तो वहाँ पे जाके खा लो, मस्त बढ़िया शॉपिंग भी एक्सपीरियंस भी हो गया और खाने का भी हो गया। आपको घर जाके खाना बनाने की भी जरूरत भी नहीं है भाई साहब। तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप? जाइए, अपनी शॉपिंग लिस्ट उठाइए और देसी मंडी जाइए, खाना खाइए, शॉपिंग कीजिए। ये लुइसविल में लोकेटेड है बाय द वे।

0: Hello, accident claim. Okay, name of the lawyer.
1: उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
3: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
4: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
3: कैसे?
4: पेज 3 ईटरी?
3: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
4: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
3: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
5: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट।
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
0: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
0: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
9: ये क्या होता?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
0: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस। रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
8: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
0: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
8: वेट, व्हाट?
2: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
2: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
11: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
11: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
12: बॉलीवुड का अल्टीमेट हार्ट थ्रॉब अर्जुन रामपाल इज कमिंग टू डैलस विद अ स्पेशल डीजे परफॉर्मेंस। गेट रेडी फॉर द रैम्पेज टूर ऑन मे 31st एट क्लब वीवो डैलस। डोर्स ओपन एट 9 PM, स्ट्रिक्टली फॉर 21+। फॉर टिकट्स एंड टेबल रिजर्वेशंस कांटेक्ट ईशा एट 4695605560।

हाय, मुझे नहीं आता यार, क्या मस्त सीटी मारी गई है इस सॉन्ग में। काश मैं भी जल्दी से सीख लूँ और ऐसा स्वैग में गाते फिरते करूँ। इतना प्यारा सा सॉन्ग है ये। आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 FM, आफ्टरनून अड्डा विद मी यानी कि आरजे सिमी। और मैं अब इस सेगमेंट में आपके लिए ले आई हूँ एक नया गिव अवे। जी हाँ, ये गिव अवे है नियॉन कैक्टस की तरफ से। अगर आप इस गिव अवे को जीतते हैं तो आपको मिलता है $20 का डिस्काउंट ऑन डाइन इन। और नियॉन कैक्टस जो है काफी फेमस है अपने मेक्सिकन फूड रेसिपीज के लिए। तो किस बात की देर है, तैयार हो जाइए। मैंने बस यूं क्वेश्चन पूछा और मुझे यूं जवाब चाहिए क्योंकि बहुत इजी होने वाला है। सवाल है कि आपको दो बॉलीवुड मूवीज के बारे में बताना है जो कि एलियंस पे बेस्ड है, या फिर आप किसी भी मूवी के बारे में बता सकते हैं। चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देती हूँ। कोई ऐसी दो मूवीज के बारे में बताना है जो कि एलियंस पे बेस्ड है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कॉल कीजिए @972-235-5555 पे।

आप सभी को भी ईद मुबारक है फनेशिया टीम की तरफ से और मेरी तरफ से भी, यानी कि आरजे सिमी की तरफ से। आई होप आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो और मौसम काफ़ी अच्छा है। और इस सॉन्ग के पहले हमने अपना गिव अवे राउंड का क्वेश्चन पूछा था कि आपको दो मूवीज़ के बारे में बताना है, उनका नाम बताना है बेसिकली, जो कि एलियंस पे बेस्ड है। और बहुत सारे लोगों ने दो से ज़्यादा नाम बताए और आज के जो विनर हैं वो हैं रजत जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस रजत जी, आपको मिलता है नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का डिस्काउंट ऑन डाइन इन। मैं नियॉन कैक्टस के बारे में बता दूं जिनकी तरफ से ये गिव अवे राउंड था, कि नियॉन कैक्टस जो है ना मैक्सिकन फूड के लिए फेमस है, उनके ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए फेमस है। वो यूज़ करते हैं काफ़ी फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, जबीहा हलाल ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, और बहुत सारे वेजिटेरियन चॉइसेस हैं, ऑल पैक्ड विद बोल्ड फ्लेवर। और वाइब की तो मतलब पूछे मत, वाइब जो है काफ़ी यंग है, कलरफुल है, मॉडर्न है और मेरे जैसे एनर्जेटिक है और परफेक्ट है हैंगआउट्स के लिए, डेट नाइट्स के लिए। और अगर आपको यूं ही अपने दोस्तों के साथ चिल करना है, मजे करना है, तो भी आप यहां जा सकते हैं और क्यूरेटेड कॉकटेल्स, मॉकटेल्स एंजॉय कर सकते हैं। इनका हैप्पी आवर्स भी होता है मंडे टू फ्राइडे, और हर दिन ये कोई ना कोई स्पेशल डील तो जरूर रखते हैं अपने यहां। तो फिर जाइए नियॉन कैक्टस और एंजॉय कीजिए एंड कीप लिसनिंग टू फनिशर रेडियो। वी आर गोइंग टू प्ले बैक टू बैक गुड सॉन्ग्स फॉर यू।

आज ईद का त्योहार है और अगर आप भी चांद जैसे चमकना चाहते हैं तो जाइए मलबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स, क्योंकि ये लेके आए हैं आपके लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी जो कि एलिगेंट है, टाइमलेस है और इनके डिजाइन जो है ना काफी ऐसा लगता है कि किसी ने पर्सनली ऐसा क्राफ्ट किया है चमकने के लिए, शाइन करने के लिए. फ्रॉम ब्यूटिफुल रिंग्स एंड इयररिंग्स टू डैजलिंग नेकलेसेस एंड कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल, आपको यहाँ पे मिल सकता है अपना परफेक्ट पीस फॉर एंगेजमेंट्स, एनिवर्सरी, सेलिब्रेशंस. और अगर आपको खुद को ट्रीट करना है तो भी जा सकता है यार, अपने लिए कुछ खरीद लीजिए, क्योंकि अपने लिए कुछ भी करने पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, खुद को सुकून सा मिलता है. और मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स लोकेटेड हैं फ्रिस्को में एट प्रेस्टन रोड. और अगर आपको एक्सप्लोर करना है उनका लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरीज तो आप उनका मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और चेकआउट कीजिए, आपको क्या चाहिए उसमें से.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
9: Are sun, ye astrologer बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
13: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
12: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
13: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
14: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
15: Goodness is a beautiful thing. And good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

0: just wanted to tell you, since the very first day I saw you, I love you.
1: ये तो मैं अपने लिसनर से भी बोलना चाहती हूँ गाइस, आई लव यू। मुझे बड़ा मजा आता है आपसे बातें करने में। आप सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आपकी आरजे सिम्मी। और अभी इस शो के सेगमेंट में मैं लेके आई हूँ एक और गिव अवे। जी हाँ, फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। तो तैयार हो जाइए और ध्यान से सुनिएगा मेरे क्वेश्चन को। ये एक रिडल है, आपको इस रिडल का बताना है कि क्या मतलब है, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। और रिडल ऐसा है कि मैं हर रोज़ बढ़ता हूँ यानी कि इंक्रीज़ होता हूँ, पर कभी भी वापस छोटा नहीं होता। मतलब मैं सिर्फ इंक्रीज़ होता हूँ, डिक्रीज़ नहीं होता। आई थिंक कि क्वेश्चन थोड़ा ईजी है और मुझे बहुत सारे कॉल्स आने वाले हैं। अगर आप भी मुझे कॉल करके ये गिव अवे जीतना चाहते हैं तो आप डायल कीजिए 972-235-5555।

प्यार के नशे के बारे में पता नहीं, बट गिव अवे का नशा तो मुझे चढ़ गया है भाई साहब। और बहुत सारे लोगों ने जो है सही जवाब दिया है। हमने आपसे पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ बढ़ती ही रहती है और मतलब रुकती नहीं और कम नहीं होती, और इसका सही जवाब था एज, यानी कि उम्र। और जो इसका सबसे पहले सही जवाब दिया है वो है वानी जी। वानी जी, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। मैं बाकी लिसनर्स को फन पिज्जा किचन के बारे में बता दूं कि यहाँ पे ना आपके लिए वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सारी ही चॉइसेस अवेलेबल हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं अचारी पनीर पिज्ज़ा, जो कि टैंगी अचार पंच से मिलके बना है, और इसके जो पनीर मेल्ट होते हैं ना एकदम स्पाइसी मैजिक में, ओए होए होए होए। और जो मीट लवर्स है उनके लिए है खास तंदूरी चिकन पिज्ज़ा, विच इज़ अ प्योर स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बर्ड्स। जी हाँ, वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस, फन पिज्जा किचन में आपके लिए एक स्लाइस तो इंतजार कर ही रहेगी। आ लो और खा लो मुझे तो इंतजार किस बात का है, जाइए फन पिज्जा किचन विच इज लोकेटेड इन फ्रिस्को। और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए इनके मेन्यू वगैरह के बारे में तो आप विजिट भी कर सकते हैं इनका वेबसाइट, जो कि है funpizzakitchen.com।

अब ऐश्वर्या राय जी की आंखें ही इतनी माशाल्लाह इतनी सुंदर हैं कि किसी का भी दिल डूब जाए। और आप सुन रहे हैं फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम विद मी यानी कि आरजे सिमी। और मेरे जाने का वक्त थोड़ा करीब आ रहा है, लेकिन अभी 10 मिनट हैं भाई साहब, और अभी तो बहुत सारी बातें करनी है। मैं आपको लिए अच्छा अच्छा गाना बजाते रहूंगी फॉर अनदर 10 मिनट्स एंड फाइनेंशियल विल कीप प्लेइंग गुड सॉन्ग्स फॉर यू फॉर द होल डे। और एक और बात मैं आपको माई टाइम इक्विटी के बारे में बताना चाहती हूँ, विच इज़ लेड बाई CPA सुधीर पाई, जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को और फैमिलीज को एक स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाने में। उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिखाते हैं वो अच्छे से कैसे करते हैं, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर कराते हैं और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स प्लान भी सजेस्ट करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए प्लान कर रहे हो, रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो, या फिर अपना इन्वेस्टमेंट्स जो है बेटर मॉडिफाई करना चाहते हो, कुछ नए एडिशंस और अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ रहे हैं, तो आई थिंक माई टाइम इक्विटी इज डेफिनेटली अ गुड स्पॉट फॉर यू। और ये ऑफर करते हैं पर्सनलाइज सॉल्यूशंस विच इज डिजाइंड अराउंड योर गोल्स। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गो टू mytimeequity.com या फिर कॉल कीजिए 4697021272 पे।

0: थैंक यू किसके लिए? आई होप यू नॉट स्लीपी।
1: मुझे रात को नींद नहीं आती। याद नहीं कि

ऑल राइट, डालस और स्टोर ओनर्स, आपके लिए खास इन्फॉर्मेशन है, न्यूज है कि रवि का समर किक ऑफ जो है ना वापस आ गया है। जी हाँ, आप अपने कैलेंडर पे डेट्स और रिमाइंडर्स सेट कर लीजिए ऑन June 3rd and 4th फ्रॉम 9 AM to 5 PM। और इस साल ये बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि इनका पूरा का पूरा वेयर हाउस एक ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस में बदलने वाला है। आपको बहुत सारे क्रेजी डील्स देखने को मिलेंगे, नए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस देखने को मिलेंगे और आपके लिए बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं। आपको नए वेंडर्स मिल सकते हैं, आपको वहाँ का बेस्ट सेलर भी पता चलेगा कि क्या क्या आजकल मार्केट में रन हो रहा है, और आपको मौका मिलेगा कि आप जो है ना पूरे साल के लिए स्टॉक कर लीजिए और बेचते रहिए फिर। और आप जा सकते हैं रवीज इम्पोर्ट वेयर हाउस में, जो कि लोकेटेड है एट 11029 हैरी हाइंस बुलेवर्ड, बिल्डिंग ए, डैलस। आई होप दैट इज यूजफुल फॉर यू।

नखरे जो है ना सिर्फ सोनी दे ही सोने लगते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के नखरे बिल्कुल नहीं पसंद किसी को, लेकिन अगर आपको खुदा ना खास्ता ऐसा मौका आ ही गया है कि अगर आप किसी ट्रक या कार एक्सीडेंट में फंस चुके हो, किसी स्लिप और फॉल इंसिडेंट में फंस चुके हो, तो अटर्नी उमर ख्वाजा जी को याद करो, उन्हें कॉल करो, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको उनका जो पूरा प्रोसेस है उसका लेस स्ट्रेसफुल बना सकते हैं। आई मीन ही विल मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पनसेटेड वेल, और आपको तब तक पे करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप जीत नहीं जाते। तो फिर आपको किस बात का इंतजार है? अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई अटर्नी जो आपको हेल्प कर सके विद सच केसेस, तो आप फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं बाय कॉलिंग देम एट 4693005046 4693005046, या फिर आप विजिट कर सकते हैं attorneyoma.com पे। और ये जो सेगमेंट था ना आफ्टरनून अड्डा का, दिस वॉज ब्रॉट टू यू बाय ओमर ख्वाजा विथ हिज ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड DFW एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट्स। और मैं हूँ आरजे सिमी, आज के लिए विदा लेती हूँ। आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक, और मैं कल फिर आऊंगी बहुत सारे मौज मस्ती और ड्रामे के साथ। आप मुझे सुनते रहिए, सुन सकते हैं 12:30 to 2:30 PM मंडे टू थर्सडे। और अच्छे अच्छे गाने के लिए तो आपको पता ही है क्या करना है, फनी शो सुनते रहना है दोस्तों।

0: जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: क्रेविंग डिलीशियस इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन फूड? रेड हॉट चिली पेपर इज द प्लेस टू गो, विद लोकेशंस इन फ्रिस्को, मकीनी, रिचर्डसन एंड नाउ आवर न्यूएस्ट लोकेशन इन एलन एट वाटर्स एंड 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
1: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession. Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
4: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

ड्रीम होम मॉर्गेज, एक ऐसी जगह जहां आप बनाते हैं अपने ख्वाबों का कि घर का जो सपना है आपका उसे आप पूरा करते हैं. चाहे आप नया घर खरीदना चाहते हो या आप अपग्रेड करना चाहते हो फ्रॉम एन ओल्डर हाउस टू अ न्यू हाउस, या फिर आप यू नो रीफाइनेंस करना चाहते हो या फिर कंसोलिडेट करना चाहते हो अपनी डेट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू मॉर्गेज इज वेयर ड्रीम होम मॉर्गेज कम्स इन एक्शन. 1998 से बिजनेस में है जी. दे नो एग्जैक्टली हाउ टू यू नो टेलर मेड मॉर्गेज सॉल्यूशंस फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. स्मूथ और स्ट्रेस फ्री प्रोसेस के लिए ड्रीम होम मॉर्गेज को कॉल कीजिए. 50 स्टेट्स में लाइसेंस्ड हैं. देयर टीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. गिव देम अ कॉल 972-245-5626 972-245-5626. ड्रीम होम मॉर्गेज का नंबर dreamhomemortgage.com उनकी वेबसाइट, वेरी इजी एड्रेस टू रिमेंबर. चेकआउट कीजिए, लॉग इन कीजिए, देखिए क्या ऑफर कर रहे हैं आपको. और द बेस्ट वे, जैसे कि हुसैन पंचवानी जी ऑफ ड्रीम होम मॉर्गेज, जिन्हें मैं हर वेंसडे को लेती हूँ ऑन एयर एट 4:30 PM, हमें हमेशा कहते हैं ईमेल इज द बेस्ट वे टू गेट इन टच विद देम, info@dreamhomemortgage.com. Once again, that email ID is info@dreamhomemortgage.com.

आज है जी वेंसडे, और वेंसडे को आप जानते हैं 3 बजे से, और एक्चुअली हाँ जी 3 बजे से 4 बजे तक मैं आपके लिए लेकर आऊंगी पॉप फ्रीक्वेंसी. 3 से 3:30 तक वी विल प्ले सम अमेजिंग पॉप म्यूजिक फॉर यू, पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक. और 3:30 से 4 बजे तक आपका फेवरेट सेगमेंट, जिसमें मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं और आप बहुत यू नो ड्रामाज आर सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हम सारे देखते हैं द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज ऑफ पाकिस्तान, आपके लिए बात की जाएगी. और उसके बाद 4 से 5 बजे तक लेके आऊंगी आपके लिए ट्रॉफी ट्रैक्स, सम अवार्ड विनिंग फिल्म्स एंड अवार्ड विनिंग सॉन्ग्स एंड म्यूजिक ऑफ दोज फिल्म्स. बहुत कुछ आपके लिए आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण पर लेकर आती हूँ एवरी डे आपके लिए. चीजें फ्लेवर्स चेंज होते रहती हैं, दैट इज हाउ वी कीप गोइंग. यू आर ट्यून्ड इन. अगले 11 मिनट में आपके साथ कुछ और ब्लॉकबस्टर बीट्स लेके आऊंगी, एंड देन फ्रॉम 3 PM टिल 4 PM इट विल बी पॉप फ्रीक्वेंसी.

करना चाह रही हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ या फिर रिटायरमेंट, या फिर यू वांट टू ग्रो योर इन्वेस्टमेंट. माय टाइम इक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस डिजाइंड अराउंड योर गोल्स. तो पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस अगर आप बनाना चाहते हैं, कोई जहन में सवाल आ गया है आपके, तो आप माय टाइम इक्विटी को कॉल कीजिए 469-702-1272 is their number. Ya phir aap unki website visit kijiye, which is mytimeequity.com. And this next number is going out for Safi. Safi, wishing you a very happy Eid. Enjoy this one.

माई टाइम इक्विटी लेड बाय सीपीए सुधीर पाए. जी हाँ, वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स एज वेल एज फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, जिस तरह की भी आप प्लान

0: And if you're looking to buy some jewelry, then Shri Krishna Jewelers is where you need to go. ये वो जगह है जहाँ jewelry सिर्फ एक piece नहीं है. This is more than an accessory. It is a reflection of tradition, elegance, and timeless beauty. Classic gold designs आपको चाहिए. डायमंड के स्पार्कलिंग डायमंड्स आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, चाहे आप इंट्रिकेट कुंदन का काम खरीदना चाहते हैं या फिर पोल की सेट्स खरीदना चाहते हैं, हर तरह की कलेक्शन मौजूद है श्री कृष्णा के पास. 1967 से आपके लिए ज्वेलरी क्राफ्ट कर रहे हैं एंड दे आर नॉट ओनली क्राफ्टिंग ज्वेलरीज, दे आर चेरिशिंग योर ब्यूटिफुल मोमेंट्स एंड गिविंग यू प्लेजर इन दोज मोमेंट्स. आप जरूर उनकी नई लोकेशन विजिट कीजिए. दे आर लोकेटेड एट 13145 स्वीट 220 Main Street, Frisco, 75035. So Frisco mein located hain ji. Check out their new location and do your next jewelry shopping from Shri Krishna Jewelers. I will see you after the break.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
2: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
3: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी। सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
4: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
3: K2 ड्राइव मतलब?
4: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
3: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
4: 100%
0: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0400 02 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
5: Chicken banana. Chicken banana?
6: Bro, banana नहीं, banana. मतलब make the chicken right.
7: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
8: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, काली पुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए काली पुत्र मास्टर जोशी जी से 8 6 8 2 3 4 6 4 6 1 1 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस
9: लाए।
10: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
11: हाय, दिस इज सैफ अली खान, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

Thank you for tuning in to 104.9 FM Fun Asia Radio. सुन रहे हैं आप योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और जी मैं हूँ किरण आपके साथ 2:30 PM till 5 PM आई एम हियर. तीन बज चुके हैं, 3 बजे से 4 बजे तक आपके लिए लेके आऊंगी पॉप फ्रीक्वेंसी एज वेल एज द टॉप 10. एक्चुअली आज इस बार मुझे लिस्ट 6 ड्रामास की मिली है, टॉप 10 फिर भी हम कहते हैं उसे, टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास ऑफ लास्ट वीक जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. और इसी के साथ कुछ ऐसे ड्रामों के बारे में भी तस्करा करेंगे आज जो कि आने वाले दिनों में आपको यू नो ऑन एयर मिलने वाले हैं. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप अराउंड दोज ड्रामास. लेट्स टॉक अबाउट दैट एंड मोर. दिस इज पॉप फ्रीक्वेंसी राइट हियर ऑन आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.

If you haven't tried Page 3 Eatery, then you must visit them. They are located in McKinney, Hub 121 Pace. Sizzling kebabs, flavorful chaats or fusion bites, refreshing mocktails. Matlab, ye wo jagah hai jahan aapko Indian bold street food milega with a modern flair. Brunch, lunch, dinner, sab ke liye open. You want to have some quality time with your loved ones. This is the place for you to go. Friends ke saath party shati, this is the place for you to go. And you just want to have some quiet time. This is the place for you to go. Agar aap foodie hain, तो यहाँ का खाना बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. अगर आप खूबसूरतली डेकोरेटेड प्लेट से प्यार करते हैं कि यू नो यू वांट योर फूड टू लुक ब्यूटीफुल बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग इट, देन पेज 3 ईटरी इज द प्लेस फॉर यू टू गो. डू विजिट देम. देयर वेबसाइट इज फॉर अवेलेबल फॉर यू. चेक आउट देयर मेन्यू, व्हाट दे आर ऑफरिंग, दैट इज page3eatery.com. 3 एज इन नंबर 3, page3eatery.com. एंड दिस इज पॉप फ्रीक्वेंसी. आई हैव सम ब्यूटीफुल पॉप म्यूजिक लाइंड अप फॉर यू. नेक्स्ट वन इज सज्जाद Ali's beautiful Cinderella.

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।
1: और अब आपके साथ एक नया गाना शेयर करने वाली हूँ जी। गाना कौन सा है ये भी आपको बताती चलूँ, अली हैदर ने किया है अपना नया एल्बम रिलीज। अगर आप स्पॉटिफाई के मेंबर हैं तो आपको नया एल्बम वहाँ पे मिल जाएगा जी। दिले रंगीन एल्बम का नाम है, वंस अगेन आई रिपीट, दिले रंगीन, DILE लाइक एल स्पेस ई स्पेस RANGEE। सो दिले रंगीन एल्बम के बड़े मज़े के गाने हैं। एक ये जो गाना है जो मुझे खास तौर पे जिसने मेरी अटेंशन को ग्रैब किया, दैट इज टाइटल्ड दिले रंगीन ओनली, यही टाइटल ट्रैक है उस एल्बम का। और इसमें इन्होंने, आपको याद है उनका पुरानी जीन्स, ऑफकोर्स कौन भूल सकता है अली हैदर का पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, तो उसी को थोड़ा सा इन्होंने मॉडर्न ट्विस्ट देके एक बार फिर एक दिले रंगीन गाना इशू किया है, वही आपके लिए प्ले कर रही हूँ। दिस इज अली हैदर्स न्यू सॉन्ग ऑन अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर यू, दिस इज दिले रंगीन।

वेल दैट वाज दिले रंगीन फॉर यू. कुछ पुरानी यादें और कुछ नॉस्टैल्जिया सा हो गया इस गाने को सुन के. ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब, अगर आपने अब तक नहीं सुना, दोबारा सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपके लिस्निंग प्लेजर के लिए है अवेलेबल. अच्छा जी, जल्दी से आपको क्विकली बताऊं कि कुछ ऐसे ड्रामास जो कि लाइंड अप हैं, यू नो, अपकमिंग 6 ड्रामास ऑफ हम टीवी जो कि बज क्रिएट कर रहे हैं आजकल, लाइंड अप हैं रिलीज होने के लिए, जिनमें सबसे पहला जो ड्रामा है वो है जी सुनो चंदा. सुनो चंदा 3, सुनो चंदा 1 और 2 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए. ये यूजुअली ईद सीरीज हुआ करती थी, अभी भी शायद ईद सीरीज ही होगी अगले रमज़ान की जो सीरीज आएगी उसमें. और सुनो चंदा जो है वो इट इज़ हैपनिंग टू बी इन फेब्रुअरी ऑफ 2027 ऑफ कोर्स, जब रमज़ान होगा, क्योंकि ये इट हैज़ ऑलवेज बिन रमज़ान सीरीज. तो बैक टू बैक आपको 30 एपिसोड्स मिलती हैं एक ही महीने के अंदर. उसके बाद अगला ड्रामा जो कि काफी बज क्रिएट कर रहा है, जो कि रिलीज होने वाला है सीजन 2 जिस ड्रामे का, दैट इज परीजाद. पाइपलाइन में है, प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कब रिलीज होगा ये अब तक कंफर्मेशन नहीं आई. एक और ड्रामा जो कि रिलीज होने के लिए तैयार है वो है जी आपकी आपकी अलीजे, एक्चुअली आपकी इज्जत. ओ आपकी इज्जत नाम है इस ड्रामे का, जो कि रिलीज होने के लिए रेडी है, क्या डेट है ये अभी पता नहीं. एक और ड्रामा जो हम टीवी पे आ रहा है उसका नाम है हम, और इसमें सनम सईद हमें नजर आएंगी, और इनके साथ जो है वो देखिए क्या मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ये जो अभी सनम सईद के साथ पामाल नहीं, अभी जो ड्रामा इनका आया था, तो सही टाइम पे ना इंसान को नाम भूल जाते हैं, खैर जब याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी. और उसके साथ जो है एक और ड्रामा मोहब्बत मुख्तसर रिलीज होने वाला है, और वो है जी उसामा खान और मदीहा इमाम उसमें नजर आएंगे. अच्छा मुझे याद आ गया, सनम सईद के साथ अभी इमाद इरफानी आपको एक ड्रामे में नजर आए थे, वही कास्टिंग दोबारा हो रही है इस ड्रामा हम के लिए. और एक और ड्रामा जो कि लाइंड अप है वो है हुरमत, और हुरमत में आपको नजर आएंगी दाना नीर और साथ ही शाहवीर जाफरी. ये 6 ड्रामे हैं जो काफी एंटिसिपेटेड हैं, एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज ड्रामास. लेकिन फिलहाल जो ड्रामे चल रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी इस ब्रेक के उस पार. टॉप 6 ट्रेंडिंग ड्रामास ऑफ पाकिस्तान लास्ट वीक.

0: is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: सफर खूब सूरत है मंजिल से भी।
2: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
3: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर। लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
4: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
5: Calculating route. Rerouting.
4: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
5: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
4: क्यों?
5: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
4: अच्छा तो सीधा वही ले चलो।
6: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट।
5: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
7: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
9: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
10: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
11: हाँ।
10: घर रिलोकेट करनी है?
11: हाँ।
10: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
11: हाँ भाई हाँ।
10: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
0: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
6: One mistake doesn't have to define your future. DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
12: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
13: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
14: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
15: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
16: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
15: Wait, itna sab aur price?
16: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
17: Main hi do.
6: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
18: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
6: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
18: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
19: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
20: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st,
11: 3 p.m. to 9 p.m. Join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DFW.
17: For booth and sponsorship contact admin at ambuj.us.

एंड विद दैट इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द टॉप 10. वैसे तो होते हैं लेकिन इस हफ्ते टॉप 6 ट्रेंडिंग ड्रामास रिलीज हुए हैं और वही आपको बताऊंगी जी कौन कौन से ड्रामास वीक 21 की आपको अपडेट दे रही हूँ. वीक 21 इज मे 18th टिल मे 24th. और लास्ट वीक जो है जो ड्रामा नंबर 6 पे रहा दैट इज मिर्जा की हीर, जो कि ARY डिजिटल पे आता है शाम 8 बजे वेंसडे एंड थर्सडे. अली रजा जिन्होंने तैमूर मिर्जा का इसमें किरदार अदा किया है, हिना अफरीदी जो कि हीर बनी है और जाहिद अहमद जो दिल नवाज बने हैं, मतलब बहुत ही खतरनाक किस्म के विलन बने हैं और आपके लिए ये एयर हो रहा है. पीपल आर रियली लविंग दिस ड्रामा. अली रजा इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एडिशंस ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री. और आई जी पांचवें नंबर पे जो ड्रामा ट्रेंड कर रहा है विद 7.5 TRPs दैट इज एयरिंग ऑन ARY डिजिटल. दिस इज अ डेली सोप काइंड ऑफ थिंगी. नाम है इसका महनूर. मंडे थ्रू फ्राइडे ये ड्रामा आता है शाम या रात 9 बजे ARY डिजिटल पे. हुमायूं अशरफ, जोया नासिर, खदीजा सलीम, अली खान, रुबीना और साथ ही साथ इसमें हमें नजर आए हैं जुनैद. बहुत ही जबरदस्त कास्ट और बहुत पसंद किया जा रहा है इसे. इसी के साथ आज चौथे नंबर पे जो ड्रामा ट्रेंड किया इस हफ्ते दैट इज हमराही. हमराही जो कि जियो एंटरटेनमेंट पे आ रहा है एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे 8 PM और इसमें ऑफकोर्स फैन फेवरेट दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं. इंटेंस रोमांस है जो कि यू नो जिसने आते ही सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स शैटर कर दिए. दानिश तैमूर का जब भी ड्रामा आता है वो डिजिटल रिकॉर्ड तो शैटर करता ही करता है. एक्यूमुलेटिंग ओवर 1 billion व्यूज अक्रॉस सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. दिस इज हमराही. अगर आपने अब तक देखना शुरू नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिए. अब जब हम इस गाने के बाद वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी द टॉप 3 ट्रेंडिंग ड्रामास जो कि जरूर जरूर आपने देखने हैं.

And it is time now to give you the top three trending dramas. Last week, that is 21st week hoga wo, which is 18th se leke 24th tak. Aur ji, number three pe jo drama tha, actually top three dramas jo ke last week the, unhone apni jagah ko maintain kiya hai. Third number pe, Shaidai, jo ke ek hit Pakistani drama hai, Jio Entertainment pe aa raha hai ji. Aur this stars Feroz Khan and Seher Hashmi in the lead roles. Romantic emotional series hai, which has dominated Wednesday and Thursday's prime time slot और 9. आप कह लीजिए 8.5 to 9.7 TRPs तक ये ड्रामा फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे और वंस अगेन वेंसडे और थर्सडे को आता है शाम 8 बजे. सो जरूर चेकआउट कीजिए, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लाइक दिस, स्पेशली जो लोग फिरोज खान फैंस हैं, जो फिरोज खान की यू नो एक दानिश तैमूर की एक अलग फैन क्लब है और फिरोज खान का एक अलग फैन क्लब है और जो इनके फैंस हैं वो इनके ड्रामे को आंखें बंद करके देखना शुरू करते हैं और इसीलिए एकदम से इनको इतनी पॉपुलैरिटी मिलती है. लेकिन ड्रामा इज रियली गुड, स्टार्ट वॉचिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड. और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे ड्रामा है उसने एक बार फिर अपनी जगह को मेंटेन किया है दूसरे नंबर पे, दिस इज बस तेरा साथ हो. सना जावेद और फरहान सईद का ये ड्रामा ARY डिजिटल पे मंडे और ट्यूजडे को 8 बजे शाम एयर होता है और बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है. द सीरीज स्टार्स फरहान सईद, जो कि एक मिसट्रीटेड इंसान है अपने घर में, अनस का रोल प्ले कर रहे हैं, और सना जावेद जो कि अपने घर में जिनके साथ ट्रीटमेंट कुछ खास अच्छी नहीं होती, दे एक्सप्लोर यू नो हैवी फैमिली अब्यूज, बिट्रेल, और किस तरह से एक बडिंग फेटफुल रोमांस इनकी जिंदगी में आता है और फिर आगे क्या होता है. बहुत ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं, ऐसे मिलियंस ऑफ डिजिटल व्यूज हासिल किए हैं इस ड्रामे ने. और नंबर वन पे जो ड्रामा है उसने पिछले कई हफ्तों से अपनी जगह को किया हुआ है मेंटेन, ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है ये ड्रामा, दिस इज Dr. Bahu, airing on ARY Digital every Friday and Saturday, 8 p.m. और रात में. कुबरा खान जो हैं वो डॉक्टर बहू का किरदार अदा कर रही हैं, शुजा असद उनके हस्बैंड का किरदार अदा कर रहे हैं सलमान, और साथ ही साथ सबा हमीद है इस ड्रामे में. बड़ी सुपर हिट स्टार कास्ट है और ड्रामा है जी एक लड़की जो डॉक्टर हैं, ऑफकोर्स डॉक्टर बहू का किरदार कर रही हैं, और किस तरह से वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, अपनी डोमेस्टिक लाइफ में जगल कर रही हैं, किस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं, पहले डॉक्टर बहू चाहिए, फिर वो काम ना करे, फिर वो घर पे भी चाहिए, फिर वो बाहर भी चाहिए, मतलब 100 मसले हैं जो इस ड्रामे में टैकल किए जा रहे हैं. एंड आई थिंक एवरीबॉडी इज रिलेटिंग टू दिस ड्रामा एंड दैट इज व्हाई दिस ड्रामा जस्ट डजंट लीव नंबर वन स्पॉट, दिस इज डॉक्टर बहू. और आप के लिए ये तीन ड्रामा थे, अगर आपने अब तक इनमें से ड्रामा कोई एक देखना भी शुरू किया है तो दैट इज गुड इनफ, एटलीस्ट एक दो ड्रामा जरूर चेकआउट कीजिए. ये थे आपके लिए टॉप 6 ट्रेंडिंग ड्रामाज ऑफ पाकिस्तान. अब जो है इस गाने के साथ हम कर रहे हैं रैप अप, और फिर मैं आपको अगले हफ्ते फिर से जब हम कनेक्ट करेंगे तो हर हफ्ते मैं लेकर आती हूँ आपके लिए द टॉप 6 या 10 ट्रेंडिंग ड्रामास ऑफ पाकिस्तान. बात हो रही है डॉक्टर बहू की, तो चलिए फिर मैं डॉक्टर बहू के ऑफिशियल साउंड ट्रैक के साथ करती हूँ इस सेगमेंट का इख्तिताम. इस सेगमेंट के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आकर मेरे पास आपके लिए गिव अवेज लाइंड अप है. ईद की खुशियों में दो दो गिव अवेज, एक नहीं दो.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Laptop, charger, coffee, phone, oof. ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता.
8: एग्जैक्टली. और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग.
7: ओ गॉड, पहले आउटफिट, फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है.
8: आहा, आई कीप दैट पाथ सिंपल.
7: कैसे?
8: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे.
7: ओ, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी.
8: या कैरेटली इन काइंड.
9: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product. Now open in Frisco.
10: Breaking news! Home loan ya refinance, ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai. Transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com. Or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
11: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar. खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे. ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
13: टैक्सेस आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेसफुल विद CPA शालिनी कोडियाल ऑन योर साइड. यू फोकस ऑन ग्रोइंग योर बिजनेस व्हाइल शी हैंडल्स द प्लानिंग टू मिटिगेट योर टैक्स लायबिलिटी. शी इज ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, एंश्योरिंग योर बिजनेस stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.scordialcpa.com.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
18: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
19: भूख लगी
20: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
21: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
20: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
22: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट.
1: When it comes to taxes, only one name pops up: AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
19: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.
22: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल Fun Asia 104.9 FM.

0: आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में मैं हूं किरण आपके साथ. दिस इज 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. दिस इज ट्रॉफी ट्रैक्स. कुछ अवार्ड विनिंग फिल्मों के अवार्ड विनिंग गाने आपके लिए लेकर आई हूं और फिलहाल आपके लिए लेकर आई हूं एक गिव अवे. फ्लेवर लाउंज की तरफ से आया है ये गिव अवे. आपके पास मौका है टू विन दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी. डाइन इन ओनली है जी ये, तो प्लीज मेक श्योर यू हैव टू गो देयर एंड डाइन इन इफ यू आर अ विनर. इफ यू हैव वन दिस इन द प्रीवियस वन मंथ एट एनी अदर शो एट फाइनेंशिया, so please wait कीजिए क्योंकि you can only be a winner once a month. So you might not get honored if you go and on a repeated basis. उसी के साथ जो है ये भी आपको बताएं कि Flavor Lounge located कहाँ पे है. They are located on Preston Road in Frisco. So Frisco में located है, इस बात का भी ध्यान रखिए. If you're living too far away तो शायद आपके लिए मुश्किल हो, या फिर जरूर try out कीजिए. देखिए खाना जब बेहतरीन होता है तो रास्ता या फासला मैटर नहीं करता. सो जरूर पार्टिसिपेट करें. यू आर इन दिस फ्लेवर लाउंज विन दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी. और हमेशा ही आपके साथ कॉन्वर्सेशन कॉर्नर करते हैं राइट हियर ऑन सुनहरी किरण. और आज के कॉन्वर्सेशन कॉर्नर का कॉन्वर्सेशन पॉइंट है वो कौन सा खाना है जो आप किसी भी वक्त खा सकते हैं, कभी बोर नहीं होते. जैसे कि मेरे लिए आप कह लीजिए बिरयानी, मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो रिपीट ये तो नहीं मुझे पता कि मैं पूरी ज़िंदगी खा सकती हूँ कि नहीं, लेकिन रिपीट पे मैं कई दिनों तक बिरयानी खा सकती हूँ. आपका ऐसा कौन सा खाना है जो आप रिपीट पे खा सकते हैं? एंड ऐसा नहीं हो कि क्या आज फिर ये पका है, ये ज़रा जो है वो खाना आपको ये वाली वाइब्स नहीं देता कि क्या आज फिर ये पका है, आज फिर खाना पड़ेगा. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. कॉल कीजिए और बताइए वो कौन सा खाना है जो आप खा सकते हैं बेशुमार लगातार बार बार और बिल्कुल बोर नहीं होते. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
1: आकांक्षा.
0: आकांक्षा जी, आकांक्षा बताइए.
1: मेरे लिए तो पाव भाजी है, लाइक मुंबई स्टाइल पाव भाजी. मैं हूँ दिल्ली से, बट पाव भाजी इज समथिंग दैट आई क्रेव फॉर all the time. A good pav bhaji is never a no.
0: Absolutely. Simple food and absolutely yummy. बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच आकांक्षा फॉर कनेक्टिंग. प्लीज सुनते रहिए. अच्छा, पाव भाजी आप खुद घर पे भी बनाती हैं कि आप बाहर खाना ज्यादा पसंद करती हैं?
1: नहीं, मैं बनाती हूँ पाव भाजी, घर पे भी बनाती हूँ, बिकॉज़ आई क्रेव इट सो मच. आई वांट टू ईट इट टू थ्री टाइम्स.
0: ऑलराइट, परफेक्ट. आकांक्षा प्लीज सुनते रहिए. आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. ऑलराइट जी, आपका क्या फेवरेट खाना है? वो कौन सा खाना है जो आप खा सकते हैं बार बार लगातार बगैर किसी प्रॉब्लम के? 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. साहेबा आए घर. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम? दोबारा बोलिए. दिस इज एन अडल्ट ओनली सेक्शन गाइज. आई एम नॉट टॉकिंग टेकिंग किड्स कॉल राइट नाउ. सो मॉम, कैन यू टेल अस व्हाट इज योर फेवरेट फूड?
2: माय नेम इज सानवी. शी वांट टू टेल हर फेवरेट फूड.
0: आप बता दीजिए सर, मैं इस वक्त किड्स कॉल नहीं ले रही हूँ. या
2: खिचड़ी, शी वांट्स टू ईट ऑल द टाइम.
0: ओके, सानवी लाइक्स टू ईट खिचड़ी, परफेक्ट. थैंक यू सो मच सानवी. प्लीज सुनते रहिए. आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम? रेडियो की आवाज कम कर दें तो मैं आपको सुन सकूं. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
3: अली
0: जी. अली बताइए.
3: मैं निहारी और नान 365 दिन खा सकता हूँ.
0: बिल्कुल सही. निहारी है जी अली की फेवरेट डिश. इट इज अमेजिंग अली.
3: और ये चीज मैंने कंटिन्यूस 25 दिन तक आजमाई भी दी है.
0: ओके, यानी कि आप 25 दिन तक खा चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड है आपके. ऑल राइट, परफेक्ट. ये हुई ना बात. थैंक यू अली, सुनते रहिए. मैं अभी अनाउंस करती हूँ राइट आफ्टर दिस. फाइनेंशियल रेडियो, यूर लाइव एन एयर. व्हाट इज योर नेम?
4: My name is Madhavi.
0: Hi Madhavi, bataiye.
4: My favorite food, there are so many I can tell you, but the most favorite one is aloo puri.
0: Aloo puri, yummy. Okay, khud banati hain ki bazaar se leke khati hain?
4: Nahi, bazaar ke isme maza nahi aata.
0: Khud ke haath ka maza aata hai.
4: Khud ke haath ka itna maza aata hai, like wo jo bhujia, aloo bhujia hota hai na, that aloo bhujia and sukha wala aloo with lots of curry patta, adrak and sukha masala in it.
0: Yes.
4: And khasta, एकदम बेदनी पूरी के साथ। हो
0: क्या बात है, आपकी बात सुन के लग गई है मुझे भी भूख, आलू पूरी। माधवी थैंक यू सो मच, सुनते रहिए, मैं भी विनर अनाउंस करती हूँ इन अ बिट। दैट वाज अमेजिंग गाइस, आलू पूरी, आई लव इट। फाइनेंशियल रेडियो, योर लाइफ इन एयर, व्हाट इज योर नेम?
5: माय नेम इज बिंदु एंड मैं बॉम्बे से हूँ, तो मैं वड़ा पाव हमेशा खा सकती हूँ।
0: वड़ा पाव फॉर एवर, ठीक है जी। अच्छा बिंदु, आप खुद वड़ा पाव बनाती हैं कि बाजार से खाना पसंद करती हैं?
5: हाँ हाँ, मैं बनाती भी हूँ, बाजार से खाना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो गर्मा गर्म होता है, मेहनत नहीं करना पड़ता।
0: आई नो, बैठे बैठे खाना मिल जाए, इससे बेहतर क्या बात है। ऑल राइट बिंदु, थैंक यू फॉर योर कॉल, सुनते रहिए फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट इज योर नेम? जी जी, रेडियो की आवाज देखिए बंद करेंगी तो मैं आपकी आवाज सुन पाऊंगी।
5: अच्छा, मेरा नाम निलय है।
0: आप खिड़की भी बंद कर लें, आपकी बहुत ज्यादा बैक नॉइज आ रहा है, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रही हूँ। जी बताइए। फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट इज योर नेम?
6: माय नेम इज मारूफ खान एंड आई लाइक हलीम, छोले भटूरे, दही बड़े, दाल चावल।
0: क्या बात है। देखिए ये तो आपने इतनी सारी चीजें बता दी तो ये तो सवाल ना हुआ ना, एक चीज़।
6: देखिए ना, सेम चीज तो रोजाना कोई भी नहीं खा सकता ना, क्या कुछ भी हो, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, लेकिन फिर भी हलीम तो मैं रोजाना खा सकता।
0: ये आपने एक वर्ड सही पिक किया, हलीम, परफेक्ट। नारू साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ राइट आफ्टर दिस। फाइनेंशियल रेडियो, योर लाइफ इन एयर, व्हाट इज योर नेम?
7: जी मेरा नाम लवली।
0: दोबारा लवली, जी लवली बताइए।
7: हाँ जी, अरहर की दाल और चावल।
0: वाह, अरहर की दाल और चावल, और उसके साथ क्या अचार पसंद करती हैं? सैलेड पसंद?
7: अचार और पापड़।
0: अचार और पापड़, वही मैंने कहा कुछ कॉम्बो अधूरा है, पूरा कीजिए। ठीक है लवली, अमेजिंग, थैंक यू सो मच, एंड सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ राइट आफ्टर दिस। अच्छा जी, कॉन्वर्सेशन कॉर्नर अभी जारी है, लेकिन बीच में एक म्यूजिक ब्रेक और उसके बाद वापस आकर आपकी पसंद का खाना राइट हियर।

0: फनीशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. बताइए अपना नाम.
1: मेरा नाम है पुनीत माणोदे.
0: जी पुनीत, बताइए.
1: मेरा फेवरेट फूड है बेंगलुरु स्टाइल पूरी सागू.
0: ओके, एंड व्हाट इज दैट?
1: आप इसको मतलब नॉर्मल सब पूरी रहता है, लेकिन जो सागू रहता है वो मटर और आलू सब मिला के एक सब्जी जैसा बनता है. mm-hmm. लेकिन वो डिफरेंट ही रहता है, यहाँ पे कहीं पे मिलता नहीं है.
0: तो
1: आप इसको ब्रेकफास्ट के तरफ से खा सकते हैं, या लंच के टाइम पे खा सकते हैं, या डिनर के टाइम पे खा सकते हैं.
0: ठीक है जी, बिल्कुल. मतलब आलू तो वैसे किसी चीज में डल जाए तो हर ही वक्त खाया जा सकता है उसे, बट दिस इज ग्रेट. ऑलराइट पुनीत, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. सुनते रहिए, मैं भी विनर अनाउंस करती हूँ. फनीशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, दिस इज कॉन्वर्सेशन कॉर्नर. बताइए अपना नाम. सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल. Alright guys, you have to turn down your radio volume when you give me a call so that I can listen to you. Fanisha Radio, अपना नाम बताइए.
2: मेरा नाम राजेश है.
0: जी राजेश, बताइए.
2: मैं बॉम्बे से हूँ. मेरा फेवरेट चीज है वड़ा पाव. एंड मैं आई कैन ईट वड़ा पाव, ड्रिंक वड़ा पाव, आई कैन स्लीप वड़ा पाव, कुछ भी बोलो वड़ा पाव तो आता ही है दिमाग में. और वो वड़ा पाव ऐसी चीज है
0: जी.
2: जो एक तो अच्छी बन सकती है या बहुत अच्छी बन सकती है, खराब तो कभी बनती है नहीं. और हम इतना तो इतनी बातें करते हैं, इतनी प्यारी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक चीज हमेशा बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते.
0: ओके लवली, यानी कि यू कैन वॉक वड़ा पाव, यू कैन टॉक वड़ा पाव, यू कैन
2: आई कैन डू एवरीथिंग विद वड़ा पाव.
0: ओके लवली,
2: जो अगर क्रिकेट खेलते हुए भी वड़ा पाव खा सकता हूँ.
0: बिल्कुल सही है जी, ये हुई ना बात खाने के लिए, यही पैशन जो है वो हम देखते हैं एज ए कॉन्वर्सेशन कॉर्नर में. थैंक यू सो मच राजेश, सुनते रहिए. जी बताइए. All right, सुनते रहिए, मैं भी अनाउंस करती हूँ. राइट आफ्टर दिस फनीशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
3: शिल्पा.
0: जी शिल्पा, बताइए.
3: मेरा फेवरेट फूड है, आप हंसना नहीं, ब्रेड एंड जैम.
0: वाह वाह, ये तो मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से. दैट इज व्हाई व्हाई मेरा सवाल है, व्हाई क्यों?
3: I don't know. That used to be my favorite. Going back to my school years, I would exchange my lunch box with anyone who had bread and jam.
0: Oh, wow.
3: I would go to 5-star restaurants and eat bread and jam and be happy.
0: That is amazing. Okay, so is there a specific jam that you like to eat more than others? Yeah, any jam would do.
3: Jam, bas jam, any jam, strawberry jam, grape jelly, kuch bhi chalega.
0: Kuch bhi chalega. Ye hua na, isse behtar aur simple insaan maine nahi dekha. Ek bread aur ek jam ki bottle aur kharcha khatam. There is no kharcha of food.
3: Exactly.
0: Shilpa, thank you so much for your call. Sunte rahiye. Thank you. Fanisha Radio, you're live on air. What is your name?
4: Yes, my name is Eric Wessel, and I love all things Indian. I like idli, masala dosa. My favorite is chicken 65 biryani.
0: Chicken 65, that is so cool. All right, so you said your name was Carrick?
4: Oh, Eric. Eric. E-R-I-C.
0: Okay, Eric, yes. Thank you so much for this. Tell me what, other than chicken 65, what do you like about chicken 65 biryani?
4: I like the spice level. I like it spicy.
0: So you can handle desi spices?
4: yes, I can, yes.
0: That is amazing.
4: I went to India back in 2019.
0: Uh-huh.
4: My wife is from Kerala, so.
0: There you go. I was trying to get the connection. I got the connection now. So I'm sure you enjoy a lot of spices. Thank you so much, Eric.
4: Oh, yeah. Please
0: sunte rahiye. I'm going to announce the winner right after this. All right, G, that is the end of Conversation Corner. Thank you so much for your connection. Main ye last caller kafi der se call kar rahe hain. Main ye call leke, that is it. We are wrapping up. Fanisha Radio, you are live on air. Apna naam bataiye.
5: Tripti.
0: Ji, Tripti, bataiye.
5: I can eat bread butter anytime, any day.
0: Wow.
5: How many other days?
0: आज तो मुझे आप लोग हैरान कर रहे हैं. Bread and butter, that's it.
5: And मेरी मम्मी ने तो मेरा बचपन से नाम ब्रेड बटर ही रखा.
0: That is amazing, bread butter. अच्छा अच्छा, आप तो जैसे उन्होंने मुझे बताया शिल्पा ने कि वो खा सकती हैं जैम एंड दिस, तो ब्रेड बटर में आपको क्या ऐसा
5: कुछ भी बॉयल्ड आलू तो बेस्ट ही है.
0: दैट इज सो कूल. ब्रेड बटर, मैंने ये बहुत सारी बार कॉन्वर्सेशन कॉर्नर किया, बड़े लोगों से बात किया, लेकिन ब्रेड और जैम और ब्रेड और बटर वाले लोग मैंने बहुत कम देखे. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. तृप्ति, सुनते रहिए, मैं अभी विनर राज करती हूँ, राइट आफ्टर दिस.

ऑलराइट, आप सबकी पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया. फ्लेवर लाउंज की तरफ से दिस दाल मखनी या फिर धावा स्टाइल चिकन करी दैट वाज ब्रॉट टू यू डाइन इन ओनली. प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट. और आप तमाम लोगों की फोन कॉल, आई हैड एन एब्सोल्यूट ब्लास्ट टॉकिंग विद यू ऑन कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण. और जैसे कि आप जानते हैं, मैं हमेशा एक मैप के फॉर्मूले में आपकी जिस सीक्वेंस में कॉल आती है उसी सीक्वेंस में एक नंबर आपको असाइन करती हूँ और उसको फिर मैप के फॉर्मूले में डाल के लकी विनर निकाला जाता है. और आज के जो लकी विनर हैं वो हैं Eric, if you are listening to me, please give me a call 972-235-5555 so I can take your number and your information and send that to Flavor Lounge. And all of you people who participated, bahut bahut shukriya aapki participation ka. Ek aur giveaway hai mere paas abhi aapke liye right after the break. Bane rahiye mere saath. Eric, please give me a call.

0: Cisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी। सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
2: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
1: के टू ड्राइव मतलब
2: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है। लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
1: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
2: 100%
3: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट के टू ड्राइव डॉट कॉम और कॉल 214-814-0400 02 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
4: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता है?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: सब कुछ साफ रख सकते हो,
11: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती। कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
12: क्योंकि ये कौन बोला?
11: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
13: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
14: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
15: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
16: Desi cravings simple nahi hoti, unke levels hote hai. Level 1, mix veg pakora, light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla, thora nostalgia, thora comfort. Level 3, amritsari kulcha platter ya pindi chana, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
17: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
18: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
19: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
3: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
19: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
1: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
18: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: घर की याद नहीं आई तुझे? जैसी
3: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
19: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
3: सच में? बिल्कुल घर जैसा।
19: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
10: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.
20: कितने आदमी थे?
21: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: It is time now to tune you to Dream Home Mortgage. मैं हूँ किरण, this is your afternoon drive time with सुनहरी किरण, और ये है हमारा mortgage loan segment with Mr. Hussain Panjwani from Dream Home Mortgage, a division of Brazos National Bank. Dream Home Mortgage जी committed हैं ये आपको provide करने के लिए lowest rate in real estate available in your area. चाहे आप first time home buyer हों, consolidate कर रहे हों अपनी debt, refinance करना चाहते हों, upgrade करना चाहते हों अपने घर को, जो भी आप चाहते हैं, Dream Home Mortgage आपके लिए टेलर्ड मेड सॉल्यूशंस बनाते हैं टू सूट योर नीड्स. देयर टीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, एंड वी हैव विद अस मिस्टर हुसैन पंजवानी. लेट्स वेलकम हिम ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया. गुड आफ्टरनून हुसैन जी, हाउ आर यू डूइंग?
1: आई एम डूइंग ग्रेट मैम, हाउ आर यू डूइंग? आई होप योर लिसनर्स आर डूइंग ग्रेट, एंड टू ऑल द लिसनर्स आउट देयर, ईद मुबारक. I hope all of them had a fabulous Eid.
0: Thank you so much, Hussain ji. A very happy Eid to you as well. Please begin by telling our listeners, Dream Home Mortgage, kaun-kaun si services provide karta hai, aur aajkal market ki kya situation hai?
1: Basically, Dream Home, jahan bhi aapko real estate ki koi bhi help chahiye, koi bhi, you need any help, whether it's buying, selling, building your dream home, building a shopping complex, anything to do with real estate, Dream Home can help you. We have been doing this since last now 28 years. I was just talking to me to the other day, in probably 2000 next year, we'll be completing 30 years of being in mortgage business, and then Dream Home itself will complete 30 years in 2028. तो 28 साल हो गए ड्रीम होम को मॉर्गेज बिजनेस में इटसेल्फ. हमें ये काम करते हुए 29 इयर्स हो गए, एंड थैंक्स टू द कम्युनिटी सपोर्टिंग अस फॉर लास्ट 29 इयर्स.
0: परफेक्ट. सो बताइए हुसैन जी, मार्केट की क्या सिचुएशन है आजकल, और क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन?
1: द गुड न्यूज इज एटलीस्ट हम रेट्स फाइनली लास्ट वीक काफी बढ़ना शुरू हो गए थे. ये दो दिन से हम वापस से थोड़ा पुल बैक देख रहे हैं. जैसा थोड़ा ईरान के वॉर का पॉजिटिव न्यूज आना शुरू हुआ, तो थोड़े रेट्स का, इनफैक्ट आई वुड से 0.25% रेट गिरा है लास्ट दो दिन में, विच इज अ वेरी गुड साइन के रेट्स थोड़े कम हो रहे हैं. ओवरऑल हम लास्ट वन वीक से, किरण जी, वी आर सीइंग एक्टिविटीज व्हेन इट कम्स टू होम बाइंग, होम सेलिंग, प्री अप्रूवल की रिक्वेस्ट. वी आर सीइंग दैट एवरी डे के प्री अप्रूवल के लिए पीपल आर रिक्वेस्टिंग अपॉइंटमेंट्स फॉर प्री फर्स्ट टाइम होम बायर्स. काफी हमें जूम कॉल के लिए अपॉइंटमेंट सेटअप कर रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन कि वी आर सीइंग एक्टिविटीज. कमर्शियल साइड अभी भी आई वुड से इतनी एक्टिविटीज नहीं हो रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो रोक के बैठे थे, हम देख रहे कि वो दे हैव स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज और लोन्स फॉर स्मॉल टाउन होम्स, लाइक 26-24 टाउन होम्स की एप्लीकेशन आना शुरू हुई है. सो देयर इज सम एक्टिविटीज गोइंग ऑन, व्हिच इज अ पॉजिटिव साइन. पीपल आर फॉर व्हाटएवर रीजन गेटिंग सम कॉन्फिडेंस. बट द थिंग इज, जो हम डर रहे थे कि समर का स्टार्ट शायद हमेशा के जैसा नहीं होगा, अभी तक तो पॉजिटिव है. जो पहले पहला वीक है समर वेकेशन का, सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड साइन. इंटरेस्ट रेट्स हैव कम डाउन. हम वो भी देख रहे हैं कि काफी लोग आजकल, किरण जी, लॉट ऑफ पीपल आर अप्लाइंग फॉर कैश आउट लोन. लेटली आई वुड से आउट ऑफ 10, 4 आउट ऑफ 10 एप्लीकेशंस आर कैश आउट लोन्स. मतलब के पीपल वांट टू लुक, इवन दे आर रेडी टू लेट गो देयर लोअर इंटरेस्टेड, बट दे जस्ट वांट टू पे ऑफ देयर क्रेडिट कार्ड, पे ऑफ देयर कार पेमेंट्स, एंड देन जस्ट हैव वन मॉर्गेज पेमेंट, जहां उनके क्रेडिट कार्ड की लाइबिलिटीज खत्म हो जाती है, गाड़ी की लाइबिलिटीज खत्म हो जाती है, और सिर्फ एक मॉर्गेज की पेमेंट होती है. तो अगेन, अगर आपके पास इनफ इक्विटी है, इफ यू हैव इनफ इक्विटी इन योर हाउस, बट यू आर स्ट्रेसिंग आउट विच कार पेमेंट टू मेक, विच क्रेडिट कार्ड पेमेंट टू मेक, जैसे एंड ऑफ द मंथ आपका पे चेक आता है, हमें ये पेमेंट करना है, वो करना है, मॉर्गेज पेमेंट करना है, इफ यू आर इन दैट सिचुएशन एंड यू हैव गुड इक्विटी इन योर हाउस, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू to think about getting cash out done and paying off these high credit card debts and then have one mortgage payment. इससे किरण जी, हम काफी लोग में ये देखते हैं कि उनके पास 70-80 हजार के गाड़ी और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट होती है, 1800-2000 की पेमेंट होती है ऑन टॉप ऑफ देयर मॉर्गेज पेमेंट. नाउ बाई कंबाइनिंग ऑल दैट, सडनली दे विल हैव वन पेमेंट, वन हाउस पेमेंट, दे डोंट हैव एनी अदर पेमेंट्स. यस, आजकल काफी लोग का ये एक उनको थोड़ा सदमा लग जाता है जब दे लूज दैट रेट फ्रॉम 2.5-3% एंड गो टू 6.5-6%. बट अगेन समटाइम्स वो वक्त का तकाजा है. यू डोंट वॉन्ट टू बी पेनी वाइज पाउंड फूलिश. I always tell people, don't make that mistake where you start falling behind on your payment. क्योंकि आप वही चीज पे अटके थे कि I don't want to lose my 2.5% rate, 2.5% late. And now you're falling behind on your payment. Sometimes you have to bite the bullet and make wiser decision and, you know, refinance, pay off your debts and then just have one mortgage payment.
0: Absolutely. Hussainji, what is the best way to get in touch with you?
1: Always the fastest way to get a response is to send us an email. info@dreamhomemortgage.com. That's info@dreamhomemortgage.com. Or you can always call us at 972-245-LOAN, 972-245-5626.
0: There you go, 972-245-5626 or info@dreamhomemortgage.com is where you can send them an email. Thank you so much for connecting with us this afternoon, Hussainji.
1: Thank you, Kiranji. Always, always a pleasure.
0: Thank you.

और इसी के साथ आया है आपके लिए इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ की तरफ से गिव अवे. आपके पास चांस है टू विन द स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार लोकेटेड इन फोर्ट वर्थ. और सवाल बहुत सिंपल है जी कि कहाँ लोकेटेड है इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ में. आप अगर केलर में रहते हैं, फोर्ट वर्थ में रहते हैं, हर्स्ट, हैसलेट, जहाँ भी इन लोकेशंस पे रहते हैं, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू गो टू इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ. डू ऑल योर देसी एसेंशियल शॉपिंग्स जैसे कि ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स एंड सो मच मोर. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. कॉल करके मुझे बताइए फोर्ट वर्थ में जो इंडिया बाजार है उसका फुल एड्रेस और जो है जीत लीजिए ये चांस ऑफ विनिंग स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार. वंस अगेन द नंबर इज 9722355555.

और जी इंडिया बाजार की तरफ से जो कि फोर्ट वर्थ में लोकेटेड है आया था आपके लिए ये स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर। सबसे पहले आपको करेक्ट एड्रेस बता दें, 5152 क्वाड्रेंट वे स्वीट 100 लोकेटेड इन फोर्ट वर्थ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स। और आज के जो हमारे लकी विनर हैं वो हैं अभिमन्यु जायसवाल। अभिमन्यु हमें दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव अबाउट 5 to 6 डेज टू गो टू इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ एंड अवेल योर स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर। गिव देम अ कॉल इन 2 डेज एंड check whether your name has been added to the winners list or not. Ye hua ji aap tamam log jinhone participate

इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द ट्रैफिक अपडेट. जी इस वक्त एक्चुअली कोई खास इंसिडेंट हमें नजर नहीं आ रहा. देयर इज अ डिसेबल्ड व्हीकल दैट आई कैन सी ऑन 30 टुवर्ड्स बेल्टलाइन रोड ग्रैंड प्रेरी वेस्ट बाउंड, जिसकी वजह से टू लेन्स आर ब्लॉक्ड इंक्लूडिंग एन एग्जिट लेन. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर ट्रैफिक इज कंसर्नड. लेकिन आपको ये बताती चलूं कि अगर आप किसी ट्रक या कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो अटर्नी ओमर ख्वाजा इज द पर्सन हु कैन हेल्प यू डील विद ऑल दीज पेपरवर्क लीगैलिटीज डीलिंग विद योर इंश्योरेंस कंपनी, ताकि आपको बिल्कुल कोई परेशानी ना हो. स्ट्रेस फ्री सारा मसला होगा आपके लिए. और साथ ही साथ द बेस्ट पार्ट इज दे विल नॉट ओनली फाइट योर केस, दे विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अंटिल यू विन. सो फॉर दिस विन विन सिचुएशन, इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस और समवन यू नो इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, ओमर ख्वाजा का नंबर है 4693005046 is that number, or you can visit their website, which is attorneyomar.com. And this traffic update was brought to you by Attorney Omar.

0: और जी इसी के साथ इट इज टाइम नाउ टू रैप अप. लेकिन उससे पहले करेंसी अभी देनी आपको बाकी है. यूएस डॉलर आज कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो राइट नाउ अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो ट्रेड कर रहा है 0.85 पे, जबकि ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.74. इंडियन रुपी 95.97 पे स्टैंड कर रहा है, जबकि कनेडियन डॉलर 1.38 पे ट्रेड कर रहा है. पाकिस्तानी रुपी 278.52 इज वेयर इट्स स्टैंडिंग, जबकि नेपाली रुपी 153.62 पे ट्रेड कर रहा है. और इसी के साथ बांग्लादेशी टका 122.74 बांग्लादेशी टकास आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. And gold price update right now. Gold price per ounce is $4,456.13. Jabki gold price per gram right now is $143.27. Kal ki nisbat gold price per gram mein $1.47 ki kami hui, jabki per gold price per ounce mein $45.78 ki kami hui. That's pretty much all that I have for you where your finance matters right here on Sunehri Kiran. Thank you for tuning in. I will see you tomorrow. Once again, a very happy Eid to all of you who are celebrating. I will see you tomorrow once again, 2:30 p.m. to 5 p.m. actually. That is when afternoon drive time with Sunehri Kiran sunte hain aap with Kiran. Stay tuned, keep listening.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
7: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है.
8: अरे सारे तो सेम है.
7: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
8: ओ हाँ, ये तो अलग है.
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
10: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
11: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
10: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
12: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
13: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
12: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
14: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
9: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, The SBA Loan Experts, फैसला क्लैरिटी के साथ।
2: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
15: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
2: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
15: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
9: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
16: Har samasya ka hal hai एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
9: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
16: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
17: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस।
18: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
19: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
18: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
19: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
9: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself, free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
20: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
21: Excuse me. It's called being loyal.
20: It's called being predictable.
21: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
20: And what's so special at Neon Cactus?
21: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
20: Not bad.
21: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
20: Okay, this I didn't expect from you.
21: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
22: I'm Rahat Fateh Ali Khan, and you are listening Radio Fun Asia.

वेलकम लिसनर्स टू 5 PM टॉक शो तो नहीं कह सकती, ड्राइव शो भी नहीं कह सकती इस वक्त, बस शो इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि बस 5 से 7 बजे मस्ती वाला मूड हो रहा है और मैं हूँ आपकी होस्ट पावल भाटिया एंड सिटिंग इन टुडे फॉर मार्विन दास हु इज नॉट इन टाउन, सो आई एम कवरिंग फॉर हिज शो. और मैं कल भी आती और आप लोगों से गप्पे वगैरह भी हुई. आज कुछ और भी बातें होंगी. यस्टरडे आई टॉक्ड अ लिटिल बिट अबाउट रेजिलियंस, क्योंकि रेजिलियंस एक ऐसी क्वालिटी है जो कि सबको चाहिए होती है लाइफ में, क्योंकि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस एंड सेटबैक्स होते हैं, एंड द आइडियाज़ दैट दे डोंट ब्रेक यू बिकॉज दे आर स्टेपिंग स्टोन्स. यू कैन टेक दोज हार्डशिप्स एंड यूज देम एज द वेरी फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर अचीवमेंट्स. यूजिंग पेन एज फ्यूअल का आइडिया है. और रेजिलियंस बेसिकली ये है कि व्हेन लाइफ पुशेज यू डाउन देन राइज विद ट्वाइस द स्ट्रेंथ. The comeback is always stronger than the setback. So wishing you all an amazing comeback if there has been any setback. And talking about that, I have a song, amazing song, and it's a new movie. With that, I'll play the song for you and then I'll tell a little bit about a news related to this movie and song.

ये फिल्म नई है और वरुण धवन है इस फिल्म में, और ये गाना बहुत ही कूल है। इस गाने से रिलेटेड जो न्यूज़ है, दैट्स वर्थ टॉकिंग अबाउट। इट्स द लेटेस्ट न्यूज़। थोड़ी बहुत बॉलीवुड की बातें तो होती हैं आप लोगों के साथ। ओके, दिस वुड बी नाइस इफ इट्स स्टार्टेड। Never mind, I will play from another monitor since this one's having some bit of an issue. No issues. Like I was just talking about setback, and here is a setback where the audio was not working in one of the monitors. So, but guess what? I have to come back with a comeback. Yes? Fingers crossed. I hope this one works.

ऑलराइट जिसे कहते हैं ना कम बैक सेट बैक ऑल दैट, जो बातें हो रही थी तो चुनरिया ये वाला तो गाना भी नहीं था. चुनरिया जो दूसरा गाना था वो चुनरिया चुनरी चुनरी था. यू नो दैट्स व्हाट हैपेंस. कभी कभी आप सोचते हैं कि चलिए हमने कम बैक कर दिया, लेकिन जल्दी में कुछ और बात हो जाती है. लेकिन ये गाना वर्थ वेटिंग है. और चलिए मैं आपके लिए प्ले करती हूँ, इसके साथ रिलेटेड एक न्यूज़ भी है. सो लेट्स हियर इट. Remember the song from the 90s?

0: ऑल राइट, ये जो फिल्म है ये आने वाली है, ये है जवानी। ये दवा फिल्म का नाम है जवानी तो इश्क होना है। और इस फिल्म में है वरुण धवन, उनके साथ है मृणाल ठाकुर, अलोंग विद दैट ऑल्सो पूजा हेगड़े। तो 5 जून को इसका बिग रिलीज इज अवेटिंग। लेकिन ऑलरेडी जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ तो काफ़ी लोगों ने इसको एक वायरल बना दिया, एक ऑनलाइन डिस्कशन बना दिया, और कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लगा लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। सो जो इस फिल्म के ओरिजिनल सिंगर हैं यानी अभिजीत अभिजीत भट्टाचार्य, ही इज़ ऑल वेरी वेरी टैलेंटेड सिंगर, ही सेड वरुण धवन सलमान खान नहीं बन सकता। अभिजीत स्लैम्ड चुनरी चुनरी रीमेक। The song triggered sharp responses online, with many calling it a bland remake that strips the nuance from the original. The original thing of the 1999 BB number 1 se liya tha, jo original gana tha. Abhijit ji ne kaha ki slam the reprised version of the song featuring Varun Dhawan, and he said, "Jo bhi aap kaho, Salman Khan wo nahi ban sakta." Calling the new version a bhajan. That is kind of funny. But then I think Abhijit is known to be, he says what he thinks. He doesn't filter anything. So he said it as is, what he felt that is. Sharing his first reaction to the song, he said, "When I heard the song, I thought it was a bhajan. Chunari Chunari was originally a romantic track and they have now turned it into a bhajan." And also, slamming Varun for featuring in remakes of Once It songs, Abhijit added, "The actor Varun Dhawan has only done second-hand films, especially when his father David Dhawan directed the original films. He also uses the same songs that were once a hit. Varun Dhawan is gaane se Salman Khan nahi ban sakta. There is a big difference between Salman Khan and Varun Dhawan," he said. He also revealed that the makers of Hai Jawani To Ishq Hona Hai never reached out to him before recreating the song.
1: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यही मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
2: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
3: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
5: Astrology readings are for guidance only and results may vary.
6: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। AG FinTechs, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintechs.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद AG FinTechs एडवाइजरी सर्विसेज।
7: big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now, 469-712-3591. Or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Bollywood ka ultimate heartthrob Arjun Rampal is coming to Dallas with a special DJ performance. Get ready for the Rampage Tour on May 31st at Club Vivo Dallas. Doors open at 9 PM, strictly for 21 plus. For tickets and table reservations, contact Isha at 469-560-5560.
12: The Dill of Dallas. Heart to heart.

0: ऑलराइट लिसनर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 5 बजे का शो शुरू हो चुका है। 5 से 7 होंगी मैं आपके साथ, मैं हूँ आपकी होस्ट प्रौढ़ भाटिया। 5:30 बजे एक इंटरव्यू आने वाला है, लेकिन इससे पहले एक सरप्राइज सॉन्ग आपके लिए, बहुत ही गर्मा गर्म सॉन्ग मैं प्ले करने वाली हूँ। ये फिल्म है कॉकटेल 2 और गाने का नाम है माशूका।
1: बस प्यार में बनने में उम्मीद नहीं करती, जो जब तक है तब तक है।

ऑल राइट लिसनर्स, एक दो गानों की रिक्वेस्ट भी आ रही है और जस्ट स्टे राइट हियर. हम लोग एक दो गाना आप लोग के लिए प्ले कर रहे हैं. थिंग्स आर लाइनिंग अप. एक नया गाना आया है तो अभी आपने जो ब्रांड न्यू गाना आप सुन रहे थे मैं फिर से थोड़ी देर में प्ले करूंगी, लेकिन उससे पहले एक ऐसा गाना मैंने कल भी प्ले किया था जो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है इस वक्त. इट्स टोटली ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स एंड दिस इज द हिंदी वर्जन ऑफ द सॉन्ग एंड हियर इट इज फॉर यू. पेड़ी से लिया गया ये गाना जिसमें रामचरण है और इसमें श्रुति हसन है. श्रुति हसन के साथ हैं जानवी कपूर एज वेल. दिस सॉन्ग इज ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स एंड राइट नाउ ऑन रफीक्स डिमांड आई एम प्लेइंग दिस सॉन्ग स्पेशली गोइंग आउट टू सफी. एंजॉय.

All right, कभी दूध मलाई, ये गाना भी सही है, एआर रहमान का म्यूजिक है. पेड़ी पूछी बाबू सना फिल्म, और ये इसका हिंदी वर्जन अभी आपने सुना. आई वॉन्ट टू एक्चुअली हेयर द ओरिजिनल वर्जन एज वेल, विच इज आई थिंक तेलुगु और तमिल, आई एम नॉट श्योर. लेकिन अभी नेक्स्ट गाना मैं आप लोगों के लिए प्ले कर रही हूँ. सम प्लेसेस आर हैविंग एन इशू विद द ट्रांसमिशन टुडे, नो वरीज, वी आर ट्राइंग टू गेट इट फिक्स, बट सम प्लेसेस कैन हेयर अस जस्ट फाइन. So here is the next song for you all. If you can hear us and you want a particular song as a request, then give me a call. 972-235-5555 is the studio number.

एंड देसी मंडी अटेंशन देसी फूड लवर्स, आपके लिए ग्रेट न्यूज़ है वो ये दैट यू आर स्पेशली गोना हैव अ ग्रेट टाइम इफ़ यू गो टू देसी मंडी. वहाँ स्मार्ट शॉपर्स भी हैं और उसके साथ साथ आपकी नेक्स्ट ग्रोसरी यू जस्ट यू नो गॉट अ होल लॉट बेटर एट देसी मंडी इन लुइसविल. फ्रॉम फ्रेश वेजिटेबल्स एंड ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज टू हलाल मीट स्पाइसेस स्वीट स्नैक्स एंड डिलिशियस हॉट फूड, देसी मंडी ब्रिंग्स द टेस्ट ऑफ होम all under one roof. Whether you are shopping for daily essentials or planning a family feast, you'll find quality variety and unbeatable desi flavor waiting for you. Grab your shopping list and head to Desi Mandi today. Desi Mandi, where the desi community shops, eats and feels at home. With that, here is the next song for you.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: सब कुछ साफ रख सकते हो
2: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
3: क्योंकि ये कौन बोला?
2: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
4: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
5: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
6: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
7: Chicken banana?
8: Bro, banana नहीं, banana. मतलब make the chicken right.
9: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
10: Pritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
11: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
10: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
11: वेट, व्हाट?
12: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
13: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
12: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
18: मामू, देखो क्या हो गया।
19: ओ, क्या हो गया?
18: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
19: ओए, जर्मन का कमाल है।
18: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
19: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 9726906623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
20: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
21: हाय, दिस इज जानवी कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू द मोस्ट पॉपुलर FM स्टेशन इन द US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
22: कुछ आपको जानकारी दे दूं अबाउट मालाबार डायमंड्स। शाइन ब्राइट विद डायमंड्स फ्रॉम मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, डालस ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, योर गो टू डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड रिंग्स, earrings, necklaces and more that sparkle for every special moment. From classic solitaires to contemporary styles, their diamond collection blends superior quality with timeless design, perfect for engagements, anniversaries or just celebrating love. Download the mobile app now for more details. With that, aapka next gana is right here for your exclusive listening pleasure.

जी हाँ, गली गली में क्यों फिरता है तू बनके, आवारा बंजारा जो भी आप लोग कह ले, क्यों फिरते हो? ये तो सच बात है, फिरना नहीं चाहिए इतना। विद दैट लिसनर्स, हम पहुँच गए हैं नेक्स्ट गाने की ओर। और ये गाना भी बहुत ही कूल है। बेसिकली गानों में बात ये होती है कि मस्ती इतनी आ जाती है। आई वॉज टॉकिंग अर्लियर अबाउट रेजिलियंस, बट वेन यू हैव अ सॉन्ग बाय योर साइड देन गेस व्हाट हैपन्स, यू डोंट नीड मच बिकॉज योर मूड कैन राइट अवे गो टू समथिंग डिफरेंट। एंड दैट्स वाई म्यूजिक हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, इट हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। एंड आई होप वी एज लिसनर्स, वी एज पीपल हु आर प्रेजेंटिंग द म्यूजिक आर मेकिंग अ डिफरेंस, बिकॉज अल्टीमेटली दैट्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। The difference, the making the difference comes from that music that connects us to you, to each of you. With that connection, listeners, I'll talk about Connecting America. With Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful income stream through a unique insurance-based strategy designed to boost your bottom line. And it doesn't stop here. They also help homeowners pay off their mortgage in 10 years or even less. So don't wait. Call James today at the number is 321-888-7345, or also you could visit connectingamericafinancials.com and start turning your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash. So this is your chance to turn this opportunity into cash, this cost into cash. With that, I hope you're having as much a great time as I'm having. I'm going to go ahead and play another song for you. And this one is Rocking Absolutely.

0: All right, that song was happening and now it's time for a giveaway. तो आपका ये लकी डे हो सकता है where you could win something from Chandigarh Bites. तो आप मन में सोच रहे होंगे कि भाई चंडीगढ़ बाइट्स से क्या मिल सकता है. Here's your chance to win the कढ़ाई पनीर और कढ़ाई चिकन from Chandigarh Bites in Allen. Plus enjoy the special thali from Monday to Friday with exciting new dishes rotating daily for lunch only. Located off of McDermott Drive in Allen, visit chandigarhbites.com for details. And also make sure that you have not won a giveaway from Chandigarh Bites in...
1: अरे सुनना, आज ऑफिस से आते हुए मैंने फ्रिस्को में एक नया स्टोर देखा.
2: कौन सा?
1: कैरेट लेन.
2: वेट, व्हाट? कैरेट लेन? इंडिया वाला?
1: हाँ वही.
2: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली.
1: देखा, ढूंढ के दिया ना.
3: India's most loved everyday jewelry brand, now in Frisco. Lightweight, real diamonds, made for everyday. Carat Lane, a Tata product.
4: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal, call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
5: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
6: Calculating route, rerouting.
5: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
6: Location upgraded, now heading to India Bazaar Fort Worth.
5: क्यों?
6: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
5: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
7: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट,
6: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
8: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
9: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
8: K2 ड्राइव मतलब
9: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
8: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
9: 100%
10: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
11: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
12: हाँ.
11: घर रिलोकेट करनी है?
12: हाँ.
11: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
12: हाँ भाई हाँ.
11: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
13: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
14: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
15: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
2: वेट, इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
16: मैं ही हूं.
17: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
3: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
18: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Delhi.
12: Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

जी हाँ लिसनर्स, वेलकम टू दिस ड्राइव टाइम शो राइट हियर ऑन फनेजिया रेडियो. दिस इज योर होस्ट पारुल भाटिया. आपके लिए चंडीगढ़ बाइट से एक गिव अवे आ रहा है एंड मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, लेकिन ये क्विकली बता दूँ कि ये गिव अवे क्या है. ये कढ़ाई पनीर है या कढ़ाई चिकन है, और एलन में है चंडीगढ़ बाइट्स. आप मंडे थ्रू फ्राइडे भी वहाँ जा सकते हैं एंड यू कैन रियली इन्जॉय द थाली, स्पेशल थाली दैट दे हैव विद रोटेटिंग डिशेज, न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच. एंड मैकडर्मिट रोड पे है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं chandigarhbites.com. इन केस यू हैव वन दिस गिव अवे इन द लास्ट मंथ, देन यू डोंट क्वालिफाई. बेसिकली यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ, एंड वंस यू विन योर इन्फॉर्मेशन विल बी फॉरवर्डेड टू देम एंड यू हैव वन वीक टू अवेल दिस वाउचर. सो द क्वेश्चन दैट आई एम गोना आस्क फॉर दिस गिव अवे इज, क्यों मैं गाना प्ले करने वाली हूँ इस सॉन्ग में, ये फिल्म कौन सी है. वैसे काफ़ी ईजी गिव अवे है ये, आई मीन इट्स नॉट डिफिकल्ट एंड बहुत मल्टीपल चॉइसेस भी नहीं हैं, लेकिन ये आप बता सकते हैं मुझे इसमें हीरो हीरोइन कौन है, म्यूज़िक किसका है और जो गा रहे हैं वो कौन है. इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी, दैट आई कैन प्रोमिस यू. हियर इट इज. Not yet. Not this one. Okay, now you got it. I'm starting it from the beginning.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
5: I've been researching retirement planning.
6: Oh, really? Where?
5: Google, YouTube, a guy on TikTok.
6: Or you could just talk to WealthTactic.
5: What's the difference?
6: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
2: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
7: Is shahar ko hua kya? Kahin pe अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हूँ, तो वक्त है सही दिशा का।
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Phoenicia Radio.

वाह, क्या पावरफुल म्यूज़िक है, मज़ा आ गया। आज सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और तभी मैंने इतना प्यारा गाना भी पठान का चलाया था, किसी की रिक्वेस्ट भी आई थी, तो आप सबको बहुत ज़्यादा, ऑल द ऑडियंस, ऑल द मेंबर्स, लॉट ऑफ ईद मुबारक सबको, जिससे कि पीस आए वर्ल्ड में। पीस की जहाँ बात आती है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी दैट नेत्रिंदा शोनन, बुद्धिस्ट लीडर प्रेसिडेंट इकेडा, ही हैड कम टू सैन फ्रांसिस्को बैक इन 1993, एंड ही रोट एंड ही सेड टू अ लाइव ऑडियंस, ही सेड, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, रियलिटी इज़ अ स्ट्रगल, एंड नेत्रिंदा शोनन टीचेज बुद्धिज्म, इट्स अबाउट विनिंग। ही एग्जॉर्ट्स अस टू बी विक्टोरियस। To embrace the mystic law is to grasp the sword of victory. We can triumph over all. We can triumph and enjoy our lives. A person of faith is synonymous with a person of victory. A person of faith is synonymous with a person of victory. So this is very, very beautiful and very strong. Have the faith and one will definitely win. थोड़ी देर पहले चुनरी चुनरी से मैंने स्टार्ट किया था, देन वी स्टार्टेड हैविंग सम ट्रांसमिशन इश्यूज, सो नाउ ब्रॉडकास्ट इश्यूज, बट आई होप यू कैन ऑल हियर मी नाउ। एंड ये चुनरी चुनरी, अभिजीत भट्टाचार्य को तो शायद मज़ा नहीं आया, लेकिन ऑन द अदर हैंड म्यूज़िक डायरेक्टर एंड सिंगर अनु मलिक को तो बहुत ही मज़ा आया। अभिजीत ने इस गाने को बोल दिया है कि ये तो भजन टाइप है और वो रोमांस नहीं है इस गाने में, और वरुण धवन आसपास भी नहीं है सलमान खान के, लेकिन अनु मलिक है सपोर्टेड वरुण धवन एंड द सॉन्ग एज वेल। वेल आई विल जस्ट गो अहेड एंड प्ले दैट फॉर यू एंड यू कैन मेक योर ओन डिसीजन।

ओह ऑलराइट, दिस वाज हैपनिंग और व्हाट गाइस, रियली रियली आज मस्ती हुई है, बहुत बातें हुई हैं। और बस मेरे बाद 7 PM के शो पे आ रही हैं आपके लिए इप्पी फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली की बंदी है तो मस्ती तो मारेगी, वो तो नेचुरल है हम लोग के ना, जिसे कहते हैं ना नेचुरल ब्लड में है हम, वी कांट हेल्प इट राइट। सो विद दैट मैं आपके लिए नेक्स्ट गाना भी प्ले करने वाली हूँ। एंड या वी हैड अ लॉट ऑफ फन टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, लेकिन समहाउ दिस सॉन्ग पॉप्ड अप एंड यू नो वेन एवर एनी सॉन्ग बाय सुशांत सिंह राजपूत पॉप्स अप आई जस्ट वॉन्ट प्ले इट बिकॉज ही वॉज सच स्पेशल, जैसे कहते हैं ना आई फील लाइक सेइंग अ किड ऑन द ब्लॉक हु वेंट अवे टू सून। एंड इसमें कृति सुनाओ ने उनके साथ हिक वारिया, तो इस गाने के साथ मैं फिल्म थी राबता, इसके साथ मैं आपके साथ लेती हूँ विदा फॉर नाउ। एंड टुमारो इज थर्सडे, आई बी हेयर फ्रॉम 5 to 7 PM लिसनर्स। मीनवाइल बी ब्रेव एंड बी सेफ, कीप इट रियल जेन्युइन एंड हैपनिंग विद फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। दिस इज योर होस्ट पावल भाटिया साइनिंग ऑफ।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
3: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
2: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
3: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
4: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटिन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
5: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
6: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
5: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
6: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
4: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno क्रेडिट रिपेयर, फिक्स योर स्कोर, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
7: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
8: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर। लॉसिन ट्रैवल फॉर नियरली 30 years।